0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।

0: 26 बरस का साथ है ये, यादों का सतरंगी एहसास है ये।
1: FM रेनबो लखनऊ साथ, दूसरा कोई कहां,
2: म्यूजिक मस्ती मैजिक सब है यहां।
0: 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।

0: आपन संस्कृति आपन संस्कार
1: सिया जी के सोभेले पियरिया पियर रंग पियरिया नो हा अरे हो
2: माटी की सुगंध और लोग

0: संग नीक नीक बत कही
1: और श्रोता पंचन के भरपूर प्यार
2: पहिल दफा जब गयन ससुरारी
0: मिल जाए जो ई सब एक के संग
3: तो बन जावे।

यस दिल में आपकी जो जो बातें हैं ना वो सब नोट करिए, क्योंकि अगला जो प्रोग्राम है जिसकी आप बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि आप उस प्रोग्राम में हमसे कनेक्ट हो पाते हैं, यानी हमसे बात कर पाते हैं, और जिसका नाम है संदेश आपके गीत हमारे। यस ये शुरू होने वाला है, क्योंकि सुपरहिट ट्रैक्स का ये जो नॉन स्टॉप सफर था, जहां पर मैंने आपको देखिए वादे अनुसार बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन इस आखिरी ट्रैक के साथ जो कि रन मूवी का है सोनू निगम की आवाज में है, इसी के साथ मैं आपको छोड़े जा रही हूं अगला प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में। आपको हमको फोन करना है कैसे, 2238852 पर या फिर 2238845 पर, और वो सारी बातें जो आपके मन में है वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा आप हमें मेल भी कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर भी। यस लेकिन हाँ बस एक रिक्वेस्ट, एक मेल एक बार में। ओके

नमस्कार, सुबह के 11 बज रहे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महिला टी20 एशिया कप चैंपियनशिप 2026 जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों ने पूरी प्रतियोगिता के दौरान शानदार प्रदर्शन किया, टीम ने सभी मैच जीते और देश का नाम रोशन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ये खिलाड़ी देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि टीम सफलता और उत्कृष्टता के कई और प्रेरणादायक अध्याय लिखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का दिल्ली शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। दो दिन के शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाले एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री के शिखर सम्मेलन भाषण का एक अंश दिखाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में लोक आयुक्त संगठन उत्तर प्रदेश के 50वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वो संगठन की 50 वर्षों की विकास यात्रा एवं उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी व लघु फिल्म के अवलोकन के साथ स्मारिका और सूचना पुस्तिका का विमोचन भी करेंगे। कजरी तीज के पावन पर्व पर श्रावस्ती के पांडवकालीन ऐतिहासिक विभूतिनाथ मंदिर में भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रावस्ती बलरामपुर बहराइच ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल

एवं उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी व लघु फिल्म के अवलोकन के साथ स्मारिका और सूचना पुस्तिका का विमोचन भी करेंगे। कजरी तीज के पावन पर्व पर श्रावस्ती के पांडवकालीन ऐतिहासिक विभूतिनाथ मंदिर में भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल से भी हजारों श्रद्धालु गंगा जल और पवित्र नदियों का जल भरकर सिरसिया के विभूतिनाथ मंदिर पर पहुंचे। सुबह की पहली किरण के साथ ही स्वयंभू शिवलिंग पर भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पर पर पुलिस बल तैनात है। वहीं आसमान से ड्रोन कैमरे के जरिए हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। अम्बेडकर नगर में सरयू नदी के जलस्तर में आज भी गिरावट जारी है। कल खतरे के निशान से 13 सेंटीमीटर नीचे रहे जलस्तर में आज प्रातः 9 बजे तक 19 सेंटीमीटर की और गिरावट दर्ज की गई है। अब सरयू खतरे के निशान से 32 सेंटीमीटर नीचे है। नदी का जलस्तर 92.41 मीटर दर्ज किया गया है। जलस्तर में गिरावट से बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित मांझा उल्टावा गांव के निवासियों को बड़ी राहत मिली है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 12 बजे प्रसारित होगा।

यस इसी शंखनाद के साथ प्रोग्राम शुरू हो चुका है संदेश आपके गीत हमारे और कुछ भी करने से पहले गणपति बप्पा के नाम को लेना याद करना बेहद जरूरी है। वैसे आज के प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है यस, क्योंकि आपको हमको बहुत सारे संदेश भेजने हैं, तो आज के सेलिब्रेशन से जुड़ी कोई भी बात आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो वो शेयर कर सकते हैं, हिंदी दिवस से जुड़ी हुई कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या पे कोई एक ऐसा मैसेज जो आप चाहते हैं कि आपके मन में है और बाकी सब तक पहुंचना चाहिए, आपके मन से निकल कर बाकी सबके कानों तक पहुंचना चाहिए, उनके जहन तक पहुंचना चाहिए, वो हमसे शेयर कर सकते हैं। कहां 0522 ये कोड है 2238852 2238845 पर, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर। गणपति बप्पा मोरया।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: जी हाँ, और हम आपकी संदेश बिल्कुल ले रहे हैं और हमारे साथ कोई लाइन पर भी जुड़ चुका है। हेलो, फोन लाइन पर। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? जी, तो क्या कुछ मैसेज है आज आपका? हेलो,
4: हमारा मैसेज है,
3: हाँ,
4: बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और मैम,
3: हाँ हाँ हेलो,
4: बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और हम सब जैसा कि हम रील बना, पहले तो रील ना बनाए,
3: हाँ,
4: और इधर रील बना भी रहे हैं तो कहीं ऊंची जगह से बनाए रील।
3: अच्छा, रील बनाना जरूरी है। चलिए, थैंक यू सो मच।
4: जरूरी नहीं है मैम।
3: हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच हमें फोन करने के लिए और ये संदेश देने के लिए।
4: नाम ले सकते हैं?
3: जल्दी से ले लीजिए। ओके, हो गया।
4: शुक्रिया मैम फोन उठाने के लिए, बहुत दिनों के बाद आई हूँ।
3: अच्छा, बहुत शुक्रिया। नहीं, हम आए तो हैं लेकिन बहुत दिनों के बाद नहीं आए हैं, हम सुबह सुबह बहुत बार आए हैं इधर। हाँ, इस प्रोग्राम में बहुत,
4: तो आप आई हैं बहुत बार।
3: हाँ, इस प्रोग्राम में बहुत दिनों बाद आए हैं। थैंक यू सो मच ये नोटिस करने के लिए भी। देखिए, बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे लिसनर्स ऐसी छोटी छोटी बातें नोटिस कर लेते हैं। मोहम्मद आसिफ अंसारी जी, तेलंगाना से आप हमें मेल कर रहे हैं। आपका कहना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, ऐसे प्लास्टिक उत्पाद जो एक बार प्रयोग के बाद कचरा बन जाते हैं उनको यूज करने से बचे। और बिल्कुल सही बात है कि रीयूजेबल चीजों का अगर आप इस्तेमाल करते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब देखिए फेस्टिविटीज की बात की जा रही है, बहुत सारी ऐसे जगह हैं जहां पर गणपति रखे जा रहे हैं और वहां पर भाई सेलिब्रेशन होगा, जश्न होगा, तो खाना पीना भी होगा। तो खाने पीने के लिए आप जो चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कोशिश करिए वो रीयूजेबल हो। बहुत आसानी से दोने मिल जाते हैं भाई, बाहर पत्तल मिल जाते हैं और यकीन मानिए वो बड़े एस्थेटिक लगते हैं। ये जो एस्थेटिक वाला फील है ना कि आपकी फोटोज एस्थेटिक लगनी चाहिए, तो ये जो चीजें हैं ना, दोने और पत्तल, ये भी बड़ी एस्थेटिक लगती हैं। इनमें खाना परोस के खाएंगे ना तो बड़ा मजा आएगा। और साथ ही साथ दिल का टेलीफोन, आयुष्मान खुराना को हम कैसे भूल सकते हैं, आज उनका बर्थडे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फिलहाल अपने दिल से टेलीफोन मिलाइए, दिल से टेलीफोन मिलाइए हम तक, बिल्कुल वो मिल जाएगा और फिर हम आपसे वार्तालाप करेंगे, यानी बातें करेंगे।

0: अगर रिंग को रिंगा रिंगा रोजेस के बाद किसी ने इतना फेमस किया है, तो वो मुझे लगता है ड्रीम गर्ल का ये ट्रैक जो कि आयुष्मान खुराना का है और जिसमें ये पूजा बनकर बड़े नजर आए थे जी, इन्होंने फेमस किया होगा। और रिंग रिंग रारा रिंग करके हमसे कोई और जुड़ चुका है और जो अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर कर रहे हैं। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, हमें लगा कि हमने आपको होल्ड करने को बोला तो आप बिल्कुल ही फोन रख के ही चले गए।
1: हेलो
0: जी जी जी आपको हमारी आवाज आ रही है? हमें आपकी आवाज पूरी आ रही है। हेलो,
1: हमारा नाम यादव है, हमारा जिला
0: हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बैकग्राउंड में जो रेडियो चल रहा है ना उसकी आवाज थोड़ी धीमी कर दें, क्योंकि वो इको होकर हमको मिल रही है और इसलिए आपको शायद हमारी आवाज क्लियर सुनाई नहीं दे रही है। जी, आप बताइए क्या कुछ संदेश है, इनफैक्ट क्या कुछ शिकायत है आपकी?
1: दीदी, शिकायत तो हमारी कुछ नहीं है।
0: हाँ,
1: और दीदी हमारा संसदीय, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि लखनऊ आकाशवाणी लखनऊ का मौसम कैसा है?
0: बहुत अच्छा है, फिलहाल तो धूप खिली हुई है बाहर, लेकिन हाँ बादल
1: अरे
0: आ
1: दीदी
0: रहे।
1: बताओ, हमारा नाम हिमांशु यादव है, ग्राम कोकलवारा, जिला श्रावस्ती, श्रावस्ती में बारिश हो रही है।
0: ओके,
1: जी
0: और श्रावस्ती में आज कजरी तीज की भी बहुत ज्यादा धूम मची हुई
1: जी
0: है। जी हाँ, और इस बारिश में भी
1: हमारे
0: लोग
1: गांव
0: जलाभिषेक करने पहुंच रहे, ये भी बहुत अच्छी बात है।
1: जी हमारे गांव के लोग, कई लोग विभूतिनाथ है मंदिर,
0: हाँ, वहां
1: शिवसिया
0: पे
1: के।
0: जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो फिर
1: जी
0: आप क्या कुछ
1: जी जी
0: संदेश देना चाहेंगे आज?
1: संदेश हम देना चाहेंगे कि जो लोग नहर में नहाते हैं इससे सावधानी रखें, ये दीदी हमारा संदेश रहेगा।
0: ओके, थैंक यू सो मच हिमांशु जी।
1: और
0: हमें,
1: दीदी
0: हाँ जी,
1: आपका नाम क्या है?
0: निधि।
1: निधि,
0: हाँ,
1: आज आपसे पहली बार बात कर
0: उम्मीद करती है पहली बार आपके लिए अच्छा एक्सपीरियंस हुआ होगा, बात करके अच्छा लगा होगा
1: जी। जी
0: और हमें भी
1: दीदी
0: अच्छा लगा।
1: हमारा
0: बस ये थोड़ी सी ये जो बैकग्राउंड में इको की आवाज आ रही है ना, हमें हमारी आवाज दोबारा दोबारा सुनाई दे रही है ना, ये थोड़ी सी कम हो तो अच्छी लगती है।
1: दीदी सुनिए, हम जब फोन लगता है हमारा तो हम रेडियो को ऑफ कर देते हैं क्योंकि अचानक फोन कट जाए, इतनी
0: हाँ
1: मुश्किल से फोन लगता है।
0: हाँ अच्छा,
1: जी
0: तो फिर कुछ सिग्नल इश्यू होगा, पर थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए। और
1: नमस्ते। जी
0: हाँ नमस्ते, और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने जब मैसेज किया हमें ना, तो गणपति के बहुत सारी शुभकामनाएं दी, आपको भी बहुत सारी ढेरों ढेर शुभकामनाएं। दिल्ली इंद्रलोक से सुन रहा हूँ प्रोग्राम, मेरा रिचार्ज खत्म। ओके, आपका रिचार्ज खत्म है पर कॉल नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप हमें मेल कर दिया, ये भी बहुत अच्छी बात है। नाजिम जी का ये मेल है जी, इन्होंने हमें मेल किया है, फोन नहीं लगा तो कोई बात नहीं। एमके जी यानी मुनेश कुमार जी, कार्यक्रम होठों पे तेरी बात बहुत पसंद आ रहा है। होठों पर तेरी बात ये कार्यक्रम तो है ही नहीं, आपने कहीं और का मेल कहीं और कॉपी पेस्ट किया है हमें है। बाबू अंसारी जी, गुड मॉर्निंग मैम, हम एकदम बढ़िया है, थैंक यू सो मच तारीफ के लिए। प्रगति हमेशा धीरे धीरे होती है लेकिन हर छोटा कदम हमें मंजिल के करीब ले जाता है, इसलिए रुकिए मत, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि लगातार प्रयास ही सच्ची प्रगति है। करेक्ट बात है जलीस अंसारी जी। अब देखिए आपका नाम कुछ और कहीं और से ना निकले।

ओके आपने हमें अभी कॉल भी किया था और हमें मेल भी कर दिया, आप समझ की होंगी साहिबा जी, आपका मेल ही हमें मिला है। हिंदुस्तानी ब्रह्मेश सोनी, बड़ी बहन जी को सादा स्पर्श, मैं पिंकी सोनी टिकैत नगर बाराबंकी से मेल कर रहा हूँ। रोड किनारे दुकान लगाते हैं, उनसे खरीदारी करनी चाहिए। ओके, जो छोटी छोटी स्ट्रीट शॉप्स होती है उनसे खरीदारी करनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है, क्योंकि आप उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। यस, तो लिख भेजिए वो संदेश जो आप कहना चाहते हैं बाकी सारे लोगों से और हमसे भी शेयर करना चाहते हैं, वो चाहे आज के फेस्टिवल से जुड़ा हो, चाहे हिंदी दिवस से जुड़ा हो, या फिर इन जनरल कुछ कहना चाहते हो, प्लीज शेयर करिए हमसे। कहाँ पर? fmakashwani@gmail.com पर, या फिर 2238852 पर, या फिर 2238845 पर।

जी, हमसे किस्सा लिखने के साथ साथ लोग बोलकर भी शेयर करते हैं और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो ओपो, इतना शोर, घबरा ही गए। हेलो, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है हमारी फोन लाइन में, कुछ तो टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, इस वजह से हम आपसे ये जो कॉलर हैं इनकी बात शेयर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगली जो मेल हमारे पास है वो हम आपसे शेयर कर लेते हैं। कोमल तिवारी जी, गुड मॉर्निंग, आपका कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है? जो कि हमारा कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। समय जो मौसम चल रहा है, इस समय जो मौसम चल रहा है, क्योंकि गर्मी भी काफी हो रही है इस मौसम में और फिर अचानक से बारिश भी हो जाती है, तो बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इससे बचने के लिए अपने आसपास पड़ोस में साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा रखने की कोशिश भी करिए साफ सफाई, यस, ताकि मस्किटोज बिल्कुल ना आए, क्योंकि यही सबसे ज्यादा बीमारियां फैला रहे हैं। सफाई का विशेष ध्यान रखें, ये कहना है कैसरगंज से, कैसरगंज जिला बहराइच से कोमल तिवारी जी का। आसिफ अंसारी जी ने हमें मेल किया, अच्छा लगता अगर आप कोई मैसेज हमसे शेयर करते तो हमें और भी ज्यादा अच्छा लगता। बाबू अंसारी जी, गुड मॉर्निंग।

हम जी हम बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच तारीफ के लिए और हाल चाल जानने के लिए भी। साथ ही साथ प्रीति जी ने हमें मेल किया और उन्होंने जो आज हमने ट्रैक बजाया था ना, माफी जो हमने आपसे शेयर किया था कि आज अपॉलोजी डे है, तो उसके लिए लिखा है कि हाँ भाई रिश्तों में अगर आप माफी मांग लीजिए तो रिश्ते बड़े आसान हो जाते हैं। देखिए कॉम्प्लिकेटेड तो रिश्ते हम ही बनाते हैं ना प्रीति जी, ये बात सही है, हम ही लोग किसी भी रिश्ते की कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा देते हैं। कैसे? छोटी सी बात हुई, उसको दिल में लगाई, फिर उससे जुड़ी चार बातें अपने मन में सोची और उन चार बातों को अपने तक ही रखा, सामने वाले इंसान से शेयर नहीं किया। जो बात आसानी से सुलझ सकती थी वो बात को हमने बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते बहुत लंबा बढ़ा दिया। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हम ही बढ़ाते हैं भाई। किसी से गलती हुई माफ कीजिए, आपका अपना इंसान है वो, और अगर आपसे गलती हुई तो माफी मांग लीजिए। सॉरी कहना और सॉरी स्वीकार करना ये दोनों ही भारी काम और भारी शब्द नहीं है।

हम आपकी बहुत केयर करते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हर वो कॉलर जो हमसे बात करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सके। अब इसके लिए करने क्या है, आपको कॉल मिलाना है कहाँ पे, 2238852 पर या फिर 2238845 पर। अपने मैसेज के साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, अपना संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके गीत हमारे।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा।
3: जानो फिर मानो।
4: लखनऊ के बुक लवर्स तैयार हो जाइए, गोमती पुस्तक महोत्सव इज बैक विद 5th edition,
5: जहां होंगे 200 से ज्यादा बुक स्टॉल्स, 22 से ज्यादा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की किताबें, बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग, स्केचिंग, क्विज, थिएटर वर्कशॉप, साथ ही होंगे मशहूर लेखक और रंगमंच पर एक्साइटिंग कल्चरल एंड बैंड परफॉर्मेंसेस।
4: तो आइए 12 से 20 सितंबर सुबह 11 बजे से 8 बजे तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में एंट्री फ्री, ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन, उत्तर प्रदेश एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी।
6: आप सुन रहे हैं FM रेनबो लखनऊ 100.7, सुरों का लखनवी एहसास।

0: और सुरों के लखनवी एहसास पर निधि आपके साथ है। प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे, और हमारे साथ कौन है? लेट्स सी। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, इतने जितने हमने सुर में बोला उतने ही सुर में आपने बोला। आपका नाम हम जान सकते हैं?
1: शिव दुलारे गिरी।
0: फिर से जरा बताएंगे।
1: शिव दुलारे।
0: शिव दुलारे जी। हाँ जी, आप कहाँ से बात करें? कहाँ से फोन मिलाया आपने हमें?
1: ग्राम दरीपुर, जिला लखीमपुर।
0: लखीमपुर में मौसम कैसा है शिव जी?
1: जी बादल छाए।
0: बादल छाए हैं तो बस थोड़ी देर में बारिश भी हो जाएगी, ऐसा हम कहते हैं। आप चाहते हैं बारिश हो जाए?
1: नहीं बारिश ना।
0: अच्छा चलिए, जो शिव जी चाहते हैं आज तो वही होगा। वैसे भी कजरी तीज जो ठहरी तो आज आप ही के मन की होगी। तो शिव जी बताइए, और क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आज?
1: संदेश देना चाहते हो गई तो हम लोग मुश्किल हो जाए।
0: आपकी वॉइस बहुत कट के आ रही है।
1: रोड पे जो है
0: हाँ
1: बहुत मुश्किल में।
0: शिव, थैंक यू सो मच शिव जी, आपने मुझे कॉल किया, बट अनफॉर्चुनेटली सिग्नल इशू है कुछ तो, क्योंकि आपका जो मैसेज है वो फुल फॉर्म में हमारे तक नहीं आ रहा है। रोड पर जो प्रॉब्लम है, आई थिंक शायद वो जाम की प्रॉब्लम आप हमसे शेयर करना चाह रहे हैं, उसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है, ये हमने गेस किया है। शायद यही मैसेज आप हमसे शेयर करना चाहते हैं। तो मौसम क्योंकि जैसा कि बदल रहा है, उसके साथ साथ टेक्निकल ग्लिच होना पॉसिबल होता है, बहुत बार हो जाता है। महेंद्र दीपन जी नमस्कार, मैं महेंद्र दीपन, जिला नागौर, राजस्थान से। ओके, हिंदी दिवस के मौके पर सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, हमारी भावनाओं और अपनापन की पहचान है। अच्छा देखिए, आपने गलती की, हम आपको बता दे रहे हैं, अपनापन लिखा है आपने, अपनेपन की हो सकता है। हमें हिंदी बोलने पर हमेशा गर्व होना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत सारी आपने तारीफ लिखी है, और लेकिन देखिए आज तो हमारी आवाज ही हमें थोड़ी थोड़ी सी धोखा दे रही है, लेकिन आपने फिर भी तारीफ कर दी। ये होता है सच्चा वाला प्यार, कि आप बीमार जरा भी हो लेकिन देखिए आपसे के चाहने वाले हमेशा आपको हर हाल में पसंद कर ही लेते हैं। आसिफ जी, हिंदी हमारी सोच, संस्कृति और संस्कारों को जोड़ने वाली डोर है। आइए खास दिन पर अपनी प्यारी हिंदी भाषा के सम्मान करें और इसे आगे बढ़ाने का संकल्प लें। हैप्पी हिंदी दिवस। हमें लगता अच्छा लगता कि आप हैप्पी हिंदी दिवस की जगह अगर शुभ हिंदी दिवस लिख देते, कम से कम एक दिन तो प्रॉपर इस भाषा को सम्मान दीजिए। दिक्कत हमारी यही है कि हम हिंदी में इंग्लिश मिलाते जा रहे हैं, यानी इंग्लिश का ये जो उपयोग है ना बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और धीरे धीरे यही जो हमारी सुविधा सहूलियत है, यही हमारी लैंग्वेज को मिश्रित लैंग्वेज में परिवर्तित कर रही है। हाँ कि हाँ, हाँ ही हाँ है इसमें।

0: मोनाली ठाकुर इतना मीठा गा रही थी कि हम भूल ही गए, हम बिल्कुल गुम ही हो गए इनकी आवाज में कि हमें फोन भी उठाना था। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो।
0: हेलो। हाँ जी हाँ जी।
1: हाँ नमस्कार।
0: हेलो
1: हाँ नमस्कार।
0: जी, नमस्ते। आपका नाम?
1: नाम मेरा
0: हाँ, आप इतना सोच के बता रहे हैं। नाम मेरा,
1: अरे
0: जैसे अभी बोल देंगे
1: ओनियर
0: डॉन है नाम मेरा, सुना तो होगा ना।
1: बात होने लगी ना, डायरेक्ट ओनियर आपने कर दिया।
0: हाँ जी, डायरेक्ट ऑनियर हमने कर दिया। कभी कभी हम भी सरप्राइज दे देते हैं, तो बताइए ना। ऑनियर आप नाम नहीं बताएंगे क्या हमें?
1: अरे नाम बताएंगे,
0: तो
1: जरूर
0: बताइए
1: बताएंगे।
0: जी, बताइए।
1: विनीत कुमार, ग्राम और पापर पोस्ट रामगढ़ चीनी, जिला सीतापुर से।
0: ओके, तो सीतापुर में मौसम का हाल?
1: मौसम का हाल, धूप खिली हुई है मस्त मस्त।
0: लखनऊ में भी धूप खिली हुई है मस्त मस्त। यस, सेम टू सेम सेम पिंच। तो बताइए क्या कुछ मैसेज है विनीत जी?
1: मैसेज है। हाँ
0: बताइए।
1: पहला मैसेज ये है
0: ओके, लिस्ट है मैसेजेस की।
1: कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान भाई खेतों में काम करते हैं,
0: हाँ
1: जैसे खाद डालना, तो कृपया जूता पहनकर जरूर जाए।
0: ओके।
1: ये बहुत अच्छा संदेश है।
0: हाँ, इंसेक्ट से मतलब कि किसी भी तरह के कीड़े से बचने के, उसके बाइट से बचेंगे
1: जी
0: आप।
1: जी
0: और दूसरा
1: जी
0: मैसेज?
1: हाँ दूसरा मैसेज ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षा के लिए नहीं माता पिता बच्चों को भेजते हैं,
0: हाँ,
1: जरूर भेजें।
0: ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। इनफैक्ट ये सबको, मतलब ये सिर्फ
1: और
0: कहने की
1: हमारा
0: बात नहीं होनी
1: तीसरा
0: चाहिए।
1: मैसेज है,
0: हाँ विनय जी,
1: तीसरा
0: सारे
1: मैसेज
0: मैसेजेस
1: है
0: आज आप ही दे देंगे, फिर अगली बार जब आपको फोन लगेगा तो फिर आप क्या
1: नहीं
0: हमको संदेश पहुंचाएंगे?
1: बता दें थोड़ा
0: चलिए
1: ये
0: थोड़ा
1: मतलब
0: बता
1: ये है
0: दीजिए।
1: कि वह माटी की जो है
0: हाँ
1: जो फोन इन लाइव कर दिया जाए, हमारे दोस्तों की डिमांड है तो बहुत अच्छा लगेगा।
0: जी, आपकी, देखिए आपकी रिक्वेस्ट जरूर पहुंच गई होगी जो, और कोशिश की जाएगी कि आपकी रिक्वेस्ट को जल्द पूरा कर दिया जाए। देखिए, हम हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो सब कोशिश करते हैं कि,
1: और हमारे हमारी रायबरेली वाले दोस्त हैं तो हमसे बात कर लें कृपया।
0: अच्छा, ये आपको पर्सनल वाला मैसेज है। थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए और इतने सारे मैसेजेस देने के लिए। और रिक्वेस्ट आपकी, कोशिश होगी कि जल्द पूरी हो। बेहतरी के लिए हम लगातार काम करते हैं, हमारी पूरी टीम बेहतरी के लिए काम करती है। लेकिन हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, एजुकेशन हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, हर बच्चे के पास एजुकेशन पहुंचनी चाहिए। और किसी भी तरह का अगर उसमें दिक्कत या रोड़ा आ रहा है तो उसे दूर करने के लिए हम सभी को कलेक्टिवली एफर्ट करने की जरूरत है। ओके, जलीस अंसारी जी, थैंक यू सो मच। बहुत सारी तारीफ के साथ आपने हमें मेल किया, और अगर आप मैसेज करते तो हमें और अच्छा लगता। बाबू अंसारी जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। गाने आपको पसंद आ रहे उसके लिए। और इसके बाद पर अगला ट्रैक, लेकिन गाना सुनते सुनते इतना मत खो जाइएगा हमारी तरह कि आप हमें फोन करना भूल जाए। 2238852 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर अपना संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में।

जी, आस पड़ोस वाले भी याद रखते हैं, और हमको जब फोन बताते हैं लोग तो अपने साथ साथ दूसरे लिसनर्स की बात को भी याद रखते हैं। इसीलिए ये प्रोग्राम है संदेश आपके गीत हमारे। और देखिए, किसी ने कहा कि उनका फोन हम तक पहले लग गया था, विनीत जी से पहले लग गया था, लेकिन ऑनियर नहीं जा पाया। पर कोई बात नहीं, उनकी शिकायत को दूर करते हुए उन्होंने दोबारा से कोशिश की और इस बार फोन लगा भी और ऑनियर भी हो रहा है। हेलो हेलो हेलो, हमने तो आपको कहा था होल्ड करिए, आप तो छोड़ के चले गए हैं कहीं। हेलो हेलो हेलो, कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिच के चलते हम ना कॉल कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, और शायद यही वजह है कि पहले भी आपका कॉल हमसे लग ही नहीं पाया था, यानी बात हो नहीं पाई थी, जुड़ नहीं पाया था।

0: और बस ऐसे ही अच्छे लोगों से जुड़ने का प्रयास है हमारा ये प्रोग्राम। और दीपांशु जी ने बहुत बार कोशिश की है हमसे कनेक्ट होने की। लेट्स सी, लेट्स होप कि वो हमसे कनेक्ट हो गए हों। हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी
1: जी,
0: दीपांशु जी,
1: नमस्ते मैम।
0: फाइनली आप हमसे कनेक्ट हो गए।
1: नहीं, सॉरी मैम, मेरा नाम अनुराग
0: बहुत
1: शुक्ला है
0: ओके। आपने मुझे
1: जी।
0: ऑफ एयर कुछ और नाम बताया, ऑन
1: नहीं
0: एयर
1: नहीं नहीं
0: कुछ
1: यही बताया था शायद आपने जी।
0: ओके।
1: मैं
0: तो
1: बताएंगे, लखनऊ से अनुराग शुक्ला बोल रहा।
0: ओके, दो कॉल मुझे लग रहा है क्रॉस कनेक्शन की वजह से कनेक्ट हो रही है। दीपांशु जी भी हमारे साथ लगातार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे
1: जी, हो सकता है
0: और क्रॉस कनेक्शन की वजह से दो कॉल कनेक्ट हुई। श्रावस्ती से
1: जी।
0: उन्होंने, हम आपसे भी बिल्कुल बात करेंगे, श्रावस्ती से दीपांशु जी ने हमें कॉल किया था, बट अनफॉर्चुनेटली शायद क्रॉस कनेक्शन की वजह से वो लाइन ऑन एयर नहीं हो पाई। जी अब आप बताइए कहाँ से आप बात कर रहे हैं।
1: जी, मैं गोसाईगंज लखनऊ से अनुराग शुक्ला बोल रहा हूँ
0: ओहो, आप तो हमारे ही शहर से बात कर रहे हैं, तो हम
1: जी।
0: आपसे मौसम का हाल तो नहीं पूछ सकते क्योंकि हमको पता है।
1: मौसम तो बहुत खूबसूरत है, बहुत जी।
0: बहुत खूबसूरत है, क्या बात है, आपकी तरफ गणपति लगे हैं।
1: नहीं, लगाए जाते हैं, बीच में आज से शुरुआत हुई है
0: आज से
1: लगाए।
0: शुरुआत हुई है ओके, तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप।
1: बस यही भक्ति का माहौल है और सभी दोस्तों को गणपति यानी गणेश चतुर्थी और हरतालिका बीज की जो है
0: हाँ
1: सभी को
0: हाँ
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं
0: तो ये तो आपने विश करने का मौका ढूंढ लिया।
1: जी। साल लग गए तो मैंने कहा विश कर दो
0: अच्छा आप करते क्या हैं।
1: जी। हम तो दुकान करते हैं और
0: ओके,
1: भगवान
0: तो
1: भरोसे।
0: कोई ऐसा चीज जो आपको लगता है कि आपके यहाँ जो ग्राहक आते हैं ना, कोई ऐसी आदत उनकी जो आप बदलना चाहते, तो वो आदत कौन सी होगी, एक आदत।
1: ये आदत तो, अरे क्या बताएं, सब छोटी छोटी उन बातों को इग्नोर कर दिया जाता है
0: अच्छा,
1: छोटी और
0: छोटी
1: छोटी
0: छोटी, ये भी
1: बात
0: बहुत अच्छा संदेश है कि भाई छोटी छोटी
1: जी।
0: बातों को अगर आप इग्नोर करेंगे तो लाइफ स्मूथ
1: हाँ
0: चलेगी।
1: बस, नहीं हाँ, उसके लिए टेंशन नहीं लिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। किसी से छोटी मोटी गलती हो जाती है तो बोल दिया जाता है, बस
0: जी
1: बाकी यही
0: तो
1: जिंदगी है।
0: छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करते रहिए, आगे
1: हाँ,
0: बढ़ते
1: बिल्कुल इग्नोर
0: रहिए।
1: करता रहना चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए जी।
0: जी हाँ, तो थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए,
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू। तो भाई छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। छोटी छोटी बातों का मुद्दा बनाएंगे तो बड़ा मुद्दा बन जाएगा, और उसके बाद आपकी जो लाइफ है ना वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। और लाइफ में डिफिकल्टी किसी को भी पसंद नहीं होती, हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं होती। हम तो चाहते हैं आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलती रहे, बिल्कुल हमारे म्यूजिकल ट्रैक्स की तरह जो बिल्कुल स्मूथ चलने वाले हैं। लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद एक अगला ट्रैक आपके रेडियो सेट पर।
2: उससे तो सस्ता ही है, मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: देखिए दीपांशु जी पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि होम से कनेक्ट हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ा ही जा रहा है सिग्नल में। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ दीपांशु जी,
1: हम दीपांशु यादव बोल रहे हैं श्रावस्ती से। हाँ
0: दीपांशु जी बहुत मुबारक हो, फाइनली आपका कॉल हमसे कनेक्ट हो गया। मतलब इतने क्रॉस कनेक्शन के बाद आपका कॉल कनेक्ट हुआ, जल्दी से अपना मैसेज दे दीजिए।
1: सुनिए, विनीत
0: हाँ
1: कुमार के पहले यानी कि 20 मिनट हो गए
0: जी
1: बिताए,
0: जी मगर देखिए
1: लेकिन
0: हमारी तो
1: बीस
0: कोई,
1: मिनट में 4 बार कॉल लग गया।
0: देखिए हम आपसे ऑफ एयर बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम आपको ऑन एयर दे रहे हैं, पता नहीं क्यों आपकी जो लाइन है वो किसी और से क्रॉस कनेक्ट हो जा रही है, हमसे आ रहे थ्रू आ ही नहीं पा रही है, हम तक पहुंच ही नहीं पा रही है। लेकिन फाइनली अब मौका मिल गया है, तो मौके पे चौका मारिए। दीपांशु जी जल्दी से बताइए कि क्या संदेश है आपका।
1: दीदी जी, हमारा संदेश यह है, जो लोग बाइक चलाते हैं
0: हाँ
1: वो कभी फोन आ जाता है तो कंघी टेढ़ी करके मोबाइल लगा लेते हैं, ऐसा कभी मत करें, हादसा हो जाएगा। जी,
0: हाँ ओके, बस इतना से कहना
1: और
0: है।
1: दीदी जी सुनिए, हमारे गांव से हिमांशु यादव जी का फोन ही लग गया है।
0: हाँ हाँ
1: जी
0: आपका भी लग गया, और श्रावस्ती से तो आज बहुत सारे लोगों का लग रहा
1: जी जी
0: है ना, तो मुबारक
1: बड़े
0: हो
1: सुने
0: आपको।
1: तो हमने, जो ही लोग हैं।
0: जी थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए,
1: नमस्ते। जी
0: नमस्ते। और वकील अहमद जी का भी हमारे पास मेल आ चुका है। आज जो जो लोग हमारी आवाज की तारीफ कर रहे हैं, हम तो बहुत ही खुश हो जा रहे हैं, क्योंकि भाई आज हमें खुद में पता है कि हमारी आवाज कितनी फंस रही है, लेकिन फिर भी आप तारीफ कर रहे हैं। तो ये है आपका असली वाला प्यार जो आप हम तक पहुंचा रहे हैं। और बिल्कुल तरन्नुम जी एंटर हुई है स्टूडियो में, और हम जानना चाहेंगे बाहर के मौसम का हाल।
2: बाहर धूप जो है ना
0: हाँ
2: वो
0: हाँ
2: बहुत गुस्सा कर रही है,
0: बहुत गुस्सा कर रही है, यानी घनी बावरी
2: कह
0: हो गई है।
2: रही है निधि बाहर आए तो फिर उसको
0: बहुत
2: बताते हैं, बहुत कूल कूल बैठी है अंदर
0: कूल कूल। हाँ ये बात तो है, स्टूडियो में माहौल बिल्कुल ठंडा ठंडा बना हुआ है, बाहर है बहुत सारी धूप, तो ये जो चीजें हैं ना, ये जो एक्सट्रीम स्विच होते हैं ना, बस यही रीजन है कि मेरा गला ठीक नहीं हो पा रहा है। फिलहाल घनी बावरी आप तक पहुंचाते हैं हम, 10 मिनट का वक्त हमारे पास और है। अगर आप कोई मैसेज हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो पहुंचा सकते हैं FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर, या फिर 2238852 पर कॉल करके।

बिल्कुल हम बावरी नहीं हुए हैं, और बाहर जैसे तरन जी ने कहा धूप निकली है, तो उसने पूरा प्रोग्राम बनाया है कि वो हमें बावरी करे, तो लेट्स सी वो होत करती है या नहीं। लेकिन हाँ, अब क्योंकि 11:53 हो चुके हैं और ये जो टाइम है ये कहता है कि बस अब संदेश आपके गीत हमारे को वाइंड अप करना होगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस हमें भेजे हैं, और मैसेजेस जब भेजे जाते हैं ना तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम उनको पढ़ पढ़ के बड़े खुश हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत बार हमारे साथ जुड़ने की कोशिश की, तो उनका थैंक यू सो मच, आपने कोशिश की उसके लिए बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आसिफ अंसारी जी हैदराबाद तेलंगाना से आप सुन रहे हैं, गांव राजा कटरा अहमदपुर बाराबंकी का हूँ। संदेश ये है कि जो लोग नदी या तालाब के किनारे पर रहते हैं वो अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखें और अपने बच्चों को तालाब या नदी में नहाने ना जाने दें। बारिश का टाइम है, अक्सर पानी का स्तर ज्यादा हो जाता है, ऐसे में सावधानी बरतने की विशेष जरूरत होती है। यस, और ये बात तो लगातार आपको न्यूज अपडेट से भी मिलती जा रही होगी कि भाई जो जल स्तर है वो धीरे धीरे नदियों का बढ़ रहा है, इसलिए बारिश के टाइम में कोशिश करिए कि बच्चे नदी के आसपास ना खेलें। वीरपाल जी नमस्ते मैम जी, संदेश जो लोग गणेश विसर्जन के वक्त रोड पर भीड़ करते हैं कृपया करके एक लेन में चले तो अच्छा होगा। ये बात हमने सुबह आपसे गुड मॉर्निंग में भी शेयर की थी कि अब आज से जो गणपति स्थापना हो रही है, कल यानी कुछ लोग 1.5 दिन के रखते हैं या फिर 3 दिन के या 5 या 7 या 9 जितने भी दिन के आपने गणपति रखा है, जब भी आप विसर्जन करने जा रहे हैं भगवान का, पहली बात तो नदी में कचरा ना फैलाएं, दूसरी बात सड़क पर भीड़ ना लगाएं। ये 2 बातों का अगर आप विशेष ध्यान रखते हैं तो कोई भी फेस्टिवल किसी के लिए भी परेशानी का सबब नहीं बनेगा। इसी बात के साथ आप सभी के लिए गणपति का ये महोत्सव ढेरों ढेर खुशियां लेकर आए और आपके सारे विघ्न हरे, इसी कामना के साथ निधि अब आपसे फाइनली टाटा बाय बाय कहने वाली है। उम्मीद इस बात की है अगली बार जब मैं मिलूंगी ना तो मेरा ये गला है बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन जाने क्यों लोग प्यार करते हैं हमको पता है, क्योंकि भाई ये एक इमोशन है जो दिल में जगता है और जब जगता है तो पूरी दुनिया खूबसूरत लगती है।

0: सपने बड़े हैं,
1: स्टाइल अलग है,
0: तो ये शो है आपके लिए।
1: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
0: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
1: सब कुछ एक ही जगह। तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

नमस्कार। दोपहर के 12 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का दिल्ली शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। दो दिन के शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री के शिखर सम्मेलन भाषण का एक अंश दिखाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता में लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि भारत ने ब्रिक्स सहयोग को आम लोगों से जोड़ने और वैश्विक दक्षिण को केन्द्र में रखने पर विशेष जोर दिया।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है। आज हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हिन्दी और अन्य सभी भाषाएं तकनीकी विकास के सुनहरे दौर में हैं। हरतालिका तीज के पर्व पर आज रामनगरी अयोध्या में भी सुहागिनें अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही हैं। इस मौके पर शिव मंदिर में भीड़ लगी है और जलाभिषेक किया जा रहा है। हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं द्वारा पति की लंबी उम्र

सुरक्षित रहता है। अम्बेडकर नगर में सरयू नदी के जलस्तर में आज भी गिरावट जारी रही। कल खतरे के निशान से 13 सेंटीमीटर नीचे रहे जलस्तर में आज प्रातः 9 बजे तक 19 सेंटीमीटर की और गिरावट दर्ज की गई। अब सरयू खतरे के निशान से 32 सेंटीमीटर नीचे है। नदी का जलस्तर 92.41 मीटर दर्ज किया गया है। जलस्तर में गिरावट से बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित माझा उलटवा गांव के निवासियों को बड़ी राहत मिली है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो घंटे तरन्नुम के साथ।

हेलो एंड नमस्कार। प्रोग्राम शत्रुपा लेकर हाजिर है तरन्नुम, और आज का शत्रुपा बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम गणेश चतुर्थी, हरितालिका तीज और राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इतने सारे उत्सव और पर्व की शुभकामनाएं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कुछ ही देर में हम आपको रूबरू कराएंगे हमारे आज के विशेष अतिथि से जो स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले ये ट्रैक आप तक।

0: दोस्तों, अगर हरतालिका तीज की हम बात करें तो ये सिर्फ धार्मिक आस्था का पर्व नहीं है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक परंपराओं और नेचर के बीच के उस गहरे रिश्ते को याद करने का दिन है जो सदियों से जीवन का आधार रहा है। आज के दिन बहुत सारी महिलाओं ने निर्जला या फलाहारी व्रत रखा है, लेकिन बात जब उपवास या व्रत की आती है तो इसका अर्थ जानना बहुत जरूरी है। उप यानी समीप, वास यानी ईश्वर के करीब रहना, अपनी आत्मा के समीप रहना और अपने शरीर को शुद्ध करना। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी सेहत को भूलते जा रहे हैं। गलत खान पान और टेंशन ने हमारे शरीर को बीमारियों का घर बना दिया है। लेकिन इन त्योहारों और उपवासों के जरिए हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, यानी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर की आंतरिक सफाई। नेचुरोपैथी भी ठीक यही मानती है, इसीलिए नेचुरोपैथी को और करीब से जानने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी जी को, जो राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक और राष्ट्रीय वक्ता हैं जगत गुरुत्तम सेवा समिति के। उनसे हम जानेंगे कि कैसे नेचर क्योर यानी प्राकृतिक चिकित्सा से नेचुरोपैथी को अपनाकर हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो ये सारी बातें जानने के लिए हमें उनसे बात करनी होगी। सर नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में, हमारे प्रोग्राम में।
1: धन्यवाद।
0: तो सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे बात होती है नेचर क्योर की यानी प्राकृतिक चिकित्सा को, तो आप हमारे लिसनर्स को इसे किस रूप में परिभाषित करना चाहेंगे?
1: ऑफ कोर्स, नेचर क्योर और नेचुरोपैथी जो है
0: जी,
1: ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है
0: जी जी,
1: जिसमें हम दवाओं के बिना प्रकृति के जो पांच मूल तत्व है, जैसे जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांच तत्वों के द्वारा ही शरीर को ठीक रखा जा सकता है। सो एक तो रोग निवृत्ति और शरीर को आनंदमय बना के हम रोग से छुटकारा पा सकते हैं बिना दवाओं के।
0: बिल्कुल।
1: तो ये नेचर का सिस्टम, नेचुरोपैथी का मतलब मुख्य उद्देश्य है।
0: तो सर, जैसे कि आपने कहा कि ये जो पंच महाभूत हैं, मतलब आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी को, तो आपने इसको हेल्थ का जो आधार है यानी बेस बताया है, इसे मतलब थोड़ा सा आप ब्रीफ करेंगे?
1: ऑफ कोर्स मैं बताता हूँ। जैसे कि ये जो पांच महाभूत, जो जथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ये ब्रह्मांड भी पंच महाभूत का बना हुआ है, ये शरीर भी पंच महाभूत का बना हुआ है
0: जी।
1: ये इसी से ही ठीक होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जैसे एक लकड़ी का टेबल है
0: जी,
1: इस टेबल को अगर दीमक खा जाता है तो ऊपर से हम सनमाइका चिपका देने से टेबल सही नहीं हो जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: ऐसा करके भी हम देख सकते हैं, बाहर से तो बढ़िया दिखता है लेकिन 2-3 साल में वो टेबल खत्म हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: अगर इसी प्रकार से बाहर की कृत्रिम दवाइयों का द्वारा अगर हम शरीर को ठीक रखने का कोशिश करेंगे, ये सनमाइका का चिपकाने का जैसा काम हो जाता है।
0: अच्छा,
1: ठीक है। तो फिर टेबल कैसे ठीक रहेगा? देखेंगे बहुत लोगों के घर में ऐसे फर्नीचर से लकड़ी का जो 30-40-50 साल से वैसे की वैसा पड़ा हुआ है, उसका कारण अगर कुछ खराबी हुई तो वो लकड़ी से ही ठीक होगा। इसी प्रकार से ये जो पांच तत्व, तो बात ये आती है कि क्या हम हमारे शरीर को ये पंच तत्व देते हैं रोज?
0: बिल्कुल, बहुत बहुत ध्यान देने की,
1: क्योंकि ये बिगड़ने से ही हमारा शरीर जो है बिगड़ जाता है और रोग उत्पन्न हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: करेक्ट। तो अगर ये पूछा जाए तो लोग, हम तो बस यही करते हैं, भूख लगने पर खाना खा लेते हैं, कभी भूख नहीं भी लगा, टाइम हो गया बोल के खा लेते हैं।

0: और ये सब चीज मिले ना मिले हमें उसमें कोई ध्यान नहीं देते। तो एक्चुअली ये सब चीज जैसे देखा जाए तो पृथ्वी तत्व जो है हमें खाना से मिल जाता है, ठीक है, जल पानी पीने से हम जल तत्व भी मिल जाता है। कभी कभार एक ग्लास का प्यास है, हमने पूरा एक बोतल पी लिया,
1: बिल्कुल,
0: तो ज्यादा पानी पी लेने से भी उससे क्या होता है कि हमारा जो पाचन तंत्र बिगड़ जाता है।
1: अच्छा,
0: ठीक है, सुबह के टाइम में ठीक है थोड़ा अधिक पानी पीते हैं, बाकी दिन में एक एक ग्लास करके छोड़ छोड़ के कुछ समय फिर हम पी सकते हैं।
1: अच्छा,
0: बाकी वायु की बात करें, वायु तत्व, तो वायु तत्व हम क्या करते हैं कि नॉर्मली सांस जो लेते हैं उसी से मिलता है, करेक्ट। तो सांस लेने की बात किया जाए तो अगर हम सीधा पोस्चर में बैठ के सांस लेंगे तो हमारा लंग्स पूरा खुलता है,
1: अच्छा,
0: तो उसमें सफिशियंट ऑक्सीजन भी मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत बढ़िया से निकल जाता है। लेकिन अक्सर लोग झुक के ही बैठते हैं।
1: Exactly. हो जाता है कि बैठे स्ट्रेट है लेकिन किसी काम में तल्लीन है या बहुत ध्यान है तो पॉस्चर चेंज हो जाता है।
0: हाँ, तो उससे क्या होगा, लंग्स पूरा नहीं खुलता, तो ऑक्सीजन अच्छा। भी सफिशियंट बॉडी को नहीं मिलता और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत बढ़िया से नहीं निकल पाता।
1: बिल्कुल,
0: तो इसलिए हमें उसी जो अभाव होता है उसका, उसके लिए हमें रोज कुछ समय प्राणायाम करना चाहिए,
1: बहुत जरूरी है।
0: वो होने से हमारा जो ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़िया हो जाता है, इवन ब्रेन सेल तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है, तो तनाव कम होता है, मानसिक शांति मिलती है, बहुत कुछ उसमें वायु तत्व। इवन यहां तक कहा गया कुछ लोगों को जो है शरीर में टॉक्सिन से इतना भर जाता है, ब्लड केमिस्ट्री इतना खराब हो जाता है, तो ब्लड प्यूरिफायर लेना पड़ता है। जो लोग एक साल तक लगातार ब्लड प्यूरिफायर लेते हैं उनका, और कोई एक आधा घंटा का प्राणायाम कर ले, केवल आधा घंटा,
1: अच्छा,
0: तो उतना ही ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है।
1: अच्छा, यहाँ पर प्रफुल्ल जी एक बात आपसे बताएंगे कि प्राणायाम में जैसे कि कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जिनको अगर सिर्फ वही कर लिया जाए तो बहुत जरूरी है, जैसे अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है और भत्सिका है।
0: हाँ,
1: तो ये सारे जो अगर हम प्राणायाम सुबह उठ के सिर्फ 20-25 मिनट अपने को दे दें तो आपका जो ये आपने बोला ना कि पंच महाभूत है उसमें से तीसरा जो नंबर है वो हमें बहुत बढ़िया मिल जाए,
0: बहुत बढ़िया मिल जाए। जो बहुत से लोग को पता है अनुलोम विलोम प्राणायाम लेकिन करते नहीं है, तो ये बहुत फायदा है। इसलिए मैं बोला कि एक साल अगर कोई ब्लड प्यूरिफायर खाए जो फायदा होगा, आधा घंटा का प्राणायाम से भी अगर उतना फायदा होता है तो हमें सबको करना चाहिए।
1: बिल्कुल करना चाहिए प्रफुल्ल जी, और आपसे बहुत सारी बातें मैं जाननी है, आप इतनी अच्छी हमें नॉलेज दे रहे हैं और अपने आप को समझने का एक जो मौका है वो आज मिला है हमारी जो लेडी लिसनर्स हैं उनके लिए प्रोग्राम होता है स्पेशली, और वही कहते हैं ना कि महिलाएं बहुत कम अपने पर ध्यान दे पाती हैं, तो इस प्रोग्राम के जरिए वो बहुत कुछ जान पाएंगी। तो एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लें।
0: हाँ, sure.

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: लखनऊ के बुक लवर्स तैयार हो जाइए, गोमती पुस्तक महोत्सव इज बैक विद 5th edition,
5: जहां होंगी 200 से ज्यादा बुक स्टॉल्स, 22 से ज्यादा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की किताबें, बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग, स्केचिंग, क्विज, थिएटर वर्कशॉप, साथ ही होंगे मशहूर लेखक और रंगमंच पर एक्साइटिंग कल्चरल एंड बैंड परफॉर्मेंसेस।
4: तो आइए 12-20 सितंबर सुबह 11 बजे से 8 बजे तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में, एंट्री फ्री, ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन, उत्तर प्रदेश एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक, भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: और दोस्तों 12:19 हो गए हैं, प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा, तरन्नुम है आपके साथ, और आज हमारे साथ हमारे विशेष अतिथि हैं श्री प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी जी, जो कि राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक और राष्ट्रीय वक्ता हैं जगत गुरु उत्तम सेवा समिति के, और उनसे हम जान रहे हैं कि कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं बिना किसी बाहरी दवा के खाने से। तो प्रफुल्ल जी, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा जो शरीर है पंच महाभूत, इसके लिए बहुत जरूरी है, इससे मिलकर ये बना है, तो अभी आपने 3 बातें की हमसे, पानी की बात की और आपने सांस की बात की और पृथ्वी की बात की, और अब ये 2 जो छूट रहे हैं इनके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लें।
7: तो अब रहा कि अग्नि तत्वों के बारे में, तो अग्नि तत्व हमें जो मिलता है नॉर्मली जैसे सूर्य किरण से, सुबह जब सूर्य उदय होता है उसके 1 घंटे के अंदर
6: जी,
7: जो सूर्य में 2 चीज होती है, एक तो होता है हीट रेज और लाइट रेज। हीट रेज की हमें जरूरत नहीं है, लाइट रेज की जरूरत है।
6: अच्छा।
7: वो जब मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा ये सुबह का फर्स्ट टाइम जो 1 घंटा सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अगर हम धूप में बैठेंगे
6: जी,
7: तो हमारा विटामिन डी जो है मिल जाता है शरीर को।
6: अच्छा।
7: वो बहुत जरूरी है हमारे लिए।
6: हाँ। मतलब पीछे पीठ करके अगर हम सूरज की तरफ बैठेंगे, स्ट्रेट पॉस्चर होगा हमारा बिल्कुल। हाँ। तो
7: दोनों तरफ से।
6: अच्छा।
7: या तो कोई आपके घर पे छत के ऊपर या किसी पार्क में कहीं भी हैं आप, तो उस समय पे आप एक कुछ डाल दे नीचे, लेट भी सकते हैं या कुर्सी पर बैठ भी सकते हैं, तो सामने की तरफ भी धूप आएगा और पीछे की तरफ भी धूप आना चाहिए।
6: अच्छा।
7: ठीक है, 10-10 मिनट हो जाए तो बढ़िया है। तो उससे क्या होगा, हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है वो स्ट्रांग हो जाता है, और जिन लोगों को नींद नहीं आता रात को तो उनके लिए भी बहुत काम देता है। हाँ, अग्नि तो, और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट तो ये है पाचन शक्ति जो हमारा है, पचाने का शक्ति वो स्ट्रांग हो जाता है,
6: यानी जो कहते हैं ना कि चयापचय जो अग्नि होती है। हाँ, वो जागृत हो जाती है।
7: करेक्ट करेक्ट। तो ये उसके लिए बहुत जरूरी है अग्नि तत्व हमारे।
6: अच्छा।
7: उसके बाद आता है आकाश तत्व, ये सबसे इम्पोर्टेंट तत्व है, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं देता
6: सीरियसली,
7: क्योंकि आकाश ही एक तत्व है, सारे तत्वों को स्थान देता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो क्या किसी को पता है कि आकाश तत्व हमारे शरीर को मिलता कैसे है?
6: कैसे?
7: बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे भी सबसे पहले पता नहीं था, जब पता चला कि इट इज रियली इंटरेस्टिंग। आकाश तत्व आज तो सबको मिल जाएगी,

0: कि आकाश तत्व मिलता है उपवास से,
1: उपवास से। इसीलिए आज आपने ये हरतालिका तीज है तो महिलाओं को अब ध्यान आ जाएगा कि अच्छा आकाश तत्व की आज प्राप्ति हो रही है।
0: करेक्ट। तो ये तत्व जो है हमें उपवास रखने से प्राप्त होता है नॉर्मली। अच्छा। तो और इसी वजह से हमारे भारतीय संस्कृति में भी ऐसे कुछ है, जैसे आज एक दिन है गणेश चतुर्थी, तो इसमें लोग उपवास रखते हैं।
1: बिल्कुल।
0: वो इस समय में क्या होता है उपवास रखने से, जैसे खाना खाने के जो उसको पचाने के लिए नॉर्मली हमारे प्राण शक्ति का 70% जो है उसमें यूज हो जाता है, तो उपवास के दिन में हमारे प्राण शक्ति का बचत होता है।
1: अच्छा।
0: तो उस दिन क्या होता है कि हमारा बॉडी का जो टूट फूट जहाँ कुछ है उसको वो प्राण शक्ति रिपेयर करने लग जाता है, जो भी कुछ ऑटो रिपेयरिंग सिस्टम हमारा है वो। और साथ साथ हमें प्राण शक्ति की बचत होने से हमारा इम्यूनिटी पावर बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, रोगों से लड़ने की शक्ति भी हमारा बहुत स्ट्रांग हो जाता है,
1: जो कि बहुत जरूरी है एक हेल्दी लाइफ के लिए।
0: करेक्ट। तो इसलिए उपवास तत्व को सबसे पहला इम्पोर्टेंट दिया गया है कि ये हमें उपवास से मिलेगा आकाश तत्व।
1: क्या बात है। अच्छा प्रफुल्ल जी, आप कहते हैं कि मनुष्य जो है वो एक सिर्फ शरीर नहीं है बल्कि उसके अंदर जो है ना वो मन और आत्मा का समुच्चय है।
0: करेक्ट।
1: तो अपनी हेल्थ को समझने के लिए, और स्पेशली महिलाओं की जैसे हम बात कर रहे हैं कि वो अपने ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाती हैं, तो इसको समझने के लिए ये जो दृष्टिकोण है, ये जो नजरिया है, ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है।
0: वेरी गुड। जैसे देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शारीरिक कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेंटल डिप्रेशन है,
1: बहुत ज्यादा
0: मानसिक तनाव बहुत है,
1: बहुत है।
0: तो वैसे होने से वो शांति से जी नहीं सकते और धीरे धीरे मानसिक तनाव के कारण हमारा रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होते जाता है और कुछ दिन के बाद सारे बीमारियां उसको घेर लेते हैं। दूसरी बात आत्मा, आत्मा के तरफ से भी हमें जो है आत्म शांति जिसको कहते हैं, जैसे कोई अगर जॉब कर रहा है उसको जॉब सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए।
1: बिल्कुल होना चाहिए।
0: तभी जाके वो अंदर से उसको सुकून मिलता है।
1: अच्छा।
0: करेक्ट। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, समय समय पर मन को वो गहराई से वो शांति दिलाने के लिए हमें समय समय पर प्रकृति के ध्वनियों को सुनने के लिए समय निकालना चाहिए,
1: जैसे चिड़ियों की चहचहाट।
0: हाँ।
1: उसके लिए हमें सुबह उठना पड़ेगा।
0: करेक्ट।
1: और उसी से कहते हैं ना कि सुबह का जिसने सूरज उगते हुए देखा वो कभी बीमार नहीं पड़ा, तो ये कहावत जहां तक इसीलिए कही गई है कि जो सुबह उठेगा तो जाहिर सी बात है कि हाँ,
0: और आपका जो से हवाओं की सरसराहट रहा। अगर किसी ऐसे जगह में हम रहते हैं
1: नेचुरल साउंड को जब हम सुनते हैं तो हम अपने आप को भाती,
0: पेड़ों की हलचल
1: है, सब हरियाली देख रहे हैं, सुबह सुबह की ओस दिख रही है, तो ये सारी चीज़,
0: तो ये सारी चीज जो मन की इतना गहराई तक उसका प्रभाव जाता है।
1: बिल्कुल।
0: तो एकदम आत्म शांति, मन की शांति, साथ साथ शरीर तो अच्छा, मन खिल जाएगा तो शरीर भी खिल जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही है।
0: इसलिए कहते हैं कि रोग शांति के लिए दवाई की जितना जरूरत है उससे ज्यादा जरूरत है आपके जो ये कोई एक व्यक्ति हो आपके साथ, जिसके साथ आपका पूरा केयर लेता है वो और आपको बहुत दिल से चाहता है, आपको इतना बढ़िया समझा देता है कोई चीज, तो वो व्यक्ति उसको कहते हैं नेचुरोपैथी में सुहृद व्यक्ति, सुहृद व्यक्ति।
1: अच्छा।
0: तो ऐसा व्यक्ति कोई अगर मिल जाता है वैसे ही तो बीमारी अच्छे से ठीक हो।
1: बिल्कुल। कहते हैं ना इसका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, मिलके ही ऐसा लगा जैसे भी आप मेरे सामने बैठे हैं तो हमें एक अलग सी शांति मिल रही है, एक अलग सा सुकून मिल रहा है आपको देख के, आपकी बातों को महसूस करके, तो इसका मतलब है कि आपका जो ऑरा है वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब दे रहा है। अच्छा, आपने प्रफुल्ल जी कहा कि प्राण की जब बात की आपने, तो आपने कहा कि प्राण और का जो रिश्ता है वो मन से और जो हमारी इंद्रिय हैं इनसे है, मतलब क्या संबंध है, बहुत ही गहराई वाला।
0: प्राण जो है वो सूक्ष्म जीवन शक्ति है।
1: अच्छा।
0: करेक्ट। वो क्या करती है, हमारे शरीर को जीवित रखता है उसी के कारण। और दूसरी बात, जितने भी हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती है, जैसे मन का सोचने की शक्ति जो है उसी प्राण से मिलता है।
1: अच्छा।
0: करेक्ट। और जो इंद्रियां काम करते हैं वो सब प्राण शक्ति के द्वारा ही चलते हैं।
1: तो इंद्रियों को वश में रखने के लिए जो हमारी सांस लेने का प्रोसेस है वो बहुत जरूरी है कि वो सही डायरेक्शन में हो।
0: करेक्ट। नॉर्मली लोग सोचते हैं प्राण मतलब सांस चलना, केवल इतना ही नहीं है। शरीर के अंदर जितने भी क्रियाएं होती है सब प्राण शक्ति के द्वारा ही होती है।
1: करेक्ट।
0: जैसे

0: खाना को पचाने से लेकर के और उसके ऑब्जर्वेशन लेके सारे चीज जो है यहाँ पे उसी के द्वारा होता है। यहाँ तक कि रोग प्रतिरोध शक्ति भी उसी प्राण शक्ति को बचाने से होती है।
1: अच्छा, प्रफुल्ल जी, एक चीज ये जानेंगे कि क्या सांस लेने का जो तरीका है, जो
0: हाँ
1: प्रोसेस हम लोग इस्तेमाल
0: हाँ
1: करते हैं, उसका भी क्या मतलब प्रभावित करता है हमारे शारीरिक और जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको?
0: ऑफ कोर्स, अगर गलत गलत तरीका से सांस लेंगे हम तो तनाव होता है मन में और शरीर
1: मतलब
0: में
1: हम
0: भी।
1: लोग अक्सर उथली उथली सांसें लेते हैं,
0: हाँ
1: गहरी सांस नहीं लेते।
0: हाँ जैसे लोग सोचते हैं प्राणायाम मतलब ऐसे करते
1: जोर बहुत।
0: ऐसे जरूरी नहीं है, लंबा और गहराई जो धीरे धीरे होगा लंबा होगा, तो लंबा और गहराई सांस, गहरी सांस लेंगे हम तो उससे क्या होता है कि मन बहुत शांत हो जाता है,
1: रिलैक्स फील
0: रिलैक्स हो
1: करता।
0: जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है आपका लंग्स को पूरा भर देता है और लंग्स से वो ब्रेन सेल्स को भी बढ़िया से ऑक्सीजन पहुंच जाता है, तो फिर मानसिक तनाव जो भी कुछ रहता है वो भी शांत हो जाता है, इसलिए आपको बहुत आनंद मिलता है उस तरह के।
1: अच्छा, तो 12:28 हो गए हैं प्रफुल्ल जी, तो एक और छोटा सा हम ब्रेक लेते
0: हाँ
1: हैं
0: श्योर श्योर
1: और उसके बाद इसी बात पर जो चर्चा चल रही है वो ऐसे ही जारी रहेगी।
0: श्योर।
2: बरकत है ये औरत के कदमों की कि दरो दीवार को लोग घर कहते हैं, ये काजल जिन आंखों में आकर समर जाता है, ये माथा जो बिंदिया की किस्मत निखार जाता है। रसोइयों से उड़ती ममता की खुशबुएं त्योहारों और उत्सवों पर सजती महफिलें, संघर्ष की मिट्टी में खिलते मुस्कुराहट के फूल, दुनिया को खूबसूरत बनाने वाली खुद को न जाना भूल। हाँ, तुम हो शत्रुपा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: लखनऊ के बुक लवर्स तैयार हो जाइए, गोमती पुस्तक महोत्सव इज बैक विद 5th edition,
4: जहां होंगे 200 से ज्यादा बुक स्टॉल्स, 22 से ज्यादा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की किताबें, बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग, स्केचिंग, क्विज, थिएटर वर्कशॉप, साथ ही होंगे मशहूर लेखक और रंगमंच पर एक्साइटिंग कल्चरल एंड बैंड परफॉर्मेंसेस।
3: तो आइए 12 से 20 सितंबर सुबह 11 बजे से 8 बजे तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में, एंट्री फ्री, ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन, उत्तर प्रदेश एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी।
5: और दोस्तों 12:30 हो गए हैं, प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा, और आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी जी को, जो कि राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक हैं, राष्ट्रीय वक्ता हैं जगत गुरु तुम सेवा समिति की। और आज हम बात कर रहे हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा और जीवन शैली का आपस में क्या रिश्ता है। प्रफुल्ल जी, बहुत सारी हम लोगों ने बातें कर ली, और एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है इस प्रोग्राम में जानने के लिए कि जैसे कि हम सांस की बात कर रहे थे, लेकिन शरीर को, खुद को स्वस्थ रखने की और संतुलित करने की, अब जो प्राकृतिक कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, इसे कैसे और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, कैसे मजबूत किया जा सकता है?
6: बिल्कुल, एक्चुअली हमारा शरीर ऐसा बनाया गया है, जैसे कि कहते हैं ना, जो हार्ट जो हमारा, भगवान ने उसको ऐसा बना के दिया है कि कम से कम 250 साल तक ये कुछ गड़बड़ न होके चल सकता है।
5: 250 साल तक
6: और वो नॉन स्टॉप चलता है ना
5: जी।
6: एक दिन में आपको पता है कितने बार वो हार्ट बीट करता है? 1,00,000 बार। अब देखिए, 72 times पर मिनट होता है और उस हिसाब से
5: काउंट
6: कर दिया, मिनट कर दिया, 1 hour कर दिया, फिर 24 hours कर दिया,
5: बिल्कुल,
6: तो 1,00,000 time रोज वो धड़कता है। और ऐसे करके 250 साल तक ये चल सकता है। लेकिन हम अपने गलत आदतों के कारण,
5: लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल जो हमारा,
6: खान पीन का हो, चाहे सोने का हो, सब कुछ उसमें गड़बड़ होने के कारण इसका लाइफ खराब हो जाता है। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं 35-40 साल में ही हार्ट का प्रॉब्लम लेके बैठ जाते
5: हैं। और बहुत सारे देखिए आप, साइलेंट अटैक आ रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, और ब्लॉकेज हो रहे हैं बहुत ज्यादा, आर्टरीज ब्लॉकेज हैं, तो इसका सारा असर जो है वो खान पान से है और सांस लेने की प्रक्रिया से भी है।
6: सब

0: तो प्रकृति के नियमों के अनुसार अगर हम चलेंगे तो ये हार्ट आपका इतना लंबा चल सकता है।
1: अच्छा, 250 साल चल सकता है।
0: करेक्ट। तो ये है प्रकृति के नियम क्या क्या है, हम कैसे फॉलो करना चाहिए, ये सब अगर फॉलो करते हैं, खान पान हुआ, जीवन शैली हुआ, पर्याप्त तो नींद ले रहे हैं हम, जैसे रोज नींद की बात करें तो 7 से 8 घंटा सोना चाहिए, ठीक है।
1: लेकिन जिसे नींद ही ना आए तब?
0: हाँ, नींद नहीं आता है तो कुछ गड़बड़ है शरीर में,
1: इसीलिए नींद नहीं आ रही है।
0: हाँ, अच्छा। तो उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं रेस्ट ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन रेस्ट ऑफ योर नाइट्स। आप नाइट में कितना रेस्ट कर पाते हैं, डीप स्लीप में कितना समय सो सकते हैं, उसी पर डिपेंड करता है आपका रेस्ट ऑफ लाइफ कैसा जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: स्वस्थ चलेगा या अस्वस्थ चलेगा उसी से डिपेंड करता है। तो इसलिए ये सब चीजों को अगर ध्यान देके हम चलेंगे तो आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है
1: बढ़ जाएगी,
0: बढ़ जाएगी, और हमें कोई रोग टच भी नहीं कर सकता।
1: अब देखिए आजकल क्या होता है ना, लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए कि कोई छोटा सा कहीं पर दर्द हो रहा है, महसूस किया, वो फौरन डॉक्टर के पास गए और उन्होंने दवाइयां लेना शुरू कर दी। तो क्या फौरन दवाइयां लेने पर और डिपेंड हो जाना दवाइयों पर, क्या लाइफस्टाइल चेंज करके हम इस प्रॉब्लम को रोक सकते हैं?
0: बिल्कुल। एक्चुअली ऐसा है कि कोई भी बीमारी अगर आता है तो उसका नेचुरोपैथी में एक ही कारण है कि हमारे शरीर से गंदगी इकट्ठा हो गया है शरीर में, वो निकलना बहुत जरूरी है। लेकिन ये सारे दवाई जो है वो उसको निकालने में मदद नहीं करती,
1: वो उसको दबा देती है।
0: इसलिए उसका नाम दवाई हुआ है।
1: क्या बात है। अच्छा, इसलिए इसका नाम दवाई है क्योंकि वो दबा देती है। अच्छा,
0: तो नेचुरोपैथी एक ऐसा सिस्टम है जो रोग का मूल कारण तक, रूट कॉज तक पहुंच करके उसको वो ठीक करता है वहां से।
1: क्या बात है। तो अभी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लें क्योंकि लाइफ में जरूरी है कि थोड़ा सा गुनगुनाना।
0: श्योर।
1: और जिंदगी का शुक्रिया तो हम हर लम्हे अदा करते हैं।
0: श्योर।

0: और बिल्कुल शुक्रिया जिंदगी को करेंगे हम कि आज हमने एक ऐसे इंसान से मुलाकात की है जो बहुत कुछ जिंदगी को आपसे कह रहा है कि आप जानिए कि आपकी जिंदगी आपसे क्या चाह रही है, आपकी सांसें आपसे क्या चाह रही हैं, और आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बार बार कह रहा है कि देखो उठो जागो और जीने का जो एक नेचुरल तरीका है उसे अपना लो। और इसीलिए हमने स्टूडियो में अपने आमंत्रित किया है श्री प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी जी को, जो काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी हमें दे रहे हैं। अच्छा प्रफुल्ल जी, एक और सवाल है कि अक्सर ये होता है कि जब हम क्या करते हैं कि भूख लगते हैं और नहीं भी लग रही है तो लगता है कि अरे लंच टाइम हो गया अब तो खाना खाना चाहिए। अरे भूख क्यों नहीं लग रही, कोई बात नहीं खाना खा लेते हैं, या डिनर का टाइम हो गया है। तो आपका ये मानना है कि भूख लगने पर ही खाना खाना चाहिए, साथ ही सही भोजन और गलत भोजन, मतलब कैसे पहचाने क्या करें?
1: ऑफ कोर्स मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली भूख लगने पर ही खाना खाना चाहिए, भूख नहीं लगने से नहीं खाना चाहिए।
0: अच्छा,
1: ये क्योंकि भूख जब लगता है आपका स्टोमक रेडी है डाइजेस्ट करने के लिए।
0: ओ,
1: सारे जो जूसेस वगैरह जो हो वो रेडी है, तैयार है, आपको मिलेंगे।
0: अच्छा।
1: तो आपको मिले, जैसे खाना खाने का आपका टाइम हो गया, अगर आप किचन मतलब डाइनिंग हॉल में बैठे और वह खाना ही नहीं है तो फिर कैसे होगा?
0: बिल्कुल सही बात है,
1: है ना। इसी प्रकार से आप खाना देना चाहते हैं स्टोमाक को, लेकिन वहां डाइजेशन जूस अवेलेबल नहीं है, डाइजेस्ट करने का जो पावर है वो अभी रेडी नहीं है।
0: अच्छा।
1: तो फिर वो खाना पचेगा नहीं बढ़िया से।
0: अच्छा,
1: तो जबरदस्ती नहीं खाना चाहिए। और खाना किस तरह का चूज करें हमें,
0: यही सवाल मेरे होटो तक आया और आपने देखी उसको
1: तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, अगर जैसे दो चॉइस है।
0: अच्छा।
1: बाकी लोगों के तरह हम भी 10-15 दवाई रोज खा खा के अपना जीवन को खराब कर दे।
0: बिल्कुल।
1: एक रास्ता तो ये है, अभी भी लोग है दिन में 14-15 टैबलेट ले रहे हैं
0: बिल्कुल ले रहे हैं
1: ना। और दूसरा रास्ता ये कि बिना दवाई के, एक भी दवाई जरूरत नहीं है आपको, और पूरे जीवन निरोगी जी सकते हैं,
0: सिर्फ इस बेसिस पे कि अगर हमें भूख नहीं लग रही है तो हमें खाना नहीं खाना चाहिए। अच्छा,
1: ठीक है। अब खाना भी जो है उसमें मोस्ट ऑफ द जो आपका इंग्रेडिएंट जो है वो प्राकृतिक होना चाहिए, जैसे कि मौसम के सब्जियां या फल।
0: इसी टॉपिक पे हम आ रहे थे कि जैसे नेचुरोपैथी के हिसाब से एक आदर्श सलाद, एक तो ये होता है कि भाई सलाद हम लोग होता है भाई दाल चावल है तो सलाद ले आओ। हाँ। अब सलाद में क्या माइंड में आ रहा है कि प्याज है, नींबू है, हरी मिर्च है, लेकिन एक आदर्श सलाद क्या है?
1: बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले कि ये जो हम खाना मतलब सलाद बनाएंगे, जैसे हम खाना खाते हैं, कहते हैं कि एक बार अगर कोई खाना खाता है दिन में उसको योगी कहते हैं।
0: अच्छा,
1: अगर एक बार कोई खाता है मतलब मेन भोजन जो है एक बार ही करता है, ठीक है, यानी 18 घंटा में वो खाली होके निकल जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: तो फिर बाकी 6 घंटा पूरा शरीर खाली है आपका।
0: अच्छा,
1: आउट ऑफ 24 आवर्स। तो उसका मन एकाग्रता जो है बहुत कंसेंट्रेशन, मेंटल कंसेंट्रेशन बहुत रहता है, और वो आदमी को इसलिए कहा जाता है कि वो योग करने लायक है, समाधि स्टेज तक पहुंच सकता है इस तरह का मतलब अभ्यास के द्वारा। और जो 2 बार दिन में भोजन करता है उसको भोगी कहते हैं, आम तौर से लोग करते ही है।
0: इसीलिए हम लोग भुक्त भोगी बन जाते हैं क्योंकि भोजन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं।
1: करेक्ट। और अगर कोई 3 बार भोजन करता है या उससे भी अधिक करता है उसको रोगी कहा जाता है। आज नहीं भी हुआ रोग तो कल होना ही है उसको।
0: क्या बात है, मतलब 1 टाइम भोजन योगी, 2 टाइम भोजन भोगी, और 3 टाइम भोजन है अगर तो रोगी कहा जाएगा। यानी भोजन का बहुत गहरा रिश्ता है हमारे शरीर को,
1: जीवन शैली को
0: बिल्कुल स्वस्थ रखने का।
1: करेक्ट, ठीक है। तो ये

0: और अगर जिन लोगों को 50 के ऊपर एज हो गया है, तीन बार नहीं खाना चाहिए।
1: अच्छा,
0: दो बार खाना चाहिए मेन खाना, और तीसरी भोजन की अगर आपकी जरूरत है तो वहां क्या लेना चाहिए, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: बिल्कुल।
0: जैसे देखिए, नॉर्मली लोग 9, 9:30, 10 बजे तक ब्रेकफास्ट करते हैं। अगर उस समय कोई पराठा या सब्जी इस तरह का कुछ ले लिया तो कम से कम 6 घंटा लगेगा उसको डाइजेशन में।
1: अच्छा,
0: मतलब कोई अनाज वाला चीज कोई ले लिया कुछ तो 6 घंटा लगेगा। तो अगर 10 बजे हुआ तो 6 घंटा कितना होता है, 4 बजे। क्या वो आदमी 4 बजे लंच लेता है? नहीं
1: लेता वो।
0: तो 1:30-2 बजे से लंच लेने को तैयार हो जाता है,
1: और जबकि खाना पचा नहीं है,
0: पचा नहीं और भूख भी नहीं लगा है उस समय, नहीं लगेगा भूख। करेक्ट। तो वो गलत हो जाता है। अच्छा। तो उस आदमी को क्या करना चाहिए, सुबह के टाइम जो ब्रेकफास्ट लेते हैं, या तो आप केवल फ्रूट्स ले लीजिए। अच्छा। कोई भी फल ले लीजिए, और फल लेने समय एक ही प्रकार का फल लेना है, जितना खाना है खाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही प्रकार का लीजिए।
1: अच्छा, यहाँ पे प्रफुल्ल जी आपसे एक सवाल करेंगे कि अक्सर लोग कहते हैं कि आप अपना जो खाना है उसकी जगह पे आप फ्रूट्स लीजिए। मान लीजिए आप 60 किलो के हैं तो 600 ग्राम आपको कोई भी एक फल लेना है, क्या ये सही बात है?
0: ये कुछ मात्रा में सही है, कुछ सही नहीं भी है।
1: क्योंकि
0: ऐसा जरूरी नहीं कि आपको 600 ग्राम करके लेना है। खाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब आप खाते हैं कोई चीज को तो धीरे धीरे चबा चबा के खाना चाहिए। इसको कहते हैं कि जैसे ड्रिंक योर सॉलिड फूड।
1: अच्छा,
0: सलीड फूड को इतना चबाइए तो ड्रिंक जैसा बन जाएगा मुंह के अंदर ही।
1: जैसे कहा जाता है एक और को 40 बार चबा के खाओ, इसलिए कि उसको वो फर्क नहीं पड़ेगा।
0: जैसे एक सूखा रोटी, हाँ। सूखा रोटी पीस लीजिए, कोई सब्जी नहीं, खाली रोटी को आप चबाते रहिए।
1: अच्छा,
0: कुछ समय के बाद आपको मीठा लगेगा।
1: मतलब
0: खाली रोटी पहले चबाएंगे तो कुछ टेस्ट नहीं है उसका, लेकिन कुछ समय बाद मीठा लगेगा, इसलिए कि जो लार मिलता है उसके साथ उसमें स्टार्च को जो है डाइजेस्ट करना वहीं से शुरू कर देता है। टाइलिन नामक एक उसमें होता है जो लार में
1: जो ग्रंथियां होती हैं, हाँ, वो लार को
0: टाइलिन, वो लार जो है उसमें होता है और वो आपके स्टार्च को हजम कराता है।
1: क्या बात है।
0: हाँ,
1: तो यानी आदर्श सलाद की बात जो है वो,
0: हाँ, उसमें हम जा रहे थे।
1: हाँ,
0: तो वो जब आप खाएंगे तो धीरे धीरे धीरे स्टोमाक भरते आएगा, तो जब आधा भर जाएगा स्टोमाक तो आधा एरिया में जो हवा था शुद्ध हवा।
1: अच्छा।
0: वो बाहर आएगा, उसको कहते हैं आपका तृप्ति डकार।
1: तृप्ति डकार, क्या बात।
0: धीरे धीरे खाएंगे तो वो पता चलेगा आपको।
1: अच्छा,
0: ठीक है, इसका मतलब आपका स्टोमाक बोल दिया मैं तृप्त हो गया, अब इसके आगे नहीं खाना,
1: अब नहीं खाना है।
0: तो आधा भरा है अभी, बाकी जो 1/4 उसमें जो आधा रहा उसका आधा जो है, यानी 1/4 ऑफ योर स्टोमाक जो है उसमें डाइजेस्टिव जूस जाएगा।
1: अच्छा,
0: बाकी 1/4 हवा फ्री छोड़ दीजिए।
1: अच्छा,
0: तो उससे क्या होगा, डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, वो जो स्टोमाक है संकुचित प्रसारित होता है, उससे वो जो आपका खाना जो है पेस्ट जैसा बन जाता है।
1: अच्छा,
0: हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर आप वैसा नहीं करेंगे, वो बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता है तृप्ति डकार कब आता है, इतना स्पीड से खा लेते हैं, तो वो जब पूरा भर जाएगा तब भी एक डकार आता है, उसको पूर्ण डकार कहते हैं, वो गलत है।
1: अच्छा, मतलब तृप्ति डकार आना चाहिए, पूर्ण डकार जो है
0: पूर्ण डकार तक नहीं पहुंचना,
1: नहीं पहुंचना है, और इसके लिए खाना जिम्मेदार है।
0: तो जैसे कोई कुल्ला करना चाहता है, अगर पानी मुंह में पूरा भर लिया
1: नहीं कर पाएगा। बिल्कुल,
0: उसमें स्पेस होना चाहिए।
1: हाँ।
0: इसी प्रकार से स्टोमाक में भी स्पेस होना चाहिए। तो इसलिए 600 ग्राम की कोई जरूरत नहीं है।
1: अच्छा,
0: आप जो खाते खाते जाइए, जब तृप्ति डकार आएगा रुक जाइए,
1: छोड़ दीजिए। हाँ। तो आदर्श सलाद,
0: आदर्श सलाद ये होता है। नॉर्मली सलाद मतलब लोग सोचते हैं कि खीरा गाजर बीट ऐसा कुछ हो गए सलाद हो गया, ऐसा नहीं है। नेचुरोपैथी का सलाद ऐसे होता है, ये सब लीजिए आप, और वो मौसम के हिसाब से लीजिए। जैसे अभी मान ली मूली का सीजन नहीं है लेकिन मार्केट में मिलता है, इसका मतलब वो कोल्ड स्टोरेज का है,
1: वो नहीं लेना चाहिए।
0: मौसम के हिसाब से जो मिलता है वो ले लीजिए।
1: अच्छा।
0: और साथ साथ पत्ते वाले सब्जी उसमें जरूर होना चाहिए। जितने प्रकार के प्राकृतिक खाना मिलता है हमें प्रकृति से, उसमें से सबसे A1 क्लास का होता है पत्ते वाले सब्जी, जैसे धनिया पत्ता हुआ, पुदीना पत्ता हुआ,
1: ये सब लेना है, ये आदर्श सलाद में,
0: सलाद में
1: नींबू
0: भी डाल सकते हैं,
1: नींबू डाल सकते हैं, धनिया है, पुदीना है,
0: हाँ,
1: ये डाल सकते हैं,
0: पत्ते वाले सब डाल दिए उसमें। और साथ साथ आपको अंकुर वाला जो है मूंग और चने वो भी डाल सकते हैं,
1: वो भी डाल तो बहुत टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा।
0: हाँ।
1: भुना जीरा डाल लीजिए आप उसमें। हाँ। काला नमक है।
0: हाँ, उसमें एक चीज ये है, आप जो ड्राई फ्रूट्स अगर भिगो के रखे हैं
1: वो भी मिला सकते,
0: वो भी मिला सकते,
1: मतलब मना देखिए नहीं है।

0: जो ये जो नेचुरल चिकित्सा की बात हो रही है, नेचुरोपैथी की बात हो रही है, इसमें मना कुछ नहीं है, लेकिन उसका
1: एक चीज यहाँ मना है। अच्छा, उस सलाद में छोटे छोटे काट के उसको मिला दिया सब, उसमें नमक नहीं डालना है।
0: ओ, किसी भी तरह का?
1: हाँ।
0: अच्छा,
1: पहले तो एक नमक जो है नॉर्मल जो कॉमन सॉल्ट होता है वो नहीं डालना है। अगर आप डाल देंगे तो क्या होता है, पानी छोड़ देता है,
0: पानी छोड़ देता है।
1: इसका मतलब जो भी विटामिन प्रोटीन मिनरल से वो सब छोड़ दिया। मुझे किसी आदमी ने कहा अगर मैं लास्ट को पानी भी पी लूंगा तो,
0: पानी भी नहीं पीना है,
1: वो जो पानी उसमें जो निकल गया है,
0: अच्छा अच्छा,
1: उसको पी लूंगा तो विटामिन प्रोटीन मेरे शरीर में तो आ जाएगा ना।
0: हाँ।
1: मैंने कहा वो उसके साथ नमक भी तो आ जाता है ना।
0: बिल्कुल
1: वो गलत है। जैसे हम क्यों लेते हैं, अपने टेस्ट के लिए लेते हैं नमक, तो ऑलरेडी आपके सलाद में पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मतलब सारे चीज है ऑलरेडी, आयोडीन, आयरन सब कुछ है। एक और सोडियम क्लोराइड डाल के क्या करेंगे आप?
0: अच्छा, पानी का देखिए यहाँ पे बात हुई है, तो हाइड्रोथेरेपी होती है।
1: हाँ,
0: ये क्या चीज है?
1: ये एक बहुत बढ़िया सिस्टम है।
0: अच्छा।
1: जल चिकित्सा कहते हैं आप?
0: जी जी,
1: ठीक है। तो जल चिकित्सा में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये होता है कि पानी के द्वारा ही हमारे बहुत सारे डिजीज हम ठीक कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको एक बताता हूं। जैसे एक कपड़ा लीजिए, 2.5 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा।
0: अच्छा,
1: ठीक है, वो कॉटन होना चाहिए और थोड़ा सा मोटा होना चाहिए कि पानी को होल्ड कर सके।
0: ठीक है।
1: हाँ, सफेद हो तो भी ठीक है, नहीं कोई भी कलर ले सकते हैं, सफेद इज बेस्ट।
0: ठीक है।
1: तो उसको लेके 2.5 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा कपड़ा जो है उसको लिया आपने, लंबाई में 4 फोल्ड कर दीजिए, लंबाई में 4 फोल्ड।
0: अच्छा।
1: तो उसको फिर रोलिंग कर दिया, एक रोल जैसा बन जाता है। करेक्ट। तो ये जो हाइड्रोथेरापी वाला पार्ट है भारी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो ये कपड़ा हमने लिया 2.5 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और उसको लंबाई में 4 फोल्ड कर दिया, और ये कपड़ा जो है थोड़ा सा मोटा हो, सूती कपड़ा।
0: अच्छा,
1: ठीक है, लंबाई में 4 फोल्ड
0: जैसे अभी आपके हाथ में है।
1: हाँ, हाथ के हाथ में है। ठीक है, उसको रोलिंग कर दिया, एक ये बन गया। अब इसको जो है बाल्टी में पानी लीजिए, नॉर्मल पानी, उसमें इसको डुबो दीजिए।
0: ठीक है।
1: डुबो के थोड़ा सा हाथ से ऐसे ऐसे कर देंगे तो पानी अंदर चला जाएगा कपड़े के अंदर। उसको निकाल के थोड़ा सा निचोड़ दीजिए ताकि पानी बहेगा नहीं, लेकिन इसके अंदर अभी भी पानी है। इसको लेके पेट के चारों तरफ आपको लपड़ दीजिए।
0: अच्छा,
1: ठीक है। जो आपका नाभि है सेंटर में रहेगा, कपड़ा का आधा हिस्सा नाभि के नीचे जाएगा, आधा हिस्सा नाभि के ऊपर रहेगा।
0: ठीक है।
1: तो इसको स्किन के ऊपर लगाना है, उसके ऊपर आप कपड़ा पहन सकते हैं। ठीक है, स्किन के ऊपर चारों तरफ 2-3 राउंड जितना भी होगा कर लीजिए, उसको खोस दीजिए।
0: अच्छा,
1: उसके ऊपर कपड़ा पहन सकते हैं। तो ये हुआ। दूसरा, ये 2 इंच वाला पट्टी है कपड़े से बना है।
0: अच्छा।
1: दो हाथ का लंबाई है, उसको ले लीजिए 2 इंच पट्टी को। एक आप जो है ये फोरहेड पर, माथे पर लगाइए। ठीक है, चारों तरफ ऐसे करके इसको खोस दीजिए।
0: ठीक है,
1: ठीक है। और तीसरा कपड़ा, एक दूसरा कपड़ा और ऐसा ही है, आप गले में लगा लीजिए चारों तरफ करके।
0: ठीक है।
1: तो ऐसे करके 30 मिनट आपको रखना है।
0: टाइम क्या रहेगा?
1: 30 मिनट्स
0: सुबह या
1: सुबह कर सकते हैं, कभी भी आप कर सकते हैं,
0: कभी भी कर सकते हैं। हाँ। अच्छा,
1: सुबह के टाइम भी बेस्ट है, किसी भी समय आप कर सकते हैं। तो ये करने से क्या होगा, इसका साइंस देखिए, एवरीथिंग इज नेचुरोपैथी में साइंस बैक्ड है। तो इसमें सबसे पहले होता है हमारा बॉडी जो है ये हर जगह में टेम्परेचर सेम मेंटेन करना चाहता है।
0: अच्छा,
1: अब आपने ये कपड़ा के कारण पेट में ठंडा हो गया, गले में ठंडा हो गया, आपके कपाल में भी ठंडा हो गया, तो उस ठंडे जगह को गरम करके बराबर मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर
0: सामान्य
1: करने के लिए बॉडी क्या करता है, उस एरिया में ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है।
0: क्या
1: ब्लड के द्वारा ही गरम जाएगा आपके वहाँ।
0: क्या बात। अच्छा प्रफुल्ल जी, एक चीज है कि नारियल पानी है, सफेद पीठे का जूस है,
1: इसका मैं कंप्लीट।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
1: इसको करने से क्या फायदा होगा? सबसे पहले ये होता है, इससे गैस जिनको प्रॉब्लम होता है
0: वो नहीं होगी।
1: 90% लोगों को गैस की है, तो गैस का प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे रोज सुबह उठते ही पैंट ऑफ फटी लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बहुत परेशान है उसको लेते लेते, आगे जाकर के और खतरनाक सिचुएशन हो जाएगा, तो वो नहीं लेना चाहिए। एसिडिटी जिन लोगों को होता है वो भी नहीं होगा। कब्ज जिनको होता है वो भी नहीं होगा। जैसे क्या होता है, जैसे आटा रोनते हैं तो आटा हाथ में चिपक जाता है, इसी प्रकार से कभी कभी हमारे खाने में ऐसे चीजें होती है जो लार्ज इंटेस्टाइन के इनर वॉल में चिपक जाती है,
0: इसीलिए
1: तो इसी वजह से कब्ज हो जाता है और सारे रोगों का मूल कारण वही बन जाता है। जब ये कपड़ा हम बांधते हैं तो इस कपड़े के बांधने के कारण वो जो मल जो

0: हुआ है वो छोड़ देता है अपना जगह,
1: क्या
0: तो
1: बात,
0: कब्ज क्लियर हो जाता है।
1: बहुत ही बढ़िया ये है, इससे कोई आपके।
0: और जो पीसीओडी पीसीओएस जो भी मतलब गायनिक इश्यूज है
1: महिलाओं के लिए,
0: महिलाओं के लिए बहुत
1: हाँ।
0: फायदेमंद है इसमें, गायनिक इश्यूज सब जाएगा। और जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, कुछ बच्चियां ऐसे हैं जो पीरियड्स के टाइम पे बहुत पेन होता है, तो ये करेंगे तो नहीं होगा।
1: अच्छा क्या, बहुत बढ़िया,
0: बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: तो अब प्रफुल्ल जी, टाइम बहुत जल्दी से आगे जा रहा है, तो हम ये सोच रहे हैं कि नेचुरोपैथी और मॉडर्न साइंस में, जैसे कि कहा गया नारियल पानी है, सफेद पेठे का जूस है, केले के तने का जूस है, ये अमृत समान माने गए हैं, ऐसा क्या इसमें है?
0: हाँ, नारियल पानी जो है द मोस्ट अनपोल्यूटेड फूड इन दिस वर्ल्ड, करेक्ट। उसमें सारे पोषण तत्व है, यहाँ तक कहा गया कि कैंसर तक डिजीज भी केवल नारियल पानी से ठीक होते हैं, इतना बड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नारियल पानी को माँ के दूध के समान कल्पना किया जाता है, इतना पावरफुल सारे पोषण तत्व है इसमें।
1: जी जी,
0: ठीक है, ये इस तरह का एक चीज है, अवेलेबल है, तो उसको रोज सुबह शाम एक बार लेना।
1: पेठे का जूस,
0: पेठे का जूस हर जगह में नारियल पानी नहीं मिलता,
1: मिलता नहीं है,
0: तो इसलिए दूसरा ऑप्शन है पेठे का जूस, जो आगरा में पेठा मिलता है,
1: मिलता
0: सफेद पेठा। उस पेठे को जो है आप एक ले लीजिए 6-7 किलो वाला, तो उसमें से 1 किलो या 1.5 किलो निकाल दीजिए, बाकी फ्रिज में रख दीजिए,
1: ठीक है, स्टोर
0: जब
1: कर
0: तक
1: सकते
0: आप
1: हैं।
0: उसको काटे नहीं वो कुछ नहीं होगा।
1: अच्छा,
0: काटने के बाद वो खराब होना शुरू होता है।
1: अच्छा,
0: इसलिए बाकी रेस्ट पीस जो है आप फ्रिज में रख दीजिए, जो आपने निकाला 1.5 किलो का, उसका छिलका निकाल दीजिए, बीज वाला पोर्शन भी निकाल दीजिए।
1: अच्छा,
0: बाकी को आप जूसर में या ग्राइंडर में करके जूस निकालिए, उस समय आप उसमें आंवला डाल सकते हैं, उसमें आप जो है ये करी पत्ता डाल सकते हैं, उसमें आप धनिया पत्ता डाल सकते हैं, पुदीना डाल सकते हैं,
1: एक बहुत बढ़िया सा कह सकते हैं कि वो बहुत ही
0: अमृत
1: तैयार हो जाएगा।
0: हाँ, अल्कलाइन, कोई नमक चीनी कुछ नहीं डाला।
1: हाँ,
0: ठीक है, इसको आप लेंगे, कोई भी लिक्विड जब लेते हैं कहते हैं ईट योर लिक्विड्स, उसको जैसे कार में पेट्रोल डालते हैं इस तरह का नहीं लेना चाहिए,
1: नहीं लेना है,
0: ठीक है, उसको घूट घूट करके,
1: हाँ,
0: थोड़ा थोड़ा रुक रुक के,
1: इसीलिए ईट ईट कहा गया है।
0: हाँ, मतलब थोड़ा सा लिया मुंह में, 1-2 सेकंड बीच में 2-3 सेकंड रखा, फिर ले लिया उसको। इस प्रकार से एक ग्लास पीने से भले ही आपको पीने में आपको 10 मिनट लगे, लेकिन धीरे धीरे पीना चाहिए,
1: और वो बहुत
0: क्या फायदा होगा। सबसे पहले तो ये है कि जो कोई ऐसा डिजीज नहीं है इससे ठीक नहीं होगा बोल के।
1: अच्छा,
0: हाँ, ठीक
1: क्या
0: है,
1: बात,
0: बीपी शुगर के लिए, इन सब लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है, सर, हर प्रकार का, इवन स्टोमाक में कोई अल्सर है
1: वो भी ठीक कर देगा,
0: वो भी ठीक कर देता है।
1: अच्छा प्रफुल्ल जी, अब वक्त बहुत आगे बढ़ रहा है, तो हम आपको जाने तो ऐसे नहीं देंगे, हम ये जानना जरूर चाहेंगे आपसे कि जो हमारे लिसनर्स हैं उनके लिए आप ऐसी कौन सी 5 छोटी छोटी आदतें बताना चाहेंगे जिन्हें अपना कर कोई भी इंसान स्वस्थ रह सकता।
0: हाँ बिल्कुल, जैसे कहा जाता है प्रकृति के नियमों के अनुसार अगर हम चलेंगे, जीवन भर कभी आपको शारीरिक तनाव कुछ नहीं होगा, कोई रोग छू भी नहीं सकता। सबसे पहला बात, अगर हो सके तो सूर्योदय से पहले उठिए,
1: उठिए,
0: ठीक है, सूर्योदय होने के बाद 10-15 मिनट आप जो है
1: प्राणायाम
0: धूप में बैठे, उस समय का जो धूप है उसमें आप बैठेंगे, करेक्ट, तो उसके साथ साथ आप हो सके तो प्राणायाम भी कर लीजिए।
1: अच्छा, मतलब आप धूप में भी बैठे हैं और आप प्राणायाम भी कर रहे हैं, पॉस्चर भी आपका स्ट्रेट रहना चाहिए।
0: हाँ,
1: ये हो गया,
0: दोनों हो गया,
1: दोनों हो गया। तीसरा,
0: तीसरा खान पान में जो है आप प्राकृतिक भोजन अधिक लीजिए।
1: बिल्कुल,
0: खान पान में प्राकृतिक भोजन जो है आप अधिक लीजिए, जैसे सलाद हुआ, फ्रूट्स हुआ, फ्रूट्स हुआ, सलाद हुआ,
1: जी जी,
0: और कोई तला हुआ भुना हुआ इस तरह का खाना नहीं खाना,
1: ये तीन हो गए,
0: क्योंकि उसमें ना आपको कुछ पौष्टिक तत्व
1: नहीं
0: मिलता
1: है
0: खाली पेट भरने से।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और चौथी आदत,
0: चौथी आदत आपको नींद, पानी पीना,
1: अच्छा,
0: पर्याप्त पानी पीना चाहिए, वही आपके इंटरनली साफ कराता है,
1: बिल्कुल,
0: और आपको हाइड्रेटेड रखता है। पानी कम हो जाएगा तो आपके ब्रेन में अगर पानी कम होता है तो फिर डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है, बहुत डेंजरस सिचुएशन।
1: पांचवी आदत,
0: हाँ, पाचन शक्ति में भी उसका प्रभाव बहुत अच्छा रहता है। और लास्ट पॉइंट जो है नींद, कम से कम रोज 6-8 आवर्स होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: ठीक है, अगर ये हम कर पाते हैं तो सबसे बढ़िया है, अगर नहीं सो पाते हैं तो जरूर धूप में बैठिए, नींद बढ़िया होगा।
1: बिल्कुल।
0: और एक स्पाइनल बाथ कहते हैं, एक टब में, बाथ टब जो होता है उसमें 2 इंच का पानी ले लीजिए।
1: अच्छा।
0: और मेरुदंड स्नान कहते हैं उस मेरुदंड को उस पानी में रहने दीजिए।
1: अच्छा,
0: सर जो है पानी के अंदर

0: नहीं रहेगा, उठा हुआ रहेगा
1: अच्छा
0: तब के सपोर्ट में, और पैर दोनों ही बाहर रहेगा
1: हाँ,
0: तब के
1: मतलब
0: लिए।
1: पूरा स्पाइनल जो मतलब
0: स्पाइनल
1: वो
0: पानी के
1: आपकी
0: अंदर
1: पानी
0: रहेगा,
1: के
0: हाँ
1: अंदर
0: 2 इंच
1: रहना
0: पानी के
1: चाहिए।
0: अंदर रहेगा, उसमें से भी आपका नींद बहुत इंप्रूव होता है और आपका जो है।
1: और छठी आदत कौन सी है?
0: छठी आदत, तो ये सब अगर सही सही से अगर आपका हो रहा है तो आपका जीवन शैली जो है बहुत बढ़िया से जाएगा, और रोज जो आप जो है कुछ समय प्रकृति के साथ, जो मैंने कहा था आपको समय बिताना
1: बिताना है, जो प राकृतिक आवाजें हैं उनको सुनना है।
0: करे।
1: अच्छा प्रफुल्ल जी, चलते चलते आप एक बार फिर से बता दीजिए कि जो 2 मीटर कपड़ा लेना है कॉटन
0: हाँ
1: का, और 2 मीटर की एक पतली सी पट्टी लेनी है, फिर उसको पानी में डिप करना है, फिर उसके बाद हल्का सा उसको दोनों तरफ से मोड़ देना है पानी रहे, फिर नाभि को बीच में रखना है और चारों तरफ वो 2 मीटर
0: बूंदिंग
1: के
0: करना।
1: कपड़ों
0: हाँ
1: को लपेट देना है, फिर वो जो 2 मीटर की पट्टी है उसे माथे से लपेटते हुए लेकर आएंगे और कान के ऊपर तक पूरा उसको दबा
0: हाँ
1: लेंगे।
0: हाँ
1: ऐसा
0: और एक
1: करने से,
0: गले में होता है।
1: और एक गले में ही उसको मिला लेंगे। ऐसा करने से PCOS है, PCOD है, और आपने कौन सी बीमारियां बताई हैं, दूर हो जाएंगे,
0: हाँ वहां यहां तक तो कि जो यूरिक एसिड भी किसी को हो,
1: वो भी ठीक हो जाएगा,
0: स्टोमाक के जितने भी इश्यूज हैं,
1: वो
0: गैस,
1: वो
0: एसिडिटी,
1: किसी भी
0: ब्लोटिंग,
1: टाइम कर सकते हैं,
0: हाँ
1: हम खाली पेट नहीं भी हैं तो भी कर सकते
0: कर
1: हैं।
0: सकते हैं। और जो
1: और
0: 30 मिनट आप बांधेंगे
1: 30 मिनट बांधना
0: उसके
1: है,
0: अंदर कुछ नहीं खाना है, कुछ
1: कुछ
0: नहीं
1: नहीं, कुछ
0: पीना।
1: नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है। प्रफुल्ल जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतना अपना मूल्यवान जो समय है वो हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गणेश चतुर्थी की और हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक
1: क्या
0: यू सो
1: कहना
0: मच।
1: चाहेंगे आप?
0: ऑफ कोर्स, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा स्रोत, जो प्रेरणा का स्रोत है, जो
1: जी
0: ये
1: जी
0: जो आज हम लोग ये लोगों को ये जो बताते हैं, ये वो है हमारे जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज।
1: क्या बात
0: हम
1: है,
0: उनके फॉलोअर हैं। वो बहुत अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत मतलब सेवा की है लोगों का, जो बहुत सारे हॉस्पिटल्स वगैरह बना हुए फ्री ऑफ कॉस्ट में सब चल रहा है अभी, तो उन्हीं के प्रेरणा से हम आज ये सब लोगों को दे रहे हैं जो बहुत जरूरी है लोगों के लिए।
1: और ये तो एक बहुत ही अच्छा सोशल वर्क है, इससे न जाने कितने हजारों लाखों लोग जो हैं वो एक स्वस्थ जीवन
0: बिल्कुल
1: यापित
0: बिल्कुल,
1: कर
0: मैं
1: सकते
0: खुद
1: हैं। आप खुद उसका
0: उसका
1: उदाहरण हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका,
0: थैंक यू सो मच,
1: नमस्कार।
0: थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।

नमस्कार। दोपहर के 1 बजे हैं, सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का दिल्ली शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। 2 दिन के शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री के शिखर सम्मेलन भाषण का एक अंश दिखाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता में लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि भारत ने ब्रिक्स सहयोग को आम लोगों से जोड़ने और वैश्विक दक्षिण को केन्द्र में रखने पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुड गवर्नेंस पब्लिक ट्रस्ट पर निर्भर करता है। अगर जनता का विश्वास नहीं है तो हम सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री लखनऊ में आज लोक आयुक्त संगठन उत्तर प्रदेश के 50वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति भी हमारी विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास के साथ गौरव की अनुभूति कर सकें। आज पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पर्व आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में प्रथम पूज्य

गणेश जी के मंदिर को आकर्षक ढंग से सुसज्जित किया गया तथा गणपति बप्पा की विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने इसमें श्रद्धा और उत्साहपूर्वक भाग लिया। लखनऊ की 10 वर्षीय भार्गवी राय ने निशानेबाजी के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए 69वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 NSCC के लिए क्वालिफाई किया है। वो सब यूथ 10 मीटर एयर पिस्टल महिला वर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करेगी। राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन दिसंबर 2026 में प्रस्तावित है। महज 10 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करना भार्गवी की प्रतिभा और कठिन परिश्रम को दर्शाता है।

जी 1:03 हो चुके हैं, होठों पे तेरी बात लेकर हाजिर है तरन्नुम। और आप सभी को गणेश चतुर्थी और हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपने पहली बार ट्रेन से सफर कब किया था। आप हमसे शेयर कर सकते हैं मेल करके fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। सुनते रहिए सुरों का लखनवी एहसास।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: लखनऊ के बुक लवर्स तैयार हो जाइए, गोमती पुस्तक महोत्सव इज बैक विद 5th edition,
4: जहां होंगी 200 से ज्यादा बुक स्टॉल्स, 22 से ज्यादा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की किताबें, बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग, स्केचिंग, क्विज, थिएटर वर्कशॉप, साथ ही होंगे मशहूर लेखक और रंगमंच पर एक्साइटिंग कल्चरल एंड बैंड परफॉर्मेंसेस।
3: तो आइए 12 से 20 सितंबर सुबह 11 बजे से 8 बजे तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में, एंट्री फ्री, ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन, उत्तर प्रदेश एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता वानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चोटी कॉन्फ्रेंस को कामयाब और नतीजा खेज बनाने के लिए तमाम ब्रिक्स रुकन ममालिक के रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म के सोशल मीडिया हैंडल पर 2 रोज़ा सरबराही इजलास के अहम लम्हात की नुमाइश करने वाला एक वीडियो पोस्ट किया गया है। वीडियो में वज़ीर-ए-आज़म की चोटी कॉन्फ्रेंस की तकरीर का एक इक्तिबास दिखाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के जरिए हिन्दुस्तान ने आलमी सतह पर दोस्ती, शराकतदारी और तआवुन को आगे बढ़ाया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में लोक आयुक्त संगठन उत्तर प्रदेश के 50वें यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने तंजीम के 50 साल तरक्याती सफर और कामयाबियों की दस्तावेजी नुमाइश और एक मुख्तसर फिल्म के साथ एक यादगारी और मालूमाती किताबचा भी जारी किया। प्रोग्राम से खिताब करते उन्होंने कहा, हमारी कोशिश है कि मुआशरे के तमाम तबकात को यकसा मौके फराहम किए जाएं।
6: भारत के संविधान के लिए न्याय, सत्य और समता, यह भारत की वे मौलिक आवश्यकताएं हैं, जिसमें हर व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है। हमारे न्याय का आधार सत्य की कसौटी है और बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को एक समभाव के साथ हम देखेंगे कि बिना किसी आसक्ति के हम भगवान श्री कृष्ण के उस भाव को समत्वम योग्य योग उच्चते, एक समता के साथ, एक समान रूप से हर व्यक्ति के साथ, चाहे वह किसी जाति का हो, किसी मत का हो, किसी संप्रदाय का हो, अगर उसने कोई शिकायत की है तो शिकायत को मेरिट के आधार पर हम उसका समाधान निकालें और उसकी संतुष्टि को पूछें।
5: वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 साल की याद में एक माह तवील मुल्कगीर सेवा संकल्प अभियान का ऐलान किया। ये मुहिम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाई जाएगी, ताकि अवाम की शराकत से 2047 तक एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर के अज़्म को मजबूत किया जा सके। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि ये मुहिम बीजेपी NDA के इत्तेहादों, रजाकार तंजीमों और मुल्क भर के शहरियों के जरिए मुनक्की की जाएगी। उत्तर प्रदेश में आज से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। मशरक उत्तर प्रदेश में आज कजरी तीज मनाई जा रही है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर रियासत के आवाम को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया पर अपने मुबारकबाद पैगाम में वजीर आला ने रियासत की खुशी और खुशहाली की ख्वाहिश की है। इस मौके पर शादीशुदा खवातीन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं और बगैर पानी के रोजा रखती हैं। बाकी तफसील हमारे नामा निगार से।
7: लखनऊ के झूलेलाल वाटिका पर भव्य गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा। गोमती के किनारे

0: आज से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलने वाले इस गणेश उत्सव में 13,000 स्क्वायर फीट का वातानुकूलित वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है, जहां भक्त बैठेंगे और गजानन की चिट्ठी लिखेंगे। उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कजरी तीज पर्व आज मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करेंगी और निर्जला व्रत रखेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मुल्क भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हिंदी दिवस के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि हिंदी सिर्फ एक जबान नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की सकाफत, तहजीब और जिंदगी के इकदार का एक ताकतवर इजहार है। वजीर दिफा ने शहरियों से हिंदी के तहफ्फुज़ और फरोग और इल्म, साइंस, टेक्नोलॉजी और इख्तरा के शोबों में इसे मजीद मजबूत करने का अहद लेने की अपील की। रियासत के कई अजला में वक्फे से हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने की वजह से रियासत के कई दरिया अब भी तुगयानी पर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक फरकाबाद और बलिया में दरियाए गंगा, शाहजहांपुर में दरियाए रामगंगा और अयोध्या, बाराबंकी और तुर्तीपार में दरियाए घाघरा के पानी के सतह बढ़ने से हजारों लोग मुतासिर हुए हैं। कल समाजी बहबूद के वजीर मुमलकत आजादाना चार्ज असम अरुण ने कन्नौज जिले में सैलाब से मुतासर कटरा मीनाबाद इलाके के एक फ्लड का मुआयना किया, ताकि गांव वालों की खैरियत दरियाफ्त की जा सके। दरियस्ता महकमे मौसमियात ने आज हमीरपुर, जालौन, कानपुर नगर, झांसी, इटावा, कानपुर देहात, उन्नाव, औरैया, कन्नौज, सीतापुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश की पेशेंगोई की है। क्रिकेट में भारत ने खवातीन का एशिया कप 2026 जीत लिया है। कल भारत ने फाइनल में श्रीलंका को 72 रनों से शिकस्त देकर 8वीं मरतबा एशिया कप जीतकर दोनों फॉर्मेट्स में एशिया कप जीता है। ये एक रोजा बैनुल अक्वामी और श्रीलंका के खिलाफ हिंदुस्तान की छठी फतह है। ओपनर शिफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने रिकॉर्ड 129 रन की शराकत दारी करके हिन्दुस्तान को 5 विकेटों पर 183 रन बनाने में मदद की। गेंदबाजों को फिर श्रीलंका को 19 ओवर और 4 गेंदों में 11 रनों पर आउट कर दिया। शिफाली वर्मा को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे एफएम पर नशर किया जाएगा।
2: तो आप सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो।
3: शुरू का लखनवी एहसास।
4: और 1:16 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है होंठों पे तेरी बात। और आज हमने आपसे सवाल किया है कि आपने अपनी जिंदगी में पहला सफर कब किया था। आप हमें मेल कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर।

और 1:20 हो चुके हैं और प्रोग्राम चल रहा है होठों पे तेरी बात, तरन्नुम है आपके साथ और आप एंजॉय कर रहे हैं सुरों का लखनवी एहसास, बोले तो एफएम रेनबो। और सवाल हमने ये किया है कि आपने पहली बार सफर कब किया था, और इतने समझदार हैं मेरे जो लिसनर्स हैं, इतने समझदार हैं कि उनको समझ में आ गया कि सफर जो हमने पूछा है तो जाहिर सी बात है कि ट्रेन का सफर पूछा है, और बहुत सारे मेल मेरे पास आ चुके हैं। और सच में पहली बार जब ट्रेन पे इंसान बैठता है तो एक अलग ही एहसास होता है। और अगर हम अपनी बात करें तो पहली बार जब हम कार में बैठे थे, बहुत छोटे थे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कार मेरी खुद की है, और खिड़की के पास बैठे थे और खिड़की के बाहर मुंह बाहर निकाला था कि सब लोग देख लें कि आज हम कार में बैठे हैं, और दूल्हा के साथ बैठे थे और बाद में सब हटा रहे थे, लेकिन हम रो रहे थे कि नहीं हम तो खिड़की के पास बैठेंगे, सब लोग हमें देख लें कि आज हम कार में बैठे हैं। और सच में ऐसे ही होता है, पहला एक्सपीरियंस लाइफ में जब कोई भी काम पहली बार हम करते हैं। और सफ़र की अगर हमने बात की है और रेल की अगर हमने बात की है, ट्रेन की बात की है, तो ट्रेन को पहली बार तो जब पहली बार कोई देखता है तो सोचता है इतनी लंबी गाड़ी होती है, इतनी लंबी ट्रेन होती है, इतने ऐसे पहिए होते हैं, ऐसे चढ़ा जाता है, ऐसे ऐसे दिखाई देता है, और बहुत ही मतलब थ्रिल वाली चीज़ें होती हैं, बहुत ही रोमांचित कर देती हैं इन सारी चीज़ों को जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं। और अनिल कुमार जी का मेल आया मेरे पास, लिख रहे हैं, आदरणीय तरन्नुम मैडम जी को सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल जी। और लिख रहे हैं कि तरन्नुम मैडम जी, जब मैंने पहली बार रेल से यात्रा सफ़र किया था, 2010 था वो, और पहाड़ों पे रेल नहीं चलती है और शहर कभी कभी आना जाना होता है, इसलिए ज़्यादातर सफ़र तो बस, टैक्सी और अपनी बाइक से ही करते हैं, लेकिन पहली बार जब सफ़र किया था तो इनको बहुत ही रोमांचित कर गया था वो सफ़र। और ग्राम गेंडाखाली नंबर 1 टनकपुर जिला चंपावत उत्तराखंड से किया है मेल अनिल कुमार जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। सतीश अनिजा जी का मेल आ गया है और लिख रहे हैं कि हिंदी दिवस और गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लिख रहे हैं कि रेलगाड़ी का सुखद सफर पहली बार का तो याद नहीं, लेकिन जब से होश संभाला 2-3 बार सफर किया है। क्या बात कर रहे हैं आप सतीश जी, मतलब जब से आप होश में हैं, मतलब जब से होश संभाला है आपने, 3 ही बार आप बैठे हैं ट्रेन में, तो बड़ा अमेजिंग लग रहा है। 2012 में चंडीगढ़ से जयपुर सफर किया था, जो पूरी तरह से याद है, और ज्यादातर अपनी गाड़ी में ही सफर करता हूँ क्योंकि मेरा आना जाना ज्यादातर पहाड़ों पर ही होता है, वहां वैसे ही रेलवे की सुविधा नहीं है। ये 100% सही है कि रेलवे का सफर सुरक्षित और सुखद होता है। जब आप कभी रेलवे का सफर करके रेनबो लखनऊ जरूर आऊंगा चाय पीने। बिल्कुल आइए, आप चाय क्या, हम आपको खाना खिलाएंगे, आप आइए रेनबो और सफर कीजिए, आप ट्रेन पे बैठ के आइए। और साथ ही साथ महेंद्र दीपन जी का मेल आ गया है, लिख रहे हैं, गांव रूण जिला नागौर राजस्थान से सादर प्रणाम, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और लिख रहे हैं कि आपने पहली बार ट्रेन

सफर कब किया का जवाब देना चाहता हूँ और लिख रहे हैं कि मैंने पहली बार ट्रेन का सफर साल 2006 में किया था, तब ये सिर्फ 12 साल के थे। और एक बार पापा ने किसी बात पर मुझे डांट दिया और पिटाई भी कर दी, तो मैं गुस्से में घर से भाग गया और मेरे गांव से रेलवे स्टेशन करीब 22 किलोमीटर दूर था। किसी से लिफ्ट लेकर स्टेशन पहुंचा और वहां पर जो पहली ट्रेन मिली बस उसी में ये बैठ गए। और मुझे तब कहाँ पता था कि वो ट्रेन मुझे सीधे मुंबई ले जाएगी, क्योंकि वो ट्रेन आखिर में मुंबई जाकर रुकती थी। मैं मुंबई पहुंच गया लेकिन ना कुछ खाया पिया और ना किसी को जानता था। तो रात में उसी प्लेटफॉर्म पर मैंने रात बिताई। अगले दिन किसी से राजस्थान जाने वाली ट्रेन के बारे में पूछा और आखिरकार वापस घर लौट आया। और इस पूरी घटना का सबसे मजेदार हिस्सा ये है कि उसके बाद पापा ने मुझे कभी डांटा नहीं, यानी बिना टिकट आपने लग रहा है कि रेलवे में सफर किया है, सीधे सीधे ये बात ही बताना चाहते हैं महेंद्र जी। चलिए कोई नहीं, और बहुत अच्छा लगा। और भी बहुत सारे मेरे पास मेल हैं जो शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने पहली बार सफर कब किया था, लेकिन उससे पहले एक और चीज है जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। ट्रैक आप तक।

0: जानकारी से सराबोर, मनोरंजन से ओतप्रोत,
1: जोर का झटका हाय जोरों से लगा, हाँ लगा।
2: अंदाज है सबसे निराला,
0: क्योंकि ये है 100.7 FM रेनबो की पाठशाला।
3: ओ गॉड, स्टे ट्यून्ड टू चैनल सतरंगी रे।

और 1:32 हो रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है होटो पे तेरी बात। और आज हमने आपसे सवाल किया है कि आपने पहली बार ट्रेन का सफर कब किया था। आप हमें मेल कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर। और प्रतिभा तायल का मेरे पास मेल आ गया है, ग्वालियर से मेल कर रही हैं, लिख रही हैं कि मैम पहली बार मेल कर रही हूँ, उम्मीद तो नहीं है कि शामिल होगा लेकिन फिर भी उम्मीद लगाया हूँ कि शायद शामिल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रतिभा जी कि आपने हमें मेल किया। और दूसरी चीज़ ये लिख रही हैं कि आपने बहुत ही ऐसी बात पूछ ली है कि जो मैं आज भी सोच लेती हूँ तो

मुझे लगता है कि क्या हो गया था उस वक्त। और जब इनका मेल हमने पढ़ा तो लगा कि सचमुच अगर ऐसा हुआ था इनके साथ, और ऐसा ही हुआ था इनके साथ, इसमें कोई भी झूठ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा ना होता तो क्या होता, ये आज शायद अपनी फैमिली के साथ नहीं होती। लिख रही है 1989 की बात है, मैं बहुत छोटी थी और सब लोग साथ में ट्रेन में सफर कर रहे थे, कहीं शादी में ये लोग जा रहे थे और ये जो हैं वो छूट गई थी और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया कि प्रतिभा जी कहीं छूट गई हैं। और जिस ट्रेन में इन्होंने सफर किया वो ट्रेन वहां नहीं जा रही थी, सारे लोग मुंबई जा रहे थे, लेकिन जो जिस ट्रेन में ये चढ़ गई थी वो ट्रेन मुंबई न जाके कहीं और जा रही थी। और जब ये वहां पर पहुंची हैं तो बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी, लेकिन एक अंकल थे और रात के 2 बजे वो ये रोती हुई परेशान थी। उस वक्त में किसी के पास फोन भी नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था, कैसे ये अपने घर वालों को इन्फॉर्म करती, कुछ भी नहीं था। फिर वो अंकल इनको ट्रेन से उतार कर अपने घर ले गए और ये बहुत डरी सहमी उनके घर पहुंची। उन्होंने पूरी घर में इनको आराम से सुलाया, खाना खिलाया, अच्छे से इनका आदर सत्कार किया और फिर इनके पापा को इन्फॉर्म किया। और फिर दूसरे दिन इनके पापा आकर इनको ले गए और सब लोगों ने इतनी सारी मन्नतें मानी थी, इतनी सारी मन्नतें मानी थी कि लग ही नहीं रहा था कि वापस प्रतिभा तायल अपने घर लौट पाएंगी। और आज भी जब ये उस घटना को याद करती हैं तो इनका जो पूरा शरीर है वो सिहर उठता है और वो उन अंकल को हमेशा थैंक करती हैं, हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनसे एक पारिवारिक रिश्ता बन गया था। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी, और देखिए आपका मेल हमने शामिल किया, उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम भी आप हमें जरूर मेल करेंगी।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
3: नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
4: RHL गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा,
5: जानो फिर मानो।
6: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।

और 1:43 हो चुके हैं और प्रोग्राम चल रहा है होटो पे तेरी बात। आज हमने सवाल किया है कि आपने पहला सफर ट्रेन में कब किया था, आप हमें मेल करके बता सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मेल करके मैं बताया। जावेद अख्तर साहब का मेल आ गया है, रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से हैं, लिख रहे हैं कि सच कहें तो हम बयान नहीं कर सकते कि हमने जो पहली बार ट्रेन में सफर किया था 1999 में, और किसी उसमें ये गए थे कॉन्फ्रेंस में, दिल्ली में थे और मीटिंग थी, वहां ये शामिल हुए थे, तो इन्होंने तब सफर किया था। लेकिन आपने कुछ बताया नहीं कि आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ था, क्या आपके जहन में वहां की वो चीजों की बातें, कुछ अगर यादें ताजा हैं तो वो आपने में जहन में बताया नहीं कि क्या था। एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। और साथ ही साथ अलीजा खान का मेल आ गया है, लिख रही हैं आप कैसी हैं, बिल्कुल ठीक हैं हम, और लिख रहे हैं 4 दिन से ना तो ईमेल कर पाए हैं और ना ही एफएम सुन पाए हैं, मेरा फोन खराब हो गया था, मेरे दोस्त जो हैं वो हैं वहां पर। अलीजा, ये आप सवाल का मेरे जवाब नहीं है जो आपने इस वक्त दिया है, लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने हमें मेल किया। राजकमल यादव बरैया जी हैं और ग्राम बरैया से इन्होंने मेल किया, पोस्ट ब्लॉक सूरतगंज बाराबंकी से लिख रहे हैं, नमस्ते मैम जी कैसी हैं आप, प्रोग्राम इनको अच्छा लग रहा है। और मेरा पहला सफर जो है 2010 में लखनऊ से हरदोई था, और ट्रेन में जब ये बैठे थे पहली बार तो बहुत अच्छा लगा था, और इतने दिनों में सिर्फ 3 बार ट्रेन पर बैठे हैं, बताइए सिर्फ 3 बार ट्रेन पर बैठे हैं, और इनको तब भी बहुत अच्छा लगा था। और सच में बहुत अच्छा ही लगा होगा कि जब सफर होता है एक अलग सा मतलब माहौल होता है, अलग से लोग अजनबी कितने सारे इकट्ठा मिल जाते हैं, और कैसे सीट पे बैठना और कैसे चढ़ना, और ट्रेन में चाय पीने का जो मज़ा है, छोटे छोटे जो समोसे मिलते हैं उसका जो मज़ा है, या कोई ना कोई बार बार आता रहता है और ये वो, तो एक उसका अलग ही एक होता है मज़ा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद मेल करने के लिए। कोमल तिवारी जी का भी मेल आ गया है और कोई इन्होंने हमें सवाल का जवाब नहीं दिया है। और नेक्स्ट जो मेल आया है मेरे पास, पिंकू सोनी का आया है, टिकैत नगर बाराबंकी से मेल कर रहे हैं, लिख रहे हैं मुझे डेट तो नहीं याद है बट ये याद है कि पहली बार मैं माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर गया था और बहुत आनंद आया था, और हमारे एक दोस्त हैं अमाल विश्वकर्मा जो जी, सो थैंक्स एट माई मेल। अच्छा, सब कुछ इन्होंने मिला के लिख दिया है, और पहली बार इन्होंने जब ट्रेन में सफर किया था तो इनको ये याद है। बहुत बहुत धन्यवाद मेल करने के लिए। और इसके अलावा जो मेल आया है मेरे पास वो आया है रामराज जी का, और लिख रहे हैं जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से, रामराज राजू भानु पप्पू पासी मनीष नीरज मधु शंकर भैया, लिख रहे हैं तरन्नु बिटिया को प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया रामराज जी, आपको भी प्यार भरा नमस्कार, और ऐसे ही आप अपना आशीर्वाद बना के रखिये मेरे ऊपर। और आगे लिख रहे हैं कि मेरे गांव के बगल से ट्रेन चलती है, और जितना ट्रेन में चढ़ने में मजा आता है उससे ज्यादा ट्रेन को देखने में मजा आता है। ये तो बात बिल्कुल सही है, जिन लोगों का स्टेशन के पास घर होता है भले ही ट्रेन की गड़गड़ाहट से उतनी गहरी नींद में नहीं सो पाते हैं, लेकिन कभी वो लोग एंजाइटी के शिकार नहीं होते हैं, क्योंकि वो हमेशा बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं कौन आ रहा है, कौन चढ़ रहा है, कौन उतर रहा है, कौन ट्रेन का वेट कर रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं, और ट्रेन को देखना, फिर विसल होना, और फिर ट्रेन का चलना, मतलब बहुत सारी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो जब लोग देखते हैं तो उनको बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो कहीं पर अकेले हैं या उनको तन्हाई जो है वो मारे डाल रही है। तो तन्हाई को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो फिर आप रेनबो को एंजॉय करते रहिए, सुनते रहिए।

मनपामत घोषक श्री लोपसंग तोपतेन तकनीकी अभियंता श्री हेमंत स्वर्गियारी लमस्ट्रिंग और तानिंग तको ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अमोल कुमार दास और स्टूडियो में उपस्थित अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूँ आज की हिंदी उद्घोषिका टाशि छोटन। आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है।

मीडियम वेव 107.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का तावांग केंद्र है। आज सन 2026 सितंबर महीने की 14 तारीख व दिन है सोमवार। अब से लेकर रात 9:16 तक हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी पर उपस्थित रहेंगे कार्यक्रम निष्पादक श्रीमती संगीत सोमू।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। थोड़ी देर में यानी दोपहर 2 बजे आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार और 2:15 पर हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: Bakhmut Allied forces withdrew from the archipelago. Germany's Alexander Zverev has won the men's singles title of the U.S. Open Tennis, beating American Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in New York last night. This marks Zverev's second major title of 2026 following his French Open victory in June. Ben Shelton's loss keeps the 23-year Grand Slam title drought alive for American men, though he became the first black American man to make it to a U.S. Open final since Arthur Ashe in 1972. And now before we end the bulletin, the headlines once again. BRICS leaders stress energy security as crucial foundation for economic development and national security, caution against weaponization of technology and critical minerals. China significantly cuts down troop deployment in 2025, says Defense Ministry report, terms security situation in Jammu and Kashmir as stable. Union Home Minister Amit Shah says India's linguistic diversity strengthens unity amidst diversity, congratulates people on occasion of Hindi Divas. IMD predicts heavy rain and thunderstorm for several districts across Gujarat today. Ganesh Chaturthi being celebrated across the country today with great devotion, pomp and gaiety. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान। देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में आयोजित दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करके और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह को बरकरार रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। एक रिपोर्ट।
2: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान लोगों के विकास और ग्लोबल साउथ के हितों को विशेष महत्व दिया। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि सम्मेलन के पहले ही दिन सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना था। पश्चिम एशिया की स्थिति पर ब्रिक्स नेताओं ने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समस्या का समाधान करने की अपील की। वहीं आम लोगों और नागरिक सुविधाओं की सुरक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा सभी नेताओं ने हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने पर भी सहमति बनी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने त्रिकुरल के प्रचार प्रसार

0: ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तिरुकुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। विदेश मंत्रालय ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। मंत्रालय ने उन सभी राज्य सरकारों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने ब्रिक्स के विभिन्न बैठकों की मेजबानी की। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन का आयोजन जटिल कार्य था जिसके लिए सरकार और देश के सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास जरूरी थे। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि सेना के अथक प्रयासों के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। रक्षा मंत्रालय ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है। विरोध प्रदर्शनों में भी गिरावट आई है और पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई है। रिपोर्ट में चीन के साथ समग्र स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है। वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। वास्तविक नियंत्रण रेखा LSE और पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में 10 संयुक्त शस्त्र ब्रिगेड के आकार के बल तैनात किए गए हैं। भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर सकारात्मक विकास हुआ है जिससे स्थिरता आई है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2025-26 प्रदान किए। श्री शाह ने हिंदी दिवस के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया।
1: हिंदी शब्द संसाधन, हिंदी टंकन अंशुलिपि, इसके प्रशिक्षण का भी शुभारंभ हुआ है। राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार का भी सबको सम्मानित करने का काम हुआ है। जिन जिन लोगों को राजभाषा कीर्ति सम्मान और राजभाषा गौरव पुरस्कार मिला है वो सभी को मैं मन पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
0: गृहमंत्री ने वंदे मातरम को देश का गौरव बताया।
1: वंदे मातरम की उद्घोषणा के साथ न केवल आजादी की उत्कंठता को, आजादी प्राप्त करने की तीव्र भावना को जागृत किया, इसके साथ साथ भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डालने का काम भी बंकिम चंद्र जी ने किया था। आजादी के बाद भी इसको पूर्ण स्वरूप से स्वीकार करते करते 80 साल हो गए। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने वंदे मातरम को फिर से पूर्ण स्वरूप गौरव के साथ सरकारी समारोह में गाने का काम किया।
0: दो दिन के अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से नवी मुंबई में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हिंदी और महाराष्ट्र के समृद्ध भाषाई, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परंपराओं के बीच संबंध को उजागर करना है। सम्मेलन में विभिन्न संस्थानों, संगठनों, बैंकों और मंत्रालयों की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखे हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है।
2: हिंदी दिवस वो दिन है जब हम सिर्फ एक भाषा का उत्सव नहीं मनाते बल्कि उस भाव को नमन करते हैं जो हमें शब्दों के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ता है। संत कबीर ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए।

0: वाणी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारे संस्कारों की भी पहचान है। हिंदी ने सदियों से भावनाओं को शब्द दिए हैं। भाषा का वास्तविक गौरव तभी है जब वो ज्ञान को सबके लिए सहज बनाए और समाज को जोड़े। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। इस हिंदी दिवस पर आइए हिंदी को केवल सिर्फ एक दिन के रूप में न याद करें बल्कि इसे बोलें, पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ाएं। साथ ही दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करें क्योंकि भाषा में जितनी स्वीकार्यता होगी वो उतनी ही आगे बढ़ेगी। आकाशवाणी की ओर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से 9 राज्य में 147 कोयला खंडों की नीलामी की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि इससे लगभग 47,500 करोड़ रुपए का राजस्व और 4,90,000 नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित वाणिज्यिक खदानों से लगभग 3,090 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। भारत के विद्युत मंत्रालय ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को 13 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में आई बाढ़ से नेपाल के जल विद्युत अवसंरचना को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे नेपाल के घरेलू बिजली उत्पादन क्षमता में कमी आई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता उत्पन्न हुई है। राजस्थान में 309 शहरी स्थानीय निकायों के लिए हुए चुनावों की वोटों की गिनती जारी है। अब तक मिले रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। राज्य के 10 नगर निगमों में से भाजपा जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा और उदयपुर सहित 6 में आगे है जबकि कांग्रेस पाली और बीकानेर में बढ़त बनाए हुए है। भरतपुर में निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार भूमि मालिकों की जानकारी के बिना किए जाने वाले फर्जी भूमि पंजीकरणों को रोकने के लिए एक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली शुरू कर रही है। ये संपत्ति पंजीकरण को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। केंद्रीय विद्युत और आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका पहुंच गए हैं। ऊर्जा प्रचुरता पर G20 मंत्री स्तरीय बैठक 14 से 16 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के अनेक जिलों में आज तेज बारिश और आंधी तूफान की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, नवसारी और वलसाड़ इन 5 तटीय और अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, बोटाद, अमरेली, भावनगर और सूरत समेत 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट प्रभावी है। इन दौरान 41 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। वहीं राज्य में मानसून की नई बारिश से फसलों को संजीवनी मिली है जिससे किसानों में खुशी की लहर छाई है। राज्य के 35 बांध अपनी पूरी क्षमता से भरने के कारण हाई अलर्ट पर है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा और बिहार में भी तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 2 दिन तक बारिश जारी रह सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में भगवान गणेश की पूजा की।
3: गणेश चतुर्थी की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री गणेश सबके जीवन में हमेशा शुभ करें, हर व्यक्ति के जीवन में खुशी, उत्साह, उत्सव रहे, इसकी कामना करता हूं। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद बना रहे।

0: गणेश चतुर्थी की वजह से आज घरेलू शेयर बाजार बंद हैं। कमोडिटी बाजार में आज सुबह के सत्र में कोई कामकाज नहीं हुआ, लेकिन शाम 5 बजे से कारोबार फिर शुरू हो जाएगा। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में ज्वेरेव ने अमरीका के बेन शेल्टन को हराया। ये 2026 में ज्वेरेव का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने जून में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान और देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे पंडित जसराज की आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंडित जसराज की आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत। इसके साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बज चुके हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे हागे तादा रोबो आनिया तागे तानियो तिलिंगयाजी और नापंग ओदी की आवाज में चंद आपतानी आधुनिक गीत।

0: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे हागे दादा रुबु अन्या तागे तान्यो तिलिंग याजी और नापंग ओडी की आवाज में चंद आपतानी आधुनिक गीत। इसी के साथ आज का विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत यही पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। श्रोता प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवंग की 9वीं कक्षा की छात्रा टीटी फाचंग से पुस्तकें पढ़ने से हमारा दृष्टिकोण कैसे बदलता है विषय पर चंद शब्द।
1: प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं टीटी फाचंग पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवंग कक्षा 9वीं की छात्रा। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्तालाप की विषय किताब पढ़ने से हमारा नजरिया कैसे बदलता है। मनुष्य का जीवन अनुभव से बनता है और किताबें हमें ऐसा अनुभव देती है जो हमें कभी स्वयं नहीं जिए होते। किताबें हमारे विचारों को दिशा देती है और हमारी सोच को गहराई प्रदान करती है। जब हम किताब पढ़ते हैं तो हम केवल शब्दों को नहीं पढ़ते बल्कि हम लेखक की सोच, उसके संघर्ष और उसके सपनों से जुड़ जाते हैं। इससे हमारे नजरिए में बदलाव शुरू होता है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, किताबें वह आईना होती है जिसमें हम खुद को भी पहचान पाते हैं। किताबें वह अच्छा इंसान बनाने की सलाह देती है। वे ईमानदारी, सच्चाई और सम्मान जैसे मूल्यों को मजबूत करती है। किताबें हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है। किताबें हमें यह भी सिखाती है कि दुनिया को सिर्फ अपने नजर से नहीं बल्कि दूसरों की नजर से भी देखना चाहिए। जब हम किसी कहानी के पात्र का दर्द समझते हैं तो हमारे भीतर संवेदनशीलता बढ़ती है। हम दूसरों के प्रति अधिक सहनशील और समझदार बनते हैं। इतिहास की किताबें हमें यह सिखाती है कि गलतियों से क्या सीख मिलती है। विज्ञान की किताबें हमें सोचने का नया तरीका देती है और सेहत की किताबें हमारे दिल और दिमाग दोनों को छू जाती है। एक प्रसिद्ध विचार है, जो किताबें नहीं पढ़ता वो सीमित सोच में जीता है और जो पढ़ता है वो खुले विचारों के साथ जीवन जीता है। आज के समय मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। जानकारी तो हमें हर जगह मिल जाती है लेकिन समझ और विवेक हमें किताब से ही मिलती है। किताबें हमें सिखाती है कि हर बात का उत्तर तुरंत नहीं होता, कुछ सवालों के लिए देरी और सोच की जरूरत होती है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, अच्छी पुस्तकें मनुष्य की अच्छी मित्र होती है। किताबें हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्ञान केवल स्कूल और किताबों की पढ़ाई से ही मिलता है लेकिन यह सच नहीं। महान लेखकों व्यक्तियों द्वारा लिखे गए किताब भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। किताबें पढ़ने से हमारी भाषा सुधरती है, हम अपने विचार बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाते हैं और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। एक किताब कई बार हमें मुश्किल समय में सही राह दिखा देती है। कहानियां हमें सपने देखना सिखाती है, जीवनी हमें संघर्ष से डरना नहीं सिखाती और प्रत्येक पुस्तकें हमें हार न मानने की शक्ति देती है। एक बहुत गहरी बात कही गई है, किताबें जल सकती है लेकिन उनसे निकले विचार कभी नहीं मरते। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि किताबें पढ़ना केवल एक शौक नहीं, यह व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति पढ़ता है वो हर दिन थोड़ा और बेहतर बनता है। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प ले कि रोज थोड़ा समय किताबों के लिए निकालेंगे, क्योंकि किताब हमारे सोच को बदलती है और सोच बदलने से पूरा जीवन बदल सकता है। धन्यवाद।
0: श्रोताओं अभी आपने सुना पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा 9वीं कक्षा की छात्रा टीटी फाचंग से पुस्तकें पढ़ने से हमारा दृष्टिकोण किसे बदलता है विषय पर चंद शब्द। इसके साथ कार्यक्रम मेरी बात यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:34 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
1: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
2: श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म चक दे इंडिया से हेमा सरदेसाई की आवाज में। शब्द रचना है जयदीप साहनी की व संगीत है सलीम सुलेमान का।

अभी आपने सुना फिल्म नीरजा से गीत कविता सेठ की आवाज में, गीतकार थे प्रसून जोशी व संगीत था विशाल खुराना का। आप सुन रहे कार्यक्रम नारी संगीत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म स्ट्रीम ऑफ द ईयर से श्रेय घोषाल, उदित नारायण और विशाल शेखर की आवाज में। शब्द रचना है अन्विता दत्त की व संगीत है विशाल शेखर का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म स्ट्रिंग ऑफ द ईयर से गीत। इस गीत के साथ आज का कार्यक्रम नारी संगीत यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।

0: किधर है?
1: बेटी का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी अपडेट।
0: ये तो झटपट काम है।
1: कैसे?
0: अगर केवाईसी डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
1: और बाकी चेंजेस?
0: घर बैठे वीडियो केवाईसी या आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
2: RBI कहता है
3: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
4: श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म राजनीति से मोहित चौहान और अंतरा मित्रा की आवाज में। गीतकार है इरशाद कामिल व संगीत है प्रीतम का।

अभी आपने सुना फिल्म हीरो से गीत मोहित चौहान और प्रिया पंचाल की आवाज में गीत करते हैं निरंजन अयंगर व संगीता सचिन जिगर का। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे जावेद अख्तर द्वारा शब्द फिल्म एक दीवाना था से। लियोन डिसोजा और सुजैन डी मिलो की आवाज में इस गीत को संगीत से संवारा है ए आर रहमान ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म छिछोरे से गीत तुषार जोशी की आवाज में गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य व संगीता प्रीतम का। आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म बर्फी से पपन और सुनिधि चौहान की आवाज में। शब्द रचना है नीलेश मिश्रा के व संगीत है प्रीतम का।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम के अगले गीत से पहले आइए सुनते हैं संदेश।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम गीत मंजरी का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म जब वी मेट से मोहित चौहान की आवाज में। इरशाद कामिल के लिए इस गीत को संगीत से संवारा है प्रीतम ने।

0: अभी आपने सुना फिल्म तुम मिले से गीत, नीरज श्रीधर की आवाज में गीत कार्तिक कुमार पर संगीत था प्रीतम का। इसी गीत के साथ आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जिले की अपनी एक पहचान है, हर परंपरा, हर अनसुनी कहानी, हर छिपी हुई मंजिल भारत का एक अनमोल रत्न है, जेम्स ऑफ

0: या चैलेंज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल जो देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स और हर जिले की अनूठी पहचान को राष्ट्रीय मंच देती है। शुरुआत 2 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, अब आपकी कहानी भी पूरे देश तक पहुंच सकती है। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर वेव्स ओटीटी इंस्टॉल करें, खुद को रजिस्टर करें और माई वेव्स सेक्शन के प्रोग्राम्स में जाकर जेम्स ऑफ इंडिया चुनिए, अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करिए और अपनी एंट्री सबमिट कर दीजिए। चुनिंदा कहानियों को मिलेगा वेव्स ओटीटी और प्रसार भारती के राष्ट्रीय मंच पर स्थान, क्योंकि भारत की असली पहचान सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि उसके गांवों, कस्बों और जिलों की उन कहानियों में बसती है जिन्हें दुनिया तक पहुंचने का इंतजार है। अगर आपके पास अपने क्षेत्र की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, स्थानीय परंपराओं, प्रेरणादायक व्यक्तित्वों या अनसुनी कहानियों को दुनिया के सामने लाने का जुनून है तो यही है सही अवसर। आइए अपने जिले की पहचान को एक नई उड़ान दें और सिर्फ पहचान ही नहीं, आपके हुनर को मिलेगा सम्मान भी। जिला स्तर पर 50,000 रुपए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर 2 लाख रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपए तक के पुरस्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर क्रिएटर की अपनी कहानी, हर कहानी एक राष्ट्रीय मंच की हकदार।
1: श्रोताओं, अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे पंडित विश्व मोहन भट्ट से गिटार वादन। राग है बागेश्वरी व तबले पर संगत दिया है सुखविंदर सिंह नामदारी ने। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम राग रंग।

श्रोताओं, आप सुन रहे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आपसे थोड़ी देर में यानी 4:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी ईटानगर सुन प्रसारित हिंदी में समाचार व 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार।

0: आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। देशभर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू एवं उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। गृह एवं सूचना तथा जनसंपर्क आयुक्त एवं मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के लिए चुनाव पर्यवेक्षक न्यायालय अतः ने अपर सुबनसिरी जिले के मतदान केंद्रों का दौरा किया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के प्रायोजन में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के तहत अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पासीघाट द्वारा रन फॉर वंदे मातरम 8150 मिनी मैराथन का आयोजन। प्रेस सूचना ब्यूरो ईटानगर द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के लिए आयोजित सप्ताह भर का गुजरात एक्सपोजर टूर सम्पन्न। देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। और अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करके और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा के निर्बाध प्रभावों को बराबर रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया है कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों का आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। एक रिपोर्ट।
1: 2 दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान लोगों के विकास और ग्लोबल साउथ के हितों को विशेष महत्व दिया। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि सम्मेलन के पहले ही दिन सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना था। पश्चिम एशिया की स्थिति पर ब्रिक्स नेताओं ने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समस्या का समाधान करने की अपील की। वहीं आम लोगों और नागरिक सुविधाओं की सुरक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा सभी नेताओं ने हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने पर भी सहमति बनी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्रालय ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों का आभार व्यक्त किया। मंत्रालय ने उन सभी राज्य सरकारों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने ब्रिक्स की विभिन्न बैठकों की मेजबानी की। उन्होंने कहा है कि शिखर सम्मेलन का आयोजन जटिल कार्य था जिसके लिए सरकार और देश के सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास जरूरी थे। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। सरकार ने कहा है कि सेना के अथक प्रयासों के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। रक्षा मंत्रालय ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है, विरोध प्रदर्शनों में भी गिरावट देखी गई है और पत्थरबाजी की कोई घटना भी सामने नहीं आई। रिपोर्ट में चीन के साथ समग्र स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया। वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बलों के तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC और पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में 10 संयुक्त सशस्त्र ब्रिगेड के आकार वाले बल तैनात किए गए हैं। भारत और चीन के बीच राजनीतिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय वार्ता से उत्तरी सीमाओं पर सकारात्मक विकास हुआ जिससे स्थिरता आई है। देशभर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। सन 1949 में इस दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के

0: में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है।
1: हिंदी दिवस वो दिन है जब हम सिर्फ एक भाषा का उत्सव नहीं मनाते, बल्कि उस भाव को नमन करते हैं जो हमें शब्दों के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ता है। संत कबीर ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारे संस्कारों की भी पहचान है। हिंदी ने सदियों से भावनाओं को शब्द दिए हैं। भाषा का वास्तविक गौरव तभी है जब वो ज्ञान को सबके लिए सहज बनाए और समाज को जोड़े। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। इस हिंदी दिवस पर आइए हिंदी को केवल सिर्फ एक दिन के रूप में न याद करें बल्कि इसे बोलें, पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ाएं। साथ ही दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करें क्योंकि भाषा में जितनी स्वीकार्यता होगी वो उतनी ही आगे बढ़ेगी। आकाशवाणी की ओर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 6th अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2025-26 प्रदान किए। श्री शाह ने हिंदी दिवस के उद्घाटन सत्र को संबोधित भी किया।
2: हिंदी शब्द संसाधन, हिंदी टंकन अंशुलिपि, इसके प्रशिक्षण का भी शुभारंभ हुआ है। राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार का भी सबको सम्मानित करने का काम हुआ है। जिन जिन लोगों को राजभाषा कीर्ति सम्मान और राजभाषा गौरव पुरस्कार मिला है वो सभी को मैं मन पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
0: हिंदी दिवस के अवसर पर गृह मंत्री ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को देश का गौरव बताया है।
2: वंदे मातरम की उद्घोषणा के साथ न केवल आजादी की उत्कंठता को, आजादी प्राप्त करने की तीव्र भावना को जागृत किया, इसके साथ साथ भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डालने का काम भी बंकिम चंद्र जी ने किया था। आजादी के बाद भी इसको पूर्ण स्वरूप से स्वीकार करते करते 80 साल हो गए। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने वंदे मातरम को फिर से बार पूर्ण स्वरूप गौरव के साथ सरकारी समारोह में गाने का काम किया।
0: हिंदी दिवस के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू एवं उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने सभी को शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि भारत की विविधता, भाषाओं और संस्कृतियों को जोड़ने में हिंदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने हिंदी के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना को और अधिक मजबूत करने का आह्वान किया। वहीं उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि यह हमारी भावनाओं, विचारों और संस्कृति को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। गृह एवं सूचना तथा जनसंपर्क आयोग एवं मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के लिए चुनाव पर्यवेक्षक न्यायालय अतः ने अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के गुबा, चेताम और निलिंग सर्कल के मतदान केंद्रों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने मतदान स्तर पर अधिकारियों, बूथ स्तर अधिकारियों, स्थानीय प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ बातचीत की और SIR प्रक्रिया के लिए जमीनी स्तर पर की गई तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने क्षेत्र में सामने आ रही समस्याओं पर विचार कर पात्र नागरिकों तथा मतदाता सूची में उचित रूप से शामिल होना सुनिश्चित करने तथा पुनरीक्षण प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पासीघाट द्वारा रन फॉर वंदे मातरम 8150 नामक मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। यह आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के प्रायोजन में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित महीने भर चलने वाले समारोह का हिस्सा था। विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग द्वारा आयोजित इस मिनी मैराथन का उद्देश्य 7 से 9 अक्टूबर 2026 तक होने वाले 3 दिवसीय भव्य समापन समारोह के पूर्व गतिविधियों के रूप में देशभक्ति को फिटनेस और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ना था। अरुणाचल प्रदेश के 9 सदस्यीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल का सप्ताह भर चला गुजरात एक्सपोजर टूर संपन्न हुआ। इस दौरे का आयोजन प्रेस सूचना ब्यूरो PIB ईटानगर द्वारा किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधिकारिक ह्यूमनॉइड रोबोट सहित उभरती प्रौद्योगिकियों का भी अवलोकन किया तथा अधिकारियों एवं संबंधित हितधारकों के साथ बातचीत की। देशभर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य की देवता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: एक्चुअल कंट्रोल एलएसी शो का ये नहीं है के जी संसम रेगा जाना के खप कुक मामी योर न्यू शो होंदुम ब्रिंगी है ने सुन सुन नानी देश क्या कर गया ने ना रंग रंग सोसोख केरिक सुंगप निन कॉम्पल तोयुक तोगा चाले नंदो नंसिन देश के उन्हें हिंदी दिवस निया ग्यागर किट दुजन सुंजी शुद्ध निन तब तुंगा ग्यागर उइशुंग नंसी लेदम निचिन कुजब अमिचा सी सुक्तों न्यंतिं जुया चंगमाशा समजे सुंगुनिन तमचे नंसी लुंचिन सी से नंगुनिना पैना ग्यागर केखब निंगा रंग कीनिन रिक्षुंग सांप देचा मुनु माप नोहु बानं रंग रंग सुसु सी मिसे लेंगे बानं रंग केरिक बानं न्यांपु सुर्चिनिन मिन्यम क्युंजिन नंग कोसुंबर निये सुन नंबर चिलो चिक्दों गुब्या शिप्जु शेगु लोचे हिंदी केरिक निन देव नगरी यिगे बानं क्यागर शुंके यिनुक थोका वेलेन Ya, Techuk Sampache, Sunze Shudumbringi Nangni, Techudin Tamache, Kushav Amisha, Si Tonker, Mombega, Raj Basha, Gorov Nin, Raj Basha, Kirti, Ewart Nina, Sure, Nidong, Kelly Langel Nin, Kelly Grolog, Yagrk, Kirikuk, Toka, Chale, Nangan Banasha, Sure Punamber, वे नमशी लेखों से नेसुल नांगदांगा ग्यागरक नदे गुजरात का जोंडल महाप का नमचरनिन प्रूदिरिया येंगा थेम रमाख नींगे नांगनी ग्यागर कियों नेंगा देशुक्तर गनेश चतुर्थी निया तुचिन सुजी शुयुक गोजुगु नंबर लाइंगेना उद्देबका देशुक नेसुल के थेंशो शुसुबानां दूस लाइंगेनां दाउस शुजे Otlek, Tarik, Chinesuktor, Kotsuya, Kyundum, Plang, Lengering, Si Shin, Kor, Nade, Arunachal Pradeshkak, Chirik, Lekunin, Tubden, Shiribling, Nesi, Deya, Sabjung, Nangyuk, Tsedang, Tan Kisukor, Nade, Chirik, Lekung, Nedunba, Kushav, Tubden, Kelden, Debka, Kame, Rasujit, Tang Tikshum Kunsen Lirima Puyuji Deshtao Sennangsa
1: Lange Tsamusha Tsamdi Deshidele Da Desh Kunsen Lirima Arunachal Pradesh Churik Legungu Kujab Tudden Kalden Tabina Injiga Juna Director Yimbor Naucho Togayan Nyetun Panyeshudumbur Kunsen Lirima Pebono Kunsen Lirima Pesaning Deshidele Nyeshurik
2: Tujichi
1: Lesula the Deshi also director Tuden Kaldenla, Pepsi Shurgodowning, the Desh Lerim Kunsel Yuya, Jungo Lerim Sangan, Langena Shamar, Nitsupuichi de Zingena, Ta Injiga, C. Lanning Edamur, Tauzo Kornae, Langena de Sanex Sundor Shindere, C. Lanning also Zinam, Taut Konje Benesuginam, Ujidangadanko, Kusega, Pandoje Benesinoinam, Uzukorda Desh, Langena Shamar, Shurgodan Gayena, Tabinazova. Arunachal Pradesh Churik Legung, Roka Nishidumbur, the Churik Legung Segoti Nangya, it Damachi, Tubden Sherubling Foundation Nia, Torkunba Pipme, Dharma Kefereka Nombur, Tulku Tanzan Kumarimache, Pinak Sopayimbur, Tubden Sherubling Foundation Nims Churik Legung de Tia, Udlek Tarik Chinistor, Kotuya Tarik Kali Tisak, Chundum Plang Lang Ototi, Ujezego Imbur Ning Shukta, Shukum Sego Imbur. Ejikta break up long sumlung otodi, technical session otodi, yakse, the doce si running core, chungadozo, subjung, gavity that the soyuko, setamachin of ten kise, Ejikta also mardish, lundin to yer marseta de yana, pepkan yam of reimbur, itnasha neda also nesiso sanu de reimbur ye, Ejikta also, director pepko da jumza nichin, kalan sabina shanada shuna, si running also, tana kisho yam, gada mangitning, body ketoga yakse mardi nangai, si yed namato imbur sumdur, Yapoda si learning yo so si inam. Su konjega yanara kotu inam. Nada ejikode nama yjula.
2: La sola.

0: से जेम्स ऑफ इंडिया चुनें, अपना ओरिजिनल डिजिटल कंटेंट अपलोड करें, सभी आवश्यक डिटेल्स भरें और सबमिट पर क्लिक करें एंड योर एंट्री सबमिटेड सक्सेसफुली। जेम्स ऑफ इंडिया, आपकी जिले की कहानी, पूरे भारत की पहचान।
1: श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम जरूखा। कार्यक्रम जरूखा में हम आपका अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। जरूखा में पहले सुनी एक जरूरी सूचना। जिला उपायुक्त तवांग के कार्यालय से प्राप्त सूचना अनुसार ऐसा देखा गया है कि गाय, बकरी, टट्टू और खच्चर आदि जैसे जानवरों को तवांग कस्बे में चराई के उद्देश्य से खुला और बिना देखरेख के छोड़ दिया जाता है, और चूंकि ऐसे आवारा जानवर बेवजह घूमते रहते हैं और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, किचन गार्डन, बारो, सड़कों आदि को क्षति पहुंचाते हैं और यातायात में बाधा उत्पन्न करते हैं, और चूंकि जन सुरक्षा के हित में सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को होने वाले नुकसान और नुकसान को रोकने के लिए ऐसे आवारा पालतू जानवरों को नियंत्रण में रखना अनिवार्य और आवश्यक हो गया है। अतः जिला उपायुक्त सह जिला मजिस्ट्रेट तवांग द्वारा सेक्शन 152 BNSS 2023 और सेक्शन 10 पशु अधिक्रमण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए तवांग टाउनशिप और आसपास के क्षेत्रों में पालतू पशुओं को उनके मालिकों द्वारा खुला छोड़ने पर रोक लगाते हैं। इसके अतिरिक्त मवेशियों और अन्य पालतू पशुओं को मालिकों को अपने पालतू पशुओं और मवेशियों को अपने अपने परिसर में तत्काल प्रभाव से बंद रखना होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर BNS 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला उपायुक्त द्वारा तवांग टाउनशिप क्षेत्र और उपनगरीय क्षेत्र में इन आवारा पशुओं को हटाने और जब्त करने के लिए आवश्यक उपाय अपनाए जाएंगे। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप जिला उपायुक्त के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। जरूखा में अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज शाम 6:20 पर मोनपा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम शेदुन लेरिम, जिसमें आप सुन सकेंगे ग्यांगोंग अनिगुनपा के अन्य यीशु पेमा और साथियों से बौद्ध भक्ति गीत। शाम 7:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आज शाम 7:10 पर कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण। 7:30 पर कार्यक्रम फौजी वायु के लिए फिल्म संगीत, जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म सुल्तान से राहत फतेह अली खान की आवाज में गीत, फिल्म जब हैरी मेट सेजल से अरिजीत सिंह की आवाज में गीत और फिल्म गदर 2 से उदित नारायण, आदित्य नारायण और मिथुन की आवाज में गीत। आज शाम 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार, 7:50 पर रीजनल न्यूज, 7:55 पर आप सुन सकेंगे एक देशभक्ति गीत फिल्म फना से महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में। आज रात्रि 8:00 आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत, 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9:00 न्यूज एट 9। तो ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब आप सुनिए हमारे केंद्र से कल यानी 15 सितंबर 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। रोजाना की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर 2:00 अंग्रेजी समाचार के साथ, 2:15 पर हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कल दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम वंदना, जिसमें आप सुन सकेंगे आनी गिंदन जामो और साथियों से बौद्ध भक्ति गीत। कल दोपहर 3:00 विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत, 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात, 3:33 पर कार्यक्रम नारी संगीत।

0: मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 6:10 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज लॉन्च कर रहा है 1 अगस्त से। क्या आप इसमें भाग लेना चाहते हैं? आइए सिर्फ 1 मिनट में जानते हैं कैसे। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या एपल ऐप स्टोर से वेव्स ओटीटी ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें। अब अपने मोबाइल नंबर या उपलब्ध किसी भी साइन इन विकल्प से रजिस्टर करें और लॉग इन करें। इसके बाद माय वेव्स सेक्शन में जाएं और अपना क्रिएटर प्रोफाइल तैयार करें। अब अवेलेबल प्रोग्राम में

कल दोपहर 3:50 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी, 4:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग, जिसमें आप सुन सकेंगे कलाकार निषाद खान से सितार वादन। कल शाम 4:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। मोनपा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम नमथर कल शाम 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मोनपा में श्री संगीत आशीष से, 5:35 पर कार्यक्रम दांगबोक समा और शाम 6:20 पर कार्यक्रम शेदन लेरिम, जिसमें आप सुन सकेंगे ग्योंगोंग अनि गोनपा के अनि यशिपेमा और साथियों से बौद्ध भक्ति गीत का शेष भाग। कल शाम 7:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 7:10 पर कार्यक्रम पोएम ऑफ द डे, 7:11 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से, 7:21 पर कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग, 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार, 7:50 पर रीजनल न्यूज। कल शाम 7:55 पर आप सुन सकेंगे एक देशभक्ति गीत कार्यक्रम कौमी तराने के अंतर्गत लता मंगेशकर की आवाज में। कल रात्रि 8:00 आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत, 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि के ठीक 9:00 न्यूज एट नाइन। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इन्हीं जानकारी के साथ आज का कार्यक्रम जरो का यही पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे मनपा में।

0: Langinans Dada Shendun Lerima Gyangong Ani Gunbak Ani Yishpimsi Krizdono Dimcho Lamuchebak Choga Senangbur Langina Uzumar Mutia Noon of Suze Grodin Karmakriche Lunting Tawang Nungingodon Shendun Lerima Semidoimbur Langina Udeba Lunting Tawang Dishnub Digmunbak Lerimbana Chazang Dudur Langit Samban of the Suni Sondur Langina Dao Shuji Na Hindiga Sigur Nishuji Injiga Sigur Lungtinggang Delhi ka jusen nang sa.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा. ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है. नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करने और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा का निर्बाध प्रवाह बनाए रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया. सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है. अमेरिका के एक विश्लेषक ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है. उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है. अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है. सरकार ने कहा है कि वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई है. रक्षा मंत्रालय ने वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर स्थिरता आई है. रिपोर्ट में बताया गया है कि सेना के अथक प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के विदेश मंत्री ले हुआई ट्रुंग के साथ भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में दोनों देशों के बीच राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा भारत में निर्मित रक्षा उपकरणों की आपूर्ति बढ़ाने

0: पर चर्चा हुई। वियतनाम भारत की लुक ईस्ट, आसियान, हिंद प्रशांत महासागर और ग्लोबल साउथ नीतियों में महत्वपूर्ण साझेदार है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ यूक्रेन की स्थिति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में दो दिन के हिंदी दिवस और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
1: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर इस सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
0: श्री शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने मिजो संस्कृति को संरक्षित रखते हुए हिंदी सीखने का आह्वान किया है। उन्होंने आज आइजोल में हिंदी दिवस समारोह में ये बात कही। मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता बढ़ सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Union Home Minister Amit Shah today said that India's culture and literature are like a lotus, with each regional language representing one of its petals. He said if even one petal is lost, the beauty of the entire lotus diminishes. He stressed that Hindi should play a central role while ensuring due respect and dignity to all regional languages. Mr. Shah was speaking after inaugurating the two-day Hindi Divas 2026 and the 6th Akhil Bharatiya Rajbhasha Sammelan at Navi Mumbai. He said that though India has many languages and dialects, the Indian sentiment and the voice of the nation must remain one. He said, linguistic diversity is the strength of the country and Hindi can serve as an effective bridge of communication among various Indian languages, thereby strengthening national unity. He also lauded Maharashtra for its multilingual culture. BRICS leaders have stressed that energy security is a crucial foundation for social and economic development, national security, and the welfare of all nations. During the two-day BRICS summit held in New Delhi, the member nations highlighted the need to enhance energy security by ensuring energy market stability and maintaining undisrupted flows of energy from diverse sources and protection of critical energy infrastructure. During the summit, Prime Minister Narendra Modi cautioned that the weaponization of technology and critical minerals could become a hurdle to progress. India hosted the summit under the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, placing people-centered development and the interest of the Global South at the heart of its presidency. The most significant outcome of the BRICS summit was the adoption of the New Delhi Declaration, which outlined the shared position on major geopolitical and economic issues.

0: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today co-chaired the 19th India-Vietnam Joint Commission meeting with his Vietnamese counterpart in New Delhi. In a social media post, Dr. Jayashankar said that during the outcome-oriented meeting, they discussed ways of strengthening India-Vietnam political, defense and security cooperation and increased supply of made-in-India defense articles. They also held constructive discussion on trade, investment and supply chains and expanded market access marine, agricultural products and pharmaceuticals of both nations. Chief of Naval Staff Admiral Krishna Swaminathan has met Chief of the Royal New Zealand Navy Rear Admiral Garen Golding and discussed ways to enhance naval ties, expand operational engagement and strengthen maritime information exchange. They also discussed the first bilateral naval exercise between the two countries planned for 2027. The visit will further strengthen India-New Zealand naval ties through discussions on maritime security, information sharing, training, interoperability, emerging technologies and professional exchanges. Earlier, during his visit to Australia, the Chief of Naval Staff met Australia's Chief of the Defence Force, Admiral Mark Hammond, in Canberra. India and Mercosur have signed the first additional protocol to the India-Mercosur Preferential Trade Agreement, or PTA, marking an important step towards facilitating paperless trade and modernizing customs procedures between India and the Mercosur countries. Ministry of Commerce and Industry said the move is expected to facilitate the transition towards digital and paperless trade documentation, reduce transaction costs and processing time associated with the issuance and verification of certificates of origin, and improve the efficiency of preferential trade under the existing India-Mercosur ties. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the fifth edition of SEMICON India 2026 at Yashobhoomi, New Delhi on Wednesday. It will bring together over 600 exhibitors, 300 international companies and delegations from more than 40 countries. The exhibition will feature 6 country pavilions and 12 state government pavilions along with a dedicated startup pavilion. And the IMD has issued an orange color warning for very heavy rainfall over Gujarat for the day. Heavy rainfall is also expected in Delhi, NCR and Bihar till tomorrow. And that's the end of this news bulletin.
1: श्रोताओं आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का तावांग केंद्र है। समय शाम के 7:10 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: एक सवाल पूछूं, अगर कल कोई आपके डिस्ट्रिक्ट घूमने आए तो आप उसे सबसे पहले कहाँ ले जाएं?
3: सोचिए, मैं किसी फेमस टूरिस्ट प्लेस की बात नहीं कर रही, मैं उस जगह की बात कर रही हूँ जो सिर्फ आपकी खास है। शायद वो आपका फेवरेट सनसेट पॉइंट, या फिर वो स्वाद वाला एड्रेस या बचपन वाली गली, या फिर कोई ऐसा मेला जिसके बारे में बाहर के लोग कम ही जानते हैं। बस यही तो आपकी कहानी है और इस कहानी को पूरी दुनिया तक पहुँचाने का समय आ गया। अपने डिस्ट्रिक्ट की कहानी रिकॉर्ड कीजिए और दिखाइए कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक नया जम छुपा है। तो इंतजार किस बात का? जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में पार्टिसिपेट कीजिए, 1 से 3 मिनट का वीडियो बनाइए और माई बेस पे अपलोड कीजिए और आप भी जीत सकते हैं 5 लाख, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के पास है कई कहानियां।
1: श्रोताओं प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे सब्जी की खेती की पैदावार में बढ़ोतरी लाने के लिए वैज्ञानिक तरीके विषय पर कृषि विज्ञान केंद्र तवांग के SMS यानी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट श्री चंद्र कुमार सिंह से वार्ता।
4: किसान भाइयों एवं बहनों नमस्कार। किसान भाइयों, आज के चर्चा में हम बताएंगे कि किसान भाई जो सब्जी का खेती किस तरह से करे कि ताकि जो अधिक पैदावार मिल सके, क्योंकि किसान भाई यहाँ पर मैं तवांग डिस्ट्रिक्ट में देखता हूँ कि खेती तो करते हैं सब्जी का, लेकिन उनको जो अधिक पैदावार नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनको जो है प्रॉफिट भी अधिक नहीं मिल पाता है। तो इसलिए सबसे पहले जो है सब्जी का खेती करने के लिए आपको जो है खेत का चुनाव करना बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों यहाँ पर जो है सब्जी का खेती मुख्यतः जो है बारिश के सीजन में की जाती है, तो खेत का चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए कि ऐसे जगह पर चुनाव करें खेत का जहाँ पर जो कि बारिश का पानी ना रुकता हो। वहाँ पर जो है अगर बारिश का पानी रुकेगा तो आपका जो सब्जी की जो फसल होती है वो जो सड़ करके नष्ट हो जाएगी।

तो खेत का चुनाव ऐसा करना चाहिए जहाँ पर पानी जो है नहीं रुकता हो। उसके बाद जो सॉइल टेस्टिंग, किसान भाइयों जैसा जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सॉइल मृदा परीक्षण के बारे में जो है बहुत जो है जोर दिया है। उन्होंने एक स्कीम शुरू की है सॉइल हेल्थ कार्ड, इसके अंतर्गत मिट्टी की जाँच कराई जाती है और उसके आधार पर फसल में क्या क्या खाद चाहिए वो जो है डाला जाता है। तो कोई भी फसल लगाने से पहले किसान भाई को मिट्टी की जांच कराना बहुत जरूरी होती है। तो मिट्टी की जांच कराने से पहले आपको जो सॉइल सैंपल लेना अति आवश्यक है। तो सॉइल सैंपल जो है किस तरह से ले इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपका जो खेत है, खेत के जो है चारों बाउंड्री से करीब जो है 1 मीटर छोड़ करके पूरे खेत से जो है 7-8 जगह से आपको जो सॉइल सैंपल लेना है। और ये ध्यान देना है कि जगह से जो सॉइल सैंपल आप ले जहाँ पर जो है खरपतवार वगैरह ना हो, ना तो गोबर की खाद वहाँ पर आपने फेंक रखी है। तो जो मैंने बताया कि अभी 6-7 जगह से सॉइल सैंपल लेना है, तो एक जगह से सॉइल सैंपल आप कैसे लेंगे इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है खेत में जो है थोड़ा बहुत घास वगैरह थोड़ा बहुत हो उसको जो हटा दे। हटाने के बाद आप जो है करीब जो है 6 इंच गहरा गड्ढा खोदे और उसके जो है गड्ढे की जो है मिट्टी आप निकाल करके बाहर फेंक दीजिए। और ऊपर से जो है कट लगाते हुए नीचे 6 इंच तक आप खुरपी की सहायता से जाइए और उसमें जो है मिट्टी जो है गड्ढे में गिर जाएगा, तो उस मिट्टी को जो है आप बाहर निकाल लीजिए। इसी तरह से 7-8 जगह से आप सैंपल ले लीजिए। ये सैंपल लेने के बाद अब जो है पूरा जो है सैंपल को एक जगह मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके आप जो है गोला बना लीजिए। गोला बनाने के बाद उसके आमने सामने का दो भाग जो है हटा दीजिए। उसके बाद जो है आमने सामने का दो भाग और आपस में मिक्स कर लीजिए। इस तरह से किसान भाई जब तक आप मिक्स करते जाइए जब तक आपका मिट्टी जो है 200-250 ग्राम ना हो जाए। जब आपका मिट्टी 200-250 ग्राम हो जाता है तो उसको जो है एक पॉलीथीन में जो है आप डाल लीजिए और उस पॉलीथीन में आप जो है अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, गांव का नाम और अपने जो है खेत का पहचान जो है लिख दीजिए। क्योंकि किसान भाई के पास जो है कई खेत होता है कई जगह पर, तो किसान भाइयों को मालूम रहता है कि इस खेत का हमारा क्या पहचान है, दूसरे खेत का क्या पहचान है। इससे जो है आपको जो है रिपोर्ट आएगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि मैंने जो इस खेत से मिट्टी दिया हुआ है। तो वो जो है नमूना लेने के बाद आप जो है यहाँ हमारे तवांग डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र जो कि चांगबू विलेज के पास जो पोटैटो सीड फार्म है वहाँ पर जो है हमारा ऑफिस है, वहाँ पर मिट्टी की जांच हम लोग करते हैं, वहाँ पर आप ले आइए। नहीं तो जो है जिला कृषि अधिकारी का जो ऑफिस है डीसी ऑफिस के पास में है वहाँ पर आप मिट्टी का नमूना दे दीजिए। तो किसान भाई आपका जो है करीब 10 दिन में आपका मिट्टी जाँच होकर के आपको जो है रिपोर्ट मिल जाएगी। और ये मिट्टी का जांच जो है निःशुल्क होता है, मतलब कि किसी प्रकार का आपसे कोई फीस या पैसा जो है नहीं लिया जाता है। तो मिट्टी का जांच कराने के बाद आप जो है जब रिपोर्ट लेने आएंगे तो आप जो है बता दीजिए कि उस खेत में आप कौन सी फसल लगाएंगे, तो उस आधार पर आपको जो है कितना जो है देसी खाद, कितना यूरिया, कितना DAP या कितना पोटास और कितना जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको खेत में चाहिए सॉइल हेल्थ कार्ड पर लिख करके आपको दे दिया जाता है। तो उस हिसाब से आप जो है खेत में जो है खाद डालिए। इसके बाद जो है मिट्टी जांच कराने के बाद किसान भाई जब आप खेती करने जा रहे हैं तो उसमें जो है सीड का बहुत रोल होता है। इसमें जो है गुड क्वालिटी का सीड चाहिए। गुड क्वालिटी सीड वही होता है कि जिसकी अंकुरण क्षमता अधिक हो और उस जो है बीज में कोई बीमारी ना लगा हो, कोई कीड़ा ना लगा हो और उसमें जो है कोई कंकड़ पत्थर या धूल वगैरह ना हो, वो जो है गुड क्वालिटी का सीड होता है। जहाँ तक हम देखते हैं किसान भाई अपना बीज ज़्यादातर यूज करते हैं तो वो जो है यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसी खेत में लगातार उसी बीज को लगाएंगे अपना, तो उसमें जो है बीमारी बहुत जो है आती रहती है। इसलिए जो है गुड क्वालिटी का सीड करना चाहिए। तो गुड क्वालिटी का सीड जो है सिलेक्शन करते समय आपको जो है ध्यान देना है कि उसके जो क्या क्या करेक्टर्स होने चाहिए। सबसे पहले उसमें जो फिजिकल प्योरिटी ये होता है कि उसमें कोई भी धूल, कोई भी घास या कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए। तो यानी आपने जो 1 kg सीड लिया है तो उसमें करीब जो है 1-2 ग्राम तो हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए, जो फिजिकल प्योरिटी होता है। इसके अलावा जो है जेनेटिकल प्योरिटी एक होता है, जैसे आपने जो कैबेज लगाने जा रहे हैं तो कैबेज में जो कई सारी वैरायटी आती है जैसे BC76 है, इसके अलावा हिमलता है, हिमसोना है, तो किसान भाइयों को मालूम होना चाहिए कि मैं जो है BC76 लगाने जा रहे हैं तो उसमें जो BC76 का गुड़ आता है कि नहीं है, इस तरह का जो है सीड आपको जो है लेना चाहिए। इसके अलावा आपका जो है करीब जो मॉइस्चर कंटेंट, कोई भी जो है मॉइस्चर कंटेंट है यानी कि जब हम सीड को जो स्टोर करते हैं, जैसे अब सीड को कोई किसान भाई मिर्चा वगैरह का सीड जैसे या मूली वगैरह का सीड स्टोर करते हैं तो उसमें जो 7-8% तक नमी होना चाहिए। अगर इससे जो है ज़्यादा नमी होगा तो उसमें जो फंगस लग जाएंगे तो वो जो है सीड जो है ख़राब होता है। तो जब आप किसान भाई सीड तैयार करके आप स्टोर करेंगे तो उसमें 7-8% से ज़्यादा नमी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जर्मिनेशन कैपेसिटी ऑफ द सीड, जो हम सीड यूज करेंगे खेत में उसका जर्मिनेशन क्षमता जो है

करीब 90 से 100% होना चाहिए। इससे कम अगर होता है तो जो अच्छा सीट नहीं माना जाता। इस तरह से हम जो सीट का चुनाव करते हैं। इसके बाद किसान भाई, जब आप जो है सीट को जो है इस खेत में जो है लगाते हैं, तो आप देखते हैं कि कई बार जो सीड जो है जर्मिनेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई जो है बहुत सारे जो फंगस के जीवाणु जो है हमारे ज़मीन में रहते हैं, वो जो है उस सीड को जो खा करके नष्ट कर देते हैं। तो किसान भाई कहते हैं कि हमारा सीड खराब था, या बाजार से लिए रहते हैं तो बोल देते हैं कि जो सीड खराब था, जर्मिनेट नहीं हुआ। तो किसान भाई, जब कोई भी सीड आप लगाए सब्जी का, जैसे कैबेज हो गया, कैलीफ्लावर हो गया, ब्रोकली हो गया, टोमेटो हो गया, मिर्चा हो गया, तो उसको जो है दवा से ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए एक दवा होता है आपका कैप्टन दवा है, उसके बाद थीरम है या बाउस्टीन होता है। ये सब दवा जो है पाउडर के रूप में आता है, और 1 kg सीट में जो है 3 ग्राम दवा लगता है। किसान भाई जो है ज़्यादा ज़्यादा 10 ग्राम या 20 ग्राम यूज करते हैं, तो बहुत थोड़ा जो है दवा आपको चाहिए। तो सबसे पहले तो आप जो सीड जो यूज करेंगे उसको जो एक फर्श पर रख लीजिए, उसमें हल्का सा पानी छिड़क दीजिए। हल्का सा पानी छिड़कने के बाद आप जो उस दवा का जो पाउडर है उसको जो उसके ऊपर छिड़क दीजिए हाथ से, और हाथ में जो आप जो है ग्लव्स पहन करके तब जो है छिड़किए। छिड़कने के बाद जो है हाथ से पूरे जो है दवा को जो है बीज में मिला लीजिए। तो इसको मिलाने के बाद आप देख दीजिए, करीब जो आधा एक घंटा आप रख दीजिए, वो सूख जाए, दवा उस पर सीट के ऊपर चिपक जाए, तब उसको जो सोइंग करना जरूरी होता है। तो सोइंग करने से पहले, खेत में आप सोइंग करेंगे या नर्सरी में सोइंग करेंगे, तो उसको जो है सबसे पहले सीड बेड, जैसे आप किसान भाई कैबेज या कैलीफ्लावर या मिर्चा का जो पौधा तैयार करते हैं, तो सबसे पहले उसका पौधा तैयार करने के लिए आपको सीड बेड बनाना जरूरी होता है। तो सीड बेड वह स्थान होता है जहां पर आपका बीज अंकुरित होता है, और जिसके माध्यम से वह अपनी जड़ से खाद पानी ये सब लेकर के आगे जो है डेवलप करता है। तो सीड बेड के जो है क्या लक्षण होने चाहिए? बीज आप जहाँ जिस खेत में डालेंगे उसमें जो है नमी की मात्रा होनी चाहिए खेत में, यानी आपका जो है मिट्टी में मॉइस्चर काफ़ी अधिक पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, ताकि वो जो बीज के संपर्क में आ जाए। अगर आप जो सूखा मिट्टी में जमीन में बीज डाल देंगे तो जो है जर्मिनेट नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको जो नमी नहीं मिल पाता है। और मिट्टी जो है, जो सीड बेड का मिट्टी होता है, वो ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टाइट होगा तो उसमें जो अंकुरण होगा तो उसका जो जड़ निकलेगा और जो है मिट्टी में फैल नहीं पाएगा। तो इसलिए मिट्टी जो है मुलायम होनी चाहिए, और जो है सीड बेड की मिट्टी में जो है पर्याप्त मात्रा में नमी हो, वायु होना चाहिए, ताकि जो है पोषक तत्व जो है पौधे जो है वो ले सके। इसके अलावा जो है कोई भी जो है बीमारी वगैरह के रोगाणु भी नहीं होना चाहिए, इसलिए जो है पहले जो है सीड बेड में थोड़ा बहुत दवा भी डाल देना जरूरी होता है। इसके अलावा जो है खरपतवार वगैरह भी, उस सीड बेड में खरपतवार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर खरपतवार रहेगा तो आप कोई भी खाद या उर्वरक डालेंगे तो जो खरपतवार भी उसको ले लेगा, जिससे आपका जो पौधा जो है कमज़ोर होगा। और जो है मिट्टी की जो ऊपरी सतह या लेयर होता है वो भी टाइट नहीं होना चाहिए, अगर वो टाइट हो तो पहले जो बीज डालने से पहले उसको जो तोड़ देना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है तोड़ना। तो इस तरह से जो आपका सीड बेड का जो एक करेक्टरिस्टिक्स होता है। इसके अलावा किसान भाई, मैं देखता हूँ कि आपका जो है ग्रीन मैन्योरिंग, आप किसान भाई कोई भी रासायनिक खाद वगैरह डालते हैं, तो रासायनिक खाद वगैरह आप डालते हैं तो जब तक मिट्टी का फिजिकल कंडीशन सही नहीं रहेगा तो खाद जो है पौधों को नहीं मिल पाता है। तो इसलिए या तो आप जो है देसी खाद डालें खेत में, या तो जो ग्रीन मैन्योरिंग जैसे हरी खाद होता है, हरी खाद में आपका सनई हो गया, ढैचा हो गया, सोयाबीन हो गया, उर्द मूंग की दाल हो गया, इसकी जो है सबसे पहले आप जो है बुआई कर दीजिए। बुआई करने के बाद जब आप देखते हैं कि उसमें 50% जो है फूल निकल आता है, तो उसमें उसको जो काट करके फिर खुदाई करके मिट्टी में पलट दीजिए। तो इससे हमारा जो है काफ़ी अधिक जो है उत्पादन में आपका लाभ मिलता है। तो ग्रीन मैन्योरिंग से आपको क्या क्या फायदा होता है? इससे आप जो है मिट्टी में जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ती है। अगर जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है मिट्टी में, तो उसमें जो हमारे सूक्ष्म लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी भी संख्या जो है बढ़ जाती है। तो हमारे लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं जो वायुमंडल में हमारा जो नाइट्रोजन होता है, खाद होता है, उसको जमीन में फिक्स करते हैं, उससे वो जो पौधों को जो है खाद के रूप में पौधा उसको यूज करता है। इसके अलावा जो मिट्टी में आपका जो पोषक तत्व होते हैं उसको जो जीवांश पदार्थ जो है पौधों को उपलब्ध कराता है, जिससे वो जो है भोजन के रूप में काम आता है। इसके अलावा जो है मिट्टी में जो खरपतवार होता है, खरपतवार को जो है ग्रीन मैन्योरिंग आप करते हैं तो इसमें खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं, और जो है मृदा का जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है ग्रीन मैन्योरिंग करने से आपका जो वो भी सुधरता है। इसमें समझ लीजिए कि आपके जैसे बरसात के दिन में बारिश हुआ तो जो मिट्टी का जो पार्टिकल होता है वो जो अलग अलग रहता है, तो जब आप जो उसमें ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं तो उसमें जो पार्टिकल को बांधे रखता है आपस में, तो उससे जो पानी भी नहीं बहने पाता है बारिश का पानी, तो उससे मिट्टी में जो है आपका नमी अधिक दिन तक बना रहता है। और जो ग्रीन मैन्योरिंग करने से आपका जो फसल की पैदावार में करीब जो 10 से लेकर के 60% तक वृद्धि होती है। इसके बाद आप जो है प्रॉपर यूज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, जैसे मैंने शुरू में किसान भाइयों को बताया कि कोई भी आप जो है सब्जी की फसल

आएंगे तो उसमें जो मिट्टी की जांच करा करके तब आप खाद और उर्वरक डालें। तो वही जो है, जो भी फसल आपने लगाने जा रहे हैं सब्जी की, जैसे आपका कैबेज हो गया, कैलीफ्लावर हो गया, टमाटर हो गया, मिर्चा हो गया, भिंडी हो गया, तो हर एक जो है फसल को जो है खाद और उर्वरक की मात्रा जो है अलग अलग चाहिए। तो आप किसान भाई को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप जो मिट्टी की जाँच करा करके उस फसल को जो है आप खाद और उर्वरक दिए, क्योंकि अगर आपने जो कम खाद और उर्वरक देंगे, अंदाज से दे देते हैं, तो आपका जो पैदावार भी कम मिलेगा। अगर जो आपने ज़्यादा दे दिया तो इसमें आपका जो पैसे की हानि हो जाती है, इससे भी आपको जो है ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो है किसान भाई, जैसे बायो फर्टिलाइजर जो जैव उर्वरक होता है, उसका जो खेत में यूज प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर तवांग में मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ज्यादातर एसिडिक सॉइल होता है। तो एसिडिक सॉइल में होता है कि आयरन और एल्यूमिनियम जो है तत्व पाए जाते हैं, तो हम कोई भी जो है उर्वरक अब डालते हैं तो इसमें का जो फास्फोरस होता है, आयरन और एल्यूमिनियम, उसको जो है फिक्स कर लेता है, पकड़ के अपने पास रखता है, उसको पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो उसको जो है पौधों को लेने लायक बनाने के लिए PSB यानी फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया करके एक जो है बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक आता है। 5 kg आप जैव उर्वरक PSB लीजिए और उसको जो करिए जो है 30 से 40 kg गोबर की खाद में आप मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद आप जो पूरे जो 1 हेक्टेयर में उसको जब खेत की जुताई करते हैं उस समय पूरे मिट्टी में आप मिला दीजिए। तो इसमें हमारा जो फास्फोरस अनुपलब्ध रहता है खेत में और जो पौधों को उपलब्ध हो जाता है। तो इस तरह से जो है हम जो है बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करके हम अधिक पैदावार ले सकते हैं। इसके बाद रिकमेंडेड डोज ऑफ सीड रेड, किसान भाइयों मैं देखता हूँ कि आप लोग जो है ऐसे अंदाज से जो है 1 हेक्टेयर या 1 एकड़ में जो है सीड जो है डाल देते हैं, लेकिन ये जो है तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे डाल देंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो है 1 हेक्टेयर के लिए, जैसे कैबेज 1 हेक्टेयर लगाने जा रहे हैं तो उसमें जो 500 ग्राम सीड चाहिए, तो अगर 500 ग्राम सीड आप जो है उससे ज़्यादा डाल देंगे तो आप जो पौधा जो है पास पास हो जाता है, तो उससे आपका जो है पौधे की ग्रोथ जो है कम होती है, आपकी पैदावार अधिक नहीं मिल पाती है। इसके अलावा जो कम सीड रेट डाले तो उससे हमारा जो प्लांटिंग डिस्टेंस होता है वो ज्यादा दूर दूर पर हो जाता है, इससे भी हमारी जो पैदावार कम मिलती है। तो किसान भाइयों को ध्यान देने की जरूरत है कि 1 हेक्टेयर के लिए जितना हमारा सीड की मात्रा निर्धारित की गई है उतना जो है यूज करें, ताकि हमको जो है अधिक से अधिक पैदावार मिल सके। इसके बाद टाइम एंड मेथड ऑफ सोइंग, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो फसल जो है जिस समय जो है बुआई की जाती है उससे इस समय उसको जो है लगाना चाहिए। अगर उससे जो है हट करके आप लगाएंगे तो उससे जो है कि पैदावार उसको जो है करीब जो है तापमान जलवायु जो है नहीं मिल पाता अच्छी तरह से, तो उससे जो है पैदावार कम होती है। इसके बाद मेथड ऑफ सोइंग, जैसे किसान भाई आते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर छिड़क करके सोइंग करते हैं सब्जी वगैरह का भी, यानी कि लाइन से आप जो है ट्रांसप्लांटिंग नहीं करते हैं। इसका जो लाइन से ट्रांसप्लांटिंग करने से आपको फायदा है कि उसमें आपको जो है घास जो है निकालने में आपको सुविधा रहेगी, प्लस जो है आप जो है लाइन अगर ईस्ट और वेस्ट मतलब कि जिस तरफ से आपका धूप निकलता है उस तरह से आप जो है लाइन लगाएंगे उस तरफ से शुरू करेंगे तो आपको जो है धूप जो है दिन भर मिलेगा, क्योंकि आपका धूप जो है पौधों को जो कम मिलेगा तो उसमें जो है भोजन नहीं बन पाता है, जिससे जो आपका पैदावार कम हो जाती है। तो किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि आप जो है लाइन से जो है कोई भी सब्जी की फसल हो उसको जो है लाइन से लगाना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद इंटरक्रॉपिंग, जैसे किसान भाई देते हैं कि अगर आप जो है बैंगन हो गया, टमाटर या मिर्चा खेत में लगा रखे हैं तो इसमें करीब 2-2.5-3 महीने बाद आपका पैदावार शुरू होता है, मतलब कि फल आना शुरू होता है। उस खेत में जो है काफ़ी जगह खाली रहता है तो उसमें आपका धनिया हो गया, गाजर, मूली, पालक, मेथी, ये सब किसान भाई लगा देंगे तो उससे ये होता कि आपका जो है ये सब 2 महीने में आपका तैयार हो जाएगा, तो इससे आपको अतिरिक्त लाभ मिल जाता है। इंटरक्रॉपिंग भी करना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद तो वाटर मैनेजमेंट, तो जैसे यहाँ पर जो है जब सब्जी खेती करते हैं तो आपका जैसे फरवरी में नर्सरी डालते हैं, फिर मार्च से तो यहाँ पर बारिश शुरू हो जाता है, तो किसान भाइयों को देखना जरूरी होता है कि अगर बारिश जो है बीच में करीब 15-20 दिन बारिश नहीं हुआ, आपका जो गैप हो गया, तो हमारी जो सब्जी की फसल आपने लगा रखी है तो उसमें जो कहीं से भी आपको पानी देने की बहुत जरूरी होता है, नहीं अगर पानी नहीं देंगे तो आपका फसल जो है सूख जाएगा, इससे पैदावार कमी होती है। तो किसान भाई अभी जो है गवर्नमेंट ने वाटर स्टोरेज टैंक का जो है स्कीम चला रखी है, तो किसान भाइयों जो एग्रीकल्चर ऑफिस है वहां पर ये स्कीम है, तो आप लोग जो है वहां से आकर के जानकारी लेकर के आप जो है टैंक बना सकते हैं। तो इसमें टैंक में होता है कि आपके बारिश के दिन में पानी जो है इकट्ठा कर लीजिए, और जो है जब बारिश का पानी जो है नहीं होता है या गैप हो जाता है बारिश के दिन में
पानी का, तो उसमें आप जो है उस पानी से जो है पंप के द्वारा आप जो है सिंचाई कर लीजिए, इससे आपका जो है पैदावार जो है कम नहीं होने पाता है। इसके अलावा कहीं कहीं हम देखते हैं कि कहीं पर जहां पर प्लेन जमीन है आपका तवांग डिस्ट्रिक्ट में, तो बारिश के दिन में आपका जो पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वहां पर किसान भाइयों को उस पानी को जो है बाहर निकालने का भी व्यवस्था करना चाहिए। अगर वो पानी जो है बाहर

0: आप निकालेंगे तो उससे जो हमारा सब्जी की फसल जो होती है वो जो है नष्ट हो जाती है। इसलिए जो वाटर मैनेजमेंट करना भी बहुत जरूरी होता है अधिक पैदावार के लिए। इसके अलावा जो आपका जो बीट कर कंट्रोल या खरपतवार नियंत्रण, तो खरपतवार नियंत्रण अगर आप किसान भाई देखते हैं कि हमारे जो भी फसल आपने लगाया है, जैसे एक खेत में आपने जो कैबेज लगा रखा है तो कैबेज के अलावा जो भी उसमें जो है आपका कोई भी फसल उग जाता है, कैबेज के अलावा उसमें आपका मूला आ गया किसी तरह से पुराना सीड से आ गया, या तो आपका मड़ुआ आ गया, मकई आ गया, तो वो सब जो है बीट कहलाता है, यानी खरपतवार कहलाता है। तो उसको जो है खेत से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। अगर उसको आप नहीं निकालेंगे तो हमारा जो है पैदावार करीब जो है 50 से लेकर 70% तक कम हो जाता है, क्योंकि आपका जो है जो खरपतवार है वो जो है हमारे जो है कई तरह से फसल को जो है नुकसान पहुँचाता है। जैसे आपका मिट्टी का जो नमी होता है, अगर खेत में आपका खरपतवार है तो जो पानी होता है उसको भी आपका खरपतवार लेगा, उससे आपका जो पैदावार रुक जाता है। इसके अलावा जो मिट्टी में आपने जो खाद वगैरह डाल रखा है, अगर उस खेत में खरपतवार है तो उस खरपतवार भी आपका खाद और उर्वरक लेगा, और जिससे हमारे जो पौधों को जो कम खाद और उर्वरक मिल पाएगा उससे जो आपकी पैदावार कम हो जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब फसल के अंदर में खरपतवार रहता है तो उसमें रोग और कीड़े बहुत आ जाते हैं, क्योंकि जो उसको रहने के लिए वहाँ पर सरण मिल जाता है, मतलब कि आपका स्टे करने के लिए जगह मिल जाता है खरपतवारों में, तो वो जो है फिर खरपतवार पे रह करके हमारे जो फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसलिए खरपतवार को खेत से निकालना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा किसान भाई आपका जो प्लांट प्रोटेक्शन मेजर आता है, जैसे प्लांट प्रोटेक्शन मेजर ये होता है कि जैसे इसमें दो पार्ट हैं, एक तो जो है डिजीज हो गया, दूसरा जो है कीड़े हो गया। तो हम देखते हैं कि जो सब्जी की फसल होती है यहाँ पर जब बारिश के दिन में खेती करते हैं तो बहुत सारे कीड़े भी लगते हैं और बहुत सारी बीमारियां भी है फसल में अटैक करती है। तो किसान भाइयों को तो ये तो मालूम नहीं कर पाते हैं किसान भाई कि इसमें जो है कौन सी बीमारी लगी हुई है। तो किसान भाई जैसे कि यहाँ तवांग में जो है जिला कृषि अधिकारी का ऑफिस है प्लस जो है कृषि विज्ञान केंद्र है, तो आप जो है तवांग आते हैं तो जो आपने सब्जी की फसल लगा रखी है उसमें आप देखते हैं कि कोई हमारा जो है इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप एक पौधे को पत्ती को या पूरे पौधे को आप जो है लेते आइए, तो यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र में या जिला कृषि अधिकारी के ऑफिस में आप लोग को जो है बता दिया जाएगा कि आप जो कि खेत में बीमारी लगा है या एक कीड़ा लगा हुआ है और आप ये दवा जो है यूज करें, तो उससे आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो जैसे कि आपका सब्जी की फसल है, इसमें आपका गोभी वगैरह हो गया, ये तो जो है एक समय में सारा तैयार हो जाता है, प्लस जो आपका टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, मिर्चा हो गया, ये सब जो है कई बार में तोड़ने लायक होता है। तो हम देखते हैं कि जो फल जो है पहले लगता है वो जो पहले पक कर के तैयार हो जाता है तो उसको जो पहले तोड़ लेना चाहिए, जो बाद में तैयार होता है उसको जो थोड़ा बाद में तोड़े। तो इस तरह से किसान भाई जो हार्वेस्टिंग जो है करना चाहिए। हार्वेस्टिंग करने के बाद आपको जो किसान भाई जैसे बताया था कि आपका जो है मार्केट में अधिक जो है दाम लेना है तो उसको जो ग्रेडिंग करना बहुत जरूरी होता है। ग्रेडिंग करने का मतलब ये है कि जैसे एक साइज का जो सब्जी है उसको जो आप अलग करिए, उससे छोटे साइज का है उसको अलग करिए, कि इस तरह से तीन ग्रेड आप बना लेंगे। तीन ग्रेड बना लेने से ये होता है कि आपका जो सबसे अच्छा ग्रेड है उसको जो अच्छा रेट मिलेगा, पूरा जो मीडियम ग्रेड वाला है उसको थोड़ा कम मिलेगा रेट, और जो सबसे लो ग्रेड का है उसको थोड़ा और कम मिलता है रेट। तो इस तरह से आपको जो है अगर पहले जो ग्रेडिंग करके मार्केट में ले जाएंगे तो इसलिए किसान भाइयों को जाता है कि जो भी सब्जी आप जो तैयार होता है उसको आप ग्रेडिंग करके तब मार्केट में ले आइए, तो इससे आपको जो है अधिक फायदा मिलेगा। तो आज के परिचर्चा में मैं किसान भाइयों को बताया कि किस तरह से आपका सब्जी की खेती करें ताकि जो अधिक पैदावार मिले।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सब्जी की खेती की पैदावार में बढ़ोतरी लाने के लिए वैज्ञानिक तरीके विषय पर कृषि विज्ञान केंद्र तवांग के SMS यानी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट श्री चंद्र कुमार सिंह से वार्ता। इसके साथ आज का कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:31 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: आपके सिटी या डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो इंटरनेट को पता होनी चाहिए, तो कैमरा उठाओ, बिकॉज दिस इज योर मोमेंट। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज शुरू हो रहा है 2 states और 4 union territories में। बस 1-3 minute का वीडियो बनाओ और शोकेस करो अपने डिस्ट्रिक्ट की कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, ट्रेडिशंस, लोकल स्टोरीज या यूनिक आइडेंटिटी। पार्टिसिपेट करना है? Weaves OTT ऐप पर रजिस्टर करो, जो अवेलेबल है Google Play Store और Apple App Store पर। My Weaves पर क्लिक करो, प्रोग्राम सेक्शन में जाओ और अपना वीडियो सबमिट करो। और हाँ, प्राइज मनी भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50,000 rupees, स्टेट लेवल पर 2 lakh rupees और नेशनल लेवल पर 5 lakh rupees। Submissions ओपन है

0: 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक। तो अपनी स्टोरी और क्रिएशन को दो स्पॉटलाइट।
1: श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म सुल्तान से राहत फतेह अली खान की आवाज में। शब्द रचना है इरशाद कामिल के व संगीत है विशाल शेखर का।

श्रोताओं, आप सुन रहे कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे इरशाद कामिल द्वारा शब्दबद्ध फिल्म जब हैरी मेट सेजल से। अरिजीत सिंह की आवाज में इस गीत को संगीत से संवारा है प्रीतम ने।

श्रोताओं आपकी सेवा में आकाशवाणी का तावांग केंद्र है। आपसे थोड़ी देर में यानी 7:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित प्रादेशिक समाचार व 7:50 पर रीजनल न्यूज़।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू एवं उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत की विविध भाषाओं और संस्कृतियों को जोड़ने में हिंदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने हिंदी के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना को और अधिक मजबूत करने का आह्वान किया। वही उप मुख्यमंत्री ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये हमारी भावनाओं, विचारों और संस्कृति को व्यक्त करने के एक सशक्त माध्यम है। गृहमंत्री मामा नातुंग ने आज वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ परामर्श बैठक की अध्यक्षता कर आगामी सेवा संकल्प उत्सव 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। सेवा संकल्प उत्सव का आयोजन आगामी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नातुंग ने कहा है कि उन्हें राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों और विभागों से सामने आ रहे निर्वाचारपूर्ण विचारों और व्यवहारिक समाधानों की पहचान करना है। उन्होंने कहा है कि इस पहल के तहत प्रभावशाली नवाचारों को आम जनता तक पहुंचाने, युवा नवाचारकर्ताओं को प्रोत्साहित करने और ऐसे समाधानों को सामने लाने हैं जिस पर विशेष ध्यान दिया जाए और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लाभ के लिए पायलट आधार पर लागू कर बड़े स्तर पर विस्तार दिया जा सके। अरुणाचल प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने तिरप जिला बाल संरक्षण इकाई के सहयोग से आज खोंसा में नो योर राइट्स

0: एवरी चाइल्ड विषय पर दो दिवसीय बाल अधिकार जागरूकता एवं बाल कल्याण आंकलन अभियान का आयोजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तिराप उपायुक्त बादनलोम तौसिक ने कहा है कि जागरूकता और समय रहते संवेदनशील बनाना बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि बच्चों को बातों की जानकारी दी जानी चाहिए कि असुरक्षित परिस्थितियों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि वे ऐसे परिस्थितियों को पहचानते हुए समय पर उचित प्रतिक्रिया दे सके। उन्होंने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा में माता पिता पहली सुरक्षा पंक्ति है, जबकि संस्थानों को भी बाल अधिकार की रक्षा की अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिभावक, शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और समुदाय के सदस्य शामिल हुए। अभियान का मुख्य संदेश रहा कि हर बच्चे को सुरक्षित महसूस करने, उसकी बात सुने जाने और उसकी रक्षा के लिए जाने के लिए अधिकार प्राप्त है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY पर 3 दिवसीय सर्कल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम क्वालिटी कंट्रोल एंड हैंड्स ऑन फील्ड ट्रेनिंग विषय के साथ आज से UP स्थित पंचायत कॉन्फ्रेंस हॉल में शुरू हुआ। ग्रामीण कार्य विभाग RWD के पोमा UPR डिवीजन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य भाग लेने वाले इंजीनियर्स के सड़क निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण और कार्यों के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं में तकनीकी ज्ञान और व्यवहारिक कौशल को बढ़ावा देना है। इससे PMGSY सड़क परियोजना की गुणवत्ता और टिकाऊपन में सुधार लाने में मदद मिलेगी। उद्घाटन कार्यक्रम में 14वें दोईमुख विधानसभा क्षेत्र के विधायक नाबम विवेक, पापुमपारे उपायुक्त मामू हाके सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत MSME विकास एवं सुविधा कार्यालय ईटानगर ब्रांच द्वारा आज पासीघाट के IGG गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में PM विश्वकर्मा योजना के तहत 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य कारीगरों और PM विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों की उद्यमिता तथा विपणन क्षमताओं को मजबूत करना था। इसके तहत उद्यमिता, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिजिटल ऑनबोर्डिंग, वित्तीय एवं ऋण सहायता, बाजार से जुड़े जुड़ाव, AI उपकरणों और निर्यात के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 9 जिलों पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, अपर सियांग, दिवांग वैली, लोअर दिवांग वैली, लोहित, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बेरिता कर ने गत 8 से 13 सितंबर 2026 तक आयोजित जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 में कांस्य पदक हासिल किया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बेरिता कर को उनकी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि पर बधाई देते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। बेरिता कर मुख्यमंत्री खेलों में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार यानी CMSS कार्यक्रम के लाभार्थी है। और भारत ने दुबई में खेले गए महिला एशिया कप 2026 के फाइनल में श्रीलंका को 72 रनों से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी ईटानगर, न्यूज रेड बाय नारा कोया। हिंदी दिवस इज बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री टुडे। It was on this day in 1949 that the Constituent Assembly adopted Hindi written in Devanagari script as the official language of the country. Chief Minister Pema Khandu and Deputy Chief Minister Chona May have extended greetings on the occasion of Hindi Divas. In a social media post, Khandu said that Hindi has played a crucial role in connecting India's diverse languages and cultures, strengthened the sentiment of respect and love for Hindi even further. Meanwhile, Deputy Chief Minister Chona May in a social media post said that Hindi is not just a language, it is a powerful medium for expressing our emotions, thoughts and culture. Home Minister Mama Nadu today chaired a consultative meeting with senior officials and departmental secretaries to review preparation for the upcoming Seva Sankalp Utsav 2026 to be observed on 17 September to 17 October 2026. In a social media post, Mr. Natung informed that he has been entrusted with the Rashtriya Innovation Challenge, aimed at identifying innovative ideas and practical solutions emerging across different sectors and departments. He added that the initiative will focus on bringing impactful innovations to the public domain, encouraging young innovators and highlighting solutions that can be piloted and scaled for the benefit of the people of Arunachal Pradesh. The Arunachal Pradesh State Commission for Protection of Child Rights, in collaboration with the District Child Protection Unit, TIRAP, conducted a 2-day child rights awareness and child welfare assessment campaign in Khonsa today under the theme Know Your Rights, Protect Every Child.

फिल्म फना की संगीत के साथ कार्यक्रम देशभक्त गीत यहीं पर समाप्त हुआ। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात के 8 बज चुके हैं। श्रोताओं और प्रस्तुत है आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म ममता से। शब्द रचना है मजरूह सुल्तानपुरी की, वह संगीत है रोशन का। इस गीत की हमें फरमाइश की है ग्राम पंचायत बथेना पठान डिस्ट्रिक्ट दुर्ग छत्तीसगढ़ से आप हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और उमेश मिथिलेश वर्मा।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म गाइड से लता मंगेशकर की आवाज में। शब्द रचना है शैलेंद्र के, वो संगीत है एसडी बर्मन का। इस गीत की हमें फरमाइश की है मेरठ से आप है दिग्दर्शन गौर और कविता गौर, और निमनाबाद जिंद हरियाणा से आप है जसबीर सिंह अरोरा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर।
1: हर कलाकार का सफर तन्हा शुरू होता है, लेकिन साथ होती है आपकी सद्भावना और आशीर्वाद की मंगल ध्वनि। मैं अकेला

श्रोताओं, आप सुन रहे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आंधी से। शब्द रचना है गुलजार के व संगीत है आरडी बर्मन का। इस गीत की हमें फरमाइश की है पदमपुर श्री गंगानगर राजस्थान से। आप है मेहर अरोरा, कीर्ति अरोरा, भूमिका अरोरा और ममता अरोरा, और आसाम से आप है हितेंद्र दास।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म इलाका से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। शब्द रचना है अनजान के, संगीत है नदीम श्रवण का। इस गीत की हमें फरमाइश की है कोपर गांव से आप है सुरेश मलोडे और वर्षा मलोडे, और शिव गांव से आप है श्री राम गोंदाली और उषा गोंदाली।

श्रोताओं, आप सुन रहे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइश गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन सकेंगे फिल्म डिस्को डांसर से बप्पी लहरी की आवाज में। शब्द रचना है अनजान के, वह संगीत है स्वयं बप्पी लहरी का। इस गीत की हमें फरमाइश की है यूमदुम से, आप है संगीत सिंह और यूसर से आप है सोनम छुटन।

में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप ज़रूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा ये रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के

श्रोताओं, अभी आप आने ले रहे थे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप इस सुरों की महफिल

ये आकाशवाणी का तमाम केंद्र है, उसे थोड़ी देर में यानी 8:30 पर आप सुन सकेंगे। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज़ एट 9।

0: नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में खेलों की दुनिया का तमाम लेखा जोखा लेकर प्रशांत कुमार के साथ आज मैं हूं नवीन सक्सेना। प्रशांत, आज किन किन खेलों पर हमारी नजर रहेगी?
1: नमस्कार नवीन। कल भारतीय महिलाओं ने इतिहास रचा और 8वीं बार T20 एशिया कप क्रिकेट का खिताब अपने नाम किया और श्रीलंका को पराजित कर 2024 की हार का बदला लिया।
0: प्रशांत, भारत की जीत का सिलसिला कल सिर्फ यही नहीं थमा और अफगानिस्तान को पटखनी दी और 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच अपने नाम किया और अब कल भारतीय टीम एक बार फिर जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी।
1: नवीन, कल का दिन शायद भारत के नाम ही लिखा था जब भारतीय तीरंदाज धीरज बोम्मदेवरा ने सटीक निशाना लगाते हुए विश्व कप अपने नाम किया।
0: और प्रशांत, कल ही टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव अमरीकी ओपन के पुरुष सिंगल्स के चैंपियन बने। अगले 15 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और तमाम उन खेल खबरों पर हमारी नजर रहेगी जिसका जिक्र हमने अभी किया है। भारत ने महिला एशिया कप T20 क्रिकेट का खिताब 8वीं बार जीत लिया है। कल खेले गए फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से पराजित किया। भारत की इस जीत में फिरकी गेंदबाज श्रीचरणी ने अहम भूमिका निभाई और 4 विकेट अपने नाम किए। सुनते हैं विशाल को।
2: श्रीचरणी ने अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 20 रन देते हुए श्रीलंका की 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। चरणी ने अपने इस स्पेल के दौरान पूनम यादव का 8 साल पुराना रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया। वो अब भारत की ओर से T20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। साल 2026 में चरणी अभी तक कुल 39 विकेट अपने नाम कर चुकी हैं। पूनम ने 2018 में कुल 35 विकेट चटकाए थे। इस लिस्ट में दीप्ति शर्मा 30 विकेट के साथ तीसरे नंबर पर काबिज हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: नवीन, अगर खिताबी मुकाबले की बात की जाए तो भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 183 रन बनाए। टीम की ओर से शेफाली वर्मा ने 39 गेंदों में 68 रन की तूफानी पारी खेली जबकि स्मृति मांदना ने 39 गेंद में 59 रनों का योगदान दिया। हालांकि 184 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और पूरी टीम महज 111 रन ही बना सकी। नवीन, श्रीलंका की ओर से अगर हम बात करें तो सर्वाधिक 36 रन कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने बनाए जबकि नीलाक्षिला सिल्वा ने 22 रनों का योगदान दिया। और भारतीय टीम ने लगातार इस प्रतियोगिता की बात करें तो बेहतरीन प्रदर्शन किया और इस बार तो 8वीं बार एशिया कप का खिताब पर कब्जा जमा लिया है।
0: प्रशांत, ये एक बहुत बड़ी खबर थी कि 8वीं बार हमने कब्जा जमा लिया है और इससे भी अच्छी खबर यह है कि हमने पटखनी दी है श्रीलंका को जिससे पिछली बार हम हार गए थे। और प्रशांत, अगर देखा

0: कल की जीत को हम आगाज मान सकते हैं जब एशिया कप अभी शुरू होने वाले हैं, एशियन गेम्स शुरू होने वाले हैं 19 तारीख से, और भारतीय टीम की जीत के आगाज को हम एक इस तरह से देख सकते हैं कि शायद स्वर्ण पदक हमारी ही झोली में गिरेगा।
1: बिल्कुल।
0: और इसी मैच में हमने भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा की तूफानी पारी का भी जिक्र किया, जैसा कि प्रशांत ने बताया अर्धशतक उन्होंने लगाया, इतिहास रचा। इतिहास इसलिए कि महज 24 गेंदों का उन्होंने प्रशांत सामना किया और अर्धशतक पूरा किया, और शेफाली जो है महिला T20 एशिया कप में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं। अपने सलामी जोड़ीदार स्मृति मंधाना का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। मंधाना ने 2022 में हुए T20 एशिया कप में 25 गेंदों में अर्धशतक बनाया था, और इसी लिस्ट में एक और नाम है ऋचा घोष का, उन्होंने 26 गेंदों में अर्धशतक लगाया था, लेकिन बाजी मार ली कल शेफाली वर्मा ने, जिन्होंने मात्र 24 गेंदें खेली और अर्धशतक अपने नाम किया।
1: महिला टीम ने तो बेहतरीन प्रदर्शन नवीन किया ही किया, लेकिन भारतीय पुरुष टीम ने भी कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ा। भारतीय टीम ने पहले 2020 इंटरनेशनल मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। सीरीज का दूसरा मुकाबला कल दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सुनते हैं वैष्णवी की ये रिपोर्ट।
2: श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारतीय टीम सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं अफगानिस्तान टीम भारत के खिलाफ क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में पहली जीत दर्ज करना चाहेगी। पहले T20 में भारतीय टीम का प्रदर्शन दमदार रहा। बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 32 गेंदों में 82 रनों की तूफानी पारी खेली थी। अभिषेक के आगे अफगानिस्तान के गेंदबाज पूरी तरह से बेबस दिखाई दिए थे। वहीं ईशान किशन ने 33 गेंदों में 42 रनों का योगदान दिया था। हालांकि संजू सैमसन पल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर सके और वे 10 रन बनाकर आउट हुए थे। ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम दूसरी T20 में संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में बरकरार रखती है या फिर टीम मैनेजमेंट वैभव सूर्यवंशी को मौका देता है। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: वाकई कल ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय प्लेइंग 11 किस तरह का प्रदर्शन करती है और कौन कौन से खिलाड़ियों को कल मैदान में उतारा जाता है। मैच कल शाम 7 बजे से खेला जाएगा, वहीं जहां कल हुआ था मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। और प्रशांत, कल की बात एक बार फिर करें तो गेंदबाजी में अर्शदीप ने बहुत शानदार गेंदबाजी की, 4 ओवर फेंके, 19 रन दिए और 3 विकेट चटकाए, जबकि जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल भी काफी किफायती रहे। हालांकि नीतीश कुमार रेड्डी जरूर महंगे साबित हुए थे और उन्होंने 2 ओवर में 30 रन दिए थे।
1: उधर अगर अफगानिस्तान की बात करें नवीन, तो दूसरे T20 इंटरनेशनल मुकाबले में अपने बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी, क्योंकि हमने देखा पहला जो T20 मुकाबला था 5 बल्लेबाज बहुत जल्दी ही पवेलियन लौट गए थे। पहले T20 में टीम का टॉप और मिडिल ऑर्डर बुरी तरह से फेल रहा था। हालांकि निचले क्रम में अजमतुल्ला उमर जई ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 44 गेंदों में 64 रन की दमदार पारी खेली। वहीं उनके जो सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं मोहम्मद नबी, उन्होंने भी 33 रनों का योगदान दिया। नबी को छोड़कर टीम के बाकी गेंदबाज कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके नवीन।
0: और अगर कुल मिला के कहें तो भारतीय टीम का दबदबा कल रहा बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। सिर्फ अगर हम संजू सैमसन को छोड़ दें तो पूरी भारतीय टीम ने जबरदस्त गेंदबाजी भी करी है और बल्लेबाजी भी करी है। अगर सिर्फ अफगानिस्तान की टीम का जो आखिरी ओवर जो भारतीय गेंदबाज ने फेंका था उसमें 21 रन गए थे, वो एक बहुत ही महंगा ओवर साबित हुआ था। लेकिन प्रशांत, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम की जो पिच है वो पहले ही T20 बल्लेबाजों के लिए बहुत मुफीद नजर आई थी। छोटी बाउंड्री है, भरपूर फायदा उठाया था और फायदा उठाया था भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने और उमर जई ने अफगानिस्तान की तरफ से। हालांकि पिच में स्पिन गेंदबाजों के लिए थोड़ा घुमाव देखने को मिला था और भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक कुल 10 T20 मुकाबले हुए हैं और अच्छी बात यह है कि भारत ने 9 में जीत दर्ज की है, तो एक सशक्त टीम की तरह हम कल उतरेंगे। और अगर कल के मैच की बात की जाए तो प्रशांत, कल भी लगभग पूरी भारतीय टीम अपनी पूरे दमखम के साथ उतरी थी, जहां पे बुमराह भी हैं, जहां पे अभिषेक भी हैं, जहां पे संजू अक्षर पटेल भी हैं, तमाम वो खिलाड़ी जिनसे हम उम्मीद कर सकते हैं। और अब बात तीरंदाजी की।
1: भारत के धीरज मोहम्मद देवरा ने तीरंदाजी विश्व कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुष रिकर्व में भारत को यह सफलता 16 साल बाद हासिल हुई। इससे पहले जयंत तालुकदार ने यह खिताब जीता था। धीरज मोहम्मद देवरा ने शूट ऑफ में शानदार संयम दिखाते हुए जीत हासिल की। इसके साथ ही वे तीरंदाजी विश्व कप फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष तीरंदाज बन गए हैं।
3: Oh, that's a very, very good shoot-off arrow.

0: from Diraj Bomadeva, despite the shakiness. And that is into the nine. And Diraj Bomadeva from India has taken the title of the World Cup final in 2026. And that is an astonishing win for the man who is known as a giant killer.
1: नवीन, अगर इस मुकाबले की बात करें तो दुनिया के नंबर 10 तीरंदाज और भारतीय सेना के 25 वर्षीय खिलाड़ी धीरज ने साल्टियोलो में हुए रोमांचक फाइनल में जापान के नाकानिशी जूनिया को 6-5 से हराया। 5 सेट के बाद मुकाबला 5-5 से बराबरी पर था, जिसके बाद शूट ऑफ में धीरज ने 10 का स्कोर किया जबकि नाकानिशी ने 9 का स्कोर किया और धीरज ने गोल्ड मेडल अपने नाम करने में सफल रहे इस मुकाबले में।
2: और ये सफलता बहुत ही शानदार रही क्योंकि धीरज के लिए बहुत खास थी। पिछले 2 तीरंदाजी विश्व कप में प्रशांत फाइनल में वो पदक नहीं जीत पाए थे, 2023 और 2024 उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा था। हालांकि इस बार उन्होंने नॉकआउट मुकाबलों में शानदार खेल दिखाया और फाइनल में दुनिया के 20वें नंबर के तीरंदाज नाकानिशी का सामना किया, उन्हें हराया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
1: नवीन, स्वर्ण पदक तो जीता ही जीता लेकिन बहुत ही कांटेदार और रोमांचक मुकाबला हमें देखने को मिला। फाइनल में कोई भी तीरंदाज हार मानने को तैयार नहीं था। 5 सेटों में स्कोर 28-28, 28-29, 29-28, 28-30 और 28-27 रहा, जिससे गोल्ड मेडल का फैसला बहुत कम अंतर से हुआ। धीरज की जीत ने इस प्रतिष्ठित सीजन एंडिंग इवेंट में भारत का रिकॉर्ड भी बदल दिया है।
2: और धीरज, जब प्रशांत, जब इस तरह के कांटे का मुकाबला होता है तो आपके पास प्रेशर कितना होता है और उस प्रेशर के अंदर सटीक निशाने लगाना भी अपने आप में कमाल का खेल इस समय लगता है। उन्होंने दिखाया होगा धीरज ने, क्योंकि जिस तरह से बात की जाए, प्रेशर बहुत था उनके ऊपर और प्रेशर में अगर देखा जाए तो तीर अगर सही निशाने पर नहीं लगते तो ये जो 28-28, 28-29, 29-28, 28-30 और 28-27 का जो स्कोर है वो पलट भी सकता था। और अब बात अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट की। अलेक्जेंडर ज़ेवरेव अमरीकी ओपन के पुरुष सिंगल्स के फिर चैंपियन बन गए हैं। कल रात खेले गए फाइनल में ज़ेवरेव ने अमरीका के बेन शेल्टन को 6-3, 7-6, 5-7 और 6-2 से हराकर अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता, एक मैराथन मुकाबला।
1: बिल्कुल नवीन, और 3 घंटे 33 मिनट तक चले इस मैराथन मुकाबले में जीत हासिल करने के बाद ज़ेवरेव ने एटीपी लाइव रेस 2 ट्यूरिन में अपनी बढ़त को और मजबूत भी कर लिया है। अब वे सिनर से 700 अंक आगे हैं। ये रैंकिंग बताती है कि साल के अंत में एटीपी का नंबर एक खिलाड़ी कौन बनेगा।
2: और प्रशांत, ज़ेवरेव अपना 6ठा ग्रैंड स्लैम फाइनल और इस साल का 3रा फाइनल मुकाबला खेल रहे थे, जबकि लोकल खिलाड़ी यानी स्थानीय खिलाड़ी की बात करें, क्योंकि अमेरिका के हैं शेल्टन, वो अपने करियर में पहले कभी इस स्टेज तक, इस मुकाम तक नहीं पहुंचे थे। जर्मनी के स्टार खिलाड़ी ज़ेवरेव इस साल शानदार फॉर्म में हैं और जितने भी मुख्य टूर्नामेंट में उनका रिकॉर्ड 25 जीत है और सिर्फ 2 हार है, तो यह बताता है वो कितनी जबरदस्त फॉर्म है और कितना शानदार वो परफॉर्म कर रहे हैं। इस साल उन्होंने केवल 2 खिताब जीते हैं लेकिन दोनों ग्रैंड स्लैम ट्रॉफीज हैं और इसी वजह से वो साल के अंत में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बनने की दौड़ में मजबूती से बने हुए हैं।
1: बिल्कुल, और जैसे आपने बताया नवीन कि बेन शेल्टन को उन्होंने हराया और बेन शेल्टन ने जो चैंपियन रहे हैं यूएस ओपन के कार्लोस अल्काराज को मात दी थी, तो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। और उन्होंने अपनी जीत के बाद ज़ेवरेव ने अपनी मां को खास तौर पर याद किया और बताया कि ग्रैंड स्लैम ना जीत पाना उनके सामने आई सबसे बड़ी मुश्किल नहीं थी।
3: I know that 99.9% of the player, the people wanted Ben to win, so I'm very sorry, first of all. But second, it was an incredible atmosphere to play in. Even though I know that the crowd was against me, the crowd was always incredibly fair. And we as players, we appreciate it. You guys brought the energy, you guys brought the noise, and we really thank you guys for that.
2: ये थे अमरीकी ओपन टेनिस के चैंपियन ज़ेवरेव। और प्रशांत, शेल्टन जिन्होंने हार का सामना करना पड़ा या जिन्हें हार का सामना करना पड़ा, 23 साल पहले अमरीकी ओपन में एंडी रॉडिक के बाद मेजर खिताब जीतने वाले पहले अमरीकी पुरुष खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ज़ेवरेव ने उनका यह सपना चकनाचूर कर दिया। वो नंबर 1 सीड खिलाड़ी को नहीं हरा पाए शेल्टन, और ये अमरीकी खिलाड़ी 1975 में आर्थर एश के बाद इस स्तर पर जीत हासिल करने वाले दूसरे अफ्रीकी अमेरिकी पुरुष बनने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो सकता। और अब टेनिस को ही थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। प्रशांत, टेनिस में आज जारी हुई है WTA की रैंकिंग, जिसमें एलेना रेबकिना विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। ये कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं।

0: और फाइनल में साबालेंका को हराकर इस टूर्नामेंट का खिताब उन्होंने अपने नाम किया है। रबाकिना सिंगल्स रैंकिंग में विश्व की नंबर एक बनने वाली कजाकिस्तान की पहली खिलाड़ी बन गई हैं पुरुष और महिला दोनों में।
1: बिल्कुल नवीन, और इस पूरे सीजन में शानदार प्रदर्शन के कारण रिबाकिना सबालेंका के काफी करीब बनी रही, जबकि सबालेंका का फॉर्म सीजन के बीच में थोड़ा नीचे गया था। जहां सीजन के बीच में सबालेंका की लय बिगड़ी, वहीं रिबाकिना पिछले साल के आखिर से ही टॉप पर पहुंचने की ओर बढ़ रही थी। उन्होंने इस साल सीजन के बीच में नॉर्थ अमेरिकन हार्ड कोर्ट स्विंग पर शानदार प्रदर्शन किया और उसके बाद बिग एप्पल न्यूयॉर्क में भी सफलता हासिल की। तो लगातार जो रिबाकिना का परफॉर्मेंस रहा है वो बेहतरीन रहा, जो कि हमें ये यूएस ओपन जो टूर्नामेंट था उसमें देखने को भी मिला।
0: और एक शानदार टूर्नामेंट का अंत हो चुका है, और इस तरह से या कुल मिला के कहना चाहिए कि हमारे को चारों ग्रैंड स्लैम इस साल के खत्म हो चुके हैं, और इंतजार करना होगा आपको अपने वर्षिव शुरू में जब ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब होगा। और चलते चलते हम अपने सुनने वालों को बता दें कि कुछ खास खबरों पर आज जिसपे हमारी नजर रही थी। कल भारतीय महिलाओं खिलाड़ियों ने इतिहास रचा था और 8वीं बार T20 एशिया कप क्रिकेट का खिताब अपने नाम किया था। श्रीलंका को उन्होंने पराजित किया था।
1: भारत की जीत की सिलसिला कल सिर्फ यही नहीं थमा और अफगानिस्तान को पटकनी दी और 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच अपने नाम किया, और अब कल भारतीय टीम एक बार फिर जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी।
0: स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में बस इतना ही, वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा। इजाजत दीजिए मुझे नवीन और प्रशांत को। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की। कहा, भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। अमरीकी विश्लेषक ने कहा, दिल्ली घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता को दर्शाता है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की और देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा था जब दो बड़े संघर्ष जारी हैं, गहरे मतभेद हैं और विभिन्न देशों के विचारों तथा हितों में काफी टकराव है। इसके बावजूद हम ऐसे वक्तव्य पर सहमति बनाने में सफल रहे जिस पर सभी ने सहमति जताई। इस वक्तव्य में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, दीर्घकालिक आपसी समझ, वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुचारू प्रवाह, ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति तथा नागरिकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का आह्वान किया गया है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
1: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।

0: डबल स्टैंडर्ड्स इन काउंटरिंग इट।
1: नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल समापन के बाद समूह में भारत के नेतृत्व की कई सदस्य देशों ने तारीफ की है। भारत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित दो दिन का सम्मेलन कल संपन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स में 11 बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं जो दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40% हिस्सा हैं। ब्रिक्स देशों ने शनिवार को सम्मेलन में एकमत से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित दुनिया के नेता शामिल हुए। नई दिल्ली घोषणा पत्र में भारत की अध्यक्षता की तारीफ की गई और सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत सरकार और लोगों की प्रशंसा की गई। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर भारत के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने बेहद सफल सम्मेलन आयोजित किया है। चीन की सरकारी मीडिया और नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को ग्लोबल साउथ देशों के बीच बेहतर गुणवत्ता के सहयोग और एकजुटता के लिए सकारात्मक कदम बताया। रूस ने ब्रिक्स सहयोगी देशों के साथ समावेशी विकास उन्मुखी साझेदारी के लिए मॉस्को के समर्पण की फिर से पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सचिव अंतोनियो गुतरश ने भी भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की तारीफ की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी नई दिल्ली घोषणा पत्र की तारीफ की है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सहअध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति को स्वीकृति दी गई है। एक रिपोर्ट।
3: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच करीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में दो दिन के हिंदी दिवस और 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
6: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर इस सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
7: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा

0: रखे। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल कर ली है। आज राज्य के 10,245 वार्डों के लिए मतगणना हुई। इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं। भाजपा ने जयपुर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा नगर निगमों में बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि अलवर में वो आगे चल रही है। बीकानेर में कांग्रेस को बहुमत मिला है और अजमेर तथा पाली में पार्टी आगे है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेनदेन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेनदेन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रुपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेत्किन ने भारत और मर्कोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति प्रकट की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। एक रिपोर्ट।
2: परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाग जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता प्रकट की। परिषद ने कहा है कि सार्वजनिक अधिकारों से संबंधित मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से उठाना मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है। परिषद ने आरिफ अब्बासी पर किसी भी आरोप को पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निपटाने का आह्वान किया और कहा कि यदि उनकी हिरासत के लिए कोई स्पष्ट कानूनी आधार नहीं है तो उन्हें बिना किसी देरी के रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि गुजरात ने मिष्टी योजना के अंतर्गत कच्छ में 27,000 हेक्टेयर में मैंग्रोव पौधे लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पर्यावरण मंत्री ने जाखो स्थित वैज्ञानिक नर्सरी का भी दौरा किया। इस अवसर पर वन्यजीव संरक्षण और चीता परियोजना के अंतर्गत वन विभाग के लिए 33 निगरानी और बचाव वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और अब बात मौसम की। गुजरात में आज तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
3: राज्य में भावनगर के वल्लभीपुर में आज 6 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि आनंद के बोरसद में 5.5 इंच और अहमदाबाद में 3.5 इंच बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ा। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया। इस बीच वाहन चालकों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण राज्य में सीजन की औसत 80% बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण राज्य के 35 डैम हाई अलर्ट पर है। दूसरी ओर बारिश के कारण लंबे ब्रेक के बाद खरीफ की फसल को नया जीवन मिला है। मनोज सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कल तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में भी कल इसी तरह के मौसम की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधान

0: मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से गणेशोत्सव पारंपरिक तरीके से मनाने और प्रदूषण कम से कम करने की अपील की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। भक्तों ने प्रार्थना, आरती, भक्ति गीतों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ भगवान गणेश का स्वागत किया। मुंबई में लालबाग साराजा, गणेश गली, तेजुकाया और जीएसबी जैसी मशहूर मूर्तियों के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ और ट्रैफिक को संभालने के लिए पुलिस, रेलवे और बेस्ट ने खास इंतजाम किए हैं। कई जिलों में एक गांव एक गणपति पहल को अपनाया गया। इस साल शोर शराबे वाले प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की। कहा, भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar hails successful conclusion of BRICS summit in New Delhi, says India showed strong convening power. Global leaders praise BRICS summit for strengthening cooperation among developing nations and advancing priorities of Global South. US-based analyst says New Delhi declaration reflects India's ability to build consensus. India approves 18-hour power supply to flooded Nepal till December end amid hydropower crisis. Human Rights Council of Pakistan occupied Jammu and Kashmir expresses concern over prolonged protest and unrest in the region. And Ganesh Chaturthi been celebrated across the country with grandeur, devotion and festive gaiety. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today lauded the successful conclusion of the BRICS Summit 2026 in New Delhi, saying that the world saw the strong convening power of India as most of the heads of state were present to represent the countries. Talking to the media, Dr. Jaishankar said that it is important to recognize that this BRICS Summit was taking place in a very polarized world.
3: BRICS summit was taking place in a very polarized world where there are two major conflicts with very strong opinions and interests. Even in the midst of this polarization, we actually forged a consensus, which was West Asia, Middle East conflict. We were able to get out a statement which everybody agreed, a statement urging peace, security, stability, long-term understanding, the smooth flow of global trade, of supply chains, energy, and of the protection of civilians and civilian interests.
2: The minister stated that the BRICS countries were very clear that any act of terrorism is a criminal act, and it also explicitly recognized the unacceptability of the Pahalgam attack. Condemning the terrorism, Dr. Jaishankar said that BRICS emphasized zero tolerance for terrorism and rejected double standards in countering it.
3: The BRICS was very clear that any act of terrorism is criminal, and they in fact explicitly recognized Pahalgam attack. They condemned terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism, and emphasized the zero tolerance for terrorism, rejected double standards in countering it.
2: India's leadership of BRICS has won praise from several member countries following the successful conclusion of the 18th BRICS summit in New Delhi. The two-day summit held in the national capital under India's chairmanship concluded yesterday. BRICS comprises 11 major emerging economies representing nearly half of the world's population and around 40% of the global GDP. The BRICS countries unanimously adopted the New Delhi Declaration 2026 at the summit on Saturday, with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi